0: सज्जनता और मधुर व्यवहार मनुष्यता की पहली शर्त है। यह हमें बताता है कि एक सच्चा मनुष्य बनने के लिए हमें सज्जनता और मधुर व्यवहार को अपनाना होगा। सज्जनता का अर्थ है अच्छे चरित्र, नैतिकता और आदर्शों का पालन करना। यह हमें दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार करने और उनकी भावनाओं का सम्मान करने के लिए प्रेरित करता है। मधुर व्यवहार हमें दूसरों के साथ अच्छे संबंध बनाने में मदद करता है और इसीलिए सज्जनता और मधुर व्यवहार मनुष्यता की पहली शर्त है। जब हम सज्जनता और मधुर व्यवहार को अपनाते हैं तो हम अपने समाज में एक सकारात्मक परिवर्तन ला सकते हैं।
1: नमस्कार, सुप्रभात, आप सभी का हार्दिक स्वागत है आकाशवाणी ईटानगर केंद्र के अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज पर। जी हाँ दोस्तों, आज आप बने हुए हैं मेरे साथ यानी आपकी रेडियो साथी गिजी कनिक के साथ। हमारी स्टूडियो की घड़ी के अनुसार इस वक्त सुबह के 5:55 हो रहे हैं। इसी के साथ आरंभ होती है हमारी आज की पहली प्रसारण सभा। आज सन 2026 की जून महीने की 17 और दिन है बुधवार। तो चलिए दोस्तों, आज की इस हसीन दिन की शुरुआत करते हैं अरुण एफएम के साथ, जहां होती है दिल से दिल की बात। श्रोताओं, आज के प्रभातकालीन प्रसारण सभा के कार्यक्रमों को आप तक पहुंचाने के लिए आज हमारे साथ है स्टूडियो तथा एचपीटी में मौजूद सहकर्मियों सहित प्रसारण निष्पादक दीतांजंग तथा तकनीकी अभियंता बी बोरुआ। हर रोज की तरह आज भी हम इस सभा में आप लोगों के लिए लेकर आए हैं अनेकों ज्ञानवर्धक एवं मनोरंजक कार्यक्रमों के साथ साथ देश और दुनिया की ताजा तरीन खबरें। और अब इस शुभकामना के साथ कि आज का आपका दिन बहुत ही शुभ हो, आइए एक नजर डालते हैं इस सभा में प्रसारित कार्यक्रमों की रूपरेखा से।

श्रोताओं, अब से कुछ ही देर बाद यानी 6 बजे आप सुन पाएंगे आकाशवाणी दिल्ली केंद्र से प्रसारित हिंदी में समाचार। 6:05 पर प्रसारित होगा अंग्रेजी में समाचार। 6:10 पर आप सुन पाएंगे कार्यक्रम भक्ति गीत।

6:45 पर प्रसारित होगा कार्यक्रम सुबह सवेरे। 7:10 पर आप सुन पाएंगे आप पता नहीं बोली में समाचार।

कार्यक्रम मॉर्निंग इन्फोटेनमेंट आप सुन पाएंगे 7:15 पर, 7:35 पर प्रसारित होगा तागिन बोली में समाचार, 7:40 पर आप सुन पाएंगे कार्यक्रम सदाबहार। आठ बजे आप सुन पाएंगे आकाशवाणी दिल्ली केंद्र से प्रसारित समाचार प्रभात, 8:15 पर मॉर्निंग न्यूज, 8:30 पर प्रसारित होगा आकाशवाणी सिलोंग केंद्र से नॉर्थ ईस्ट न्यूज।

कार्यक्रम हेलो ईटानगर आप सुन पाएंगे 8:40 पर। 9 बजे आप सुन पाएंगे आकाशवाणी दिल्ली केंद्र से प्रसारित हिंदी एवं अंग्रेजी में समाचार।

0: दिल्ली केंद्र से प्रसारित हिंदी एवं अंग्रेजी में समाचार। कृपया कुछ पल प्रतीक्षा करें।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रांस में कल G7 शिखर सम्मेलन में एक सत्र को संबोधित किया। इसका विषय था नई साझेदारी और अंतर्राष्ट्रीय एकजुटता का निर्माण। विदेश मंत्रालय ने बताया कि सत्र में प्रधानमंत्री ने अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी में विश्वास के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि भारत ने हमेशा मानवता को प्राथमिकता दी है, जो भारत के नेतृत्व वाली पहलों में दिखाई देती है। इनमें अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन, डिजास्टर रिजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर गठबंधन, वैश्विक बायोफ्यूल गठबंधन, मिशन लाइफ और एक पेड़ मां के नाम अभियान शामिल है। शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री ने कई देशों के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें की। प्रधानमंत्री मोदी ने कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर और संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान के साथ द्विपक्षीय बैठकें की। प्रधानमंत्री ने केन्या के राष्ट्रपति विलियम रूटो से मुलाकात कर कहा कि भारत और केन्या की साझेदारी ग्लोबल साउथ की आकांक्षाओं पर आधारित है। उन्होंने मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सीसी से भी मुलाकात की। प्रधानमंत्री मोदी ने जापान की प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची के साथ व्यापार और निवेश सहित विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की। G7 देश भारत समेत कई देशों के साथ मिलकर दुनिया भर में स्वास्थ्य और विकास सहयोग को मजबूत करने की पहल करेंगे। G7 के नेताओं ने अफ्रीकी देश कांगो और युगांडा में फिर से फैले इबोला के प्रकोप से निपटने के लिए मिलकर कदम उठाने की अपील की है। भारत, मिस्र, केन्या और दक्षिण कोरिया ने भी इसका समर्थन किया है। सभी सदस्यों ने इबोला के लिए वैक्सीन, जांच और इलाज के विकास में सहयोग का भी वादा किया। G7 ने कैंसर का इलाज ढूंढने की प्रतिबद्धता भी दोहराई। गृहमंत्री अमित शाह ने नई दिल्ली में झुग्गी बस्तियों के पुनर्वास की समीक्षा बैठक की। उन्होंने कहा कि दिल्ली झुग्गी और जेजे क्लस्टर पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन नीति 2026 को अंतिम रूप दे दिया गया है और इसे जल्द अधिसूचित किया जाएगा। श्री शाह ने अधिकारियों को 5 जेजे क्लस्टर के पुनर्वास के लिए 45 दिनों के भीतर निविदाएं जारी करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि पुनर्वास कॉलोनियों में आंगनवाड़ी केंद्र, स्कूल, स्वास्थ्य केंद्र और खेल मैदान जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराई जानी चाहिए। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने घोषणा की है कि ऐतिहासिक ईस्टर्न फ्रंटियर राइफल्स का शीघ्र ही पुनरुद्धार किया जाएगा और 1000 से अधिक गोरखा युवाओं को राज्य पुलिस बल में भर्ती किया जाएगा। दार्जिलिंग जिले के कुर्सियोंग में एक जनसभा को संबोधित करते हुए श्री अधिकारी ने घोषणा की कि भर्ती शीघ्र ही खोली जाएगी और इनमें कम से कम 30% सीट महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने आगामी नीट परीक्षा को देखते हुए विद्यार्थियों और अभिभावकों को घोटालेबाजों से सावधान रहने का अनुरोध किया है। एजेंसी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि घोटालेबाज लोग टेलीग्राम पर ऐसे चैनल चला रहे हैं जिनमें 21 तारीख को प्रस्तावित परीक्षा के प्रश्न पत्र साझा करने के लिए 14,000 से 25,000 रुपए तक की मांग की जा रही है। एजेंसी ने स्पष्ट किया है कि पुनर्परीक्षा का कोई प्रश्न पत्र लीक नहीं हुआ है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉ. वीरेंद्र कुमार आज नशा मुक्त भारत अभियान NMBA के अंतर्गत नशा मुक्त भारत सप्ताह का वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन करेंगे। कार्यक्रम के दौरान डॉ. वीरेंद्र कुमार नशा मुक्ति मित्र के लिए पर्सनल डैशबोर्ड और NMBA पर आधारित एक लघु फिल्म सहित कई प्रमुख पहल का भी अनावरण करेंगे। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया आज मुंबई के वर्ली साइकिल ट्रैक पर विशेष फिट इंडिया साइक्लोथॉन का नेतृत्व करेंगे। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय ने बताया कि ये आयोजन व्यापक फिट इंडिया अभियान का हिस्सा है। फीफा विश्व कप में कल फ्रांस ने सेनेगल को 3-1 से हरा दिया। प्रतियोगिता के एक अन्य मुकाबले में ईरान और न्यूजीलैंड के बीच मुकाबला 2-2 की बराबरी पर रहा। उरुग्वे और सऊदी अरब तथा बेल्जियम और मिस्र के मैच भी 1-1 से ड्रॉ रहे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Tanvi Khurana. The French city of Avignon remains the epicenter of global diplomacy today as the G7 summit enters its crucial phase. With India participating as a partner country, all eyes are firmly set on a highly anticipated bilateral meeting between Prime Minister Narendra Modi and US President Donald Trump, scheduled for later today on the sidelines of the summit. This marks the first face-to-face meeting between the two leaders since they last met in Washington, D.C. in February 2025. During today's engagement, they are expected to hold wide-ranging discussions to deepen bilateral cooperation across multiple sectors while also deliberating on pressing regional and global issues of mutual interest. Yesterday, Prime Minister Narendra Modi undertook extensive diplomatic outreach on the sidelines of the G7 summit in Avignon, France, holding bilateral meetings with leaders from Canada, United Kingdom and UAE yesterday. He also met and interacted with the leaders of several other countries on the sidelines of the G7 meeting. The Ministry of External Affairs said that during the meeting, Prime Minister Modi and his Canadian counterpart Mark Carney welcomed the positive momentum in India-Canada relations and reaffirmed their commitment to building a forward-looking strategic partnership. During his meeting with British Prime Minister Keir Starmer, Prime Minister Modi reviewed the progress in India-UK relations under Vision 2035. Prime Minister Modi also met UAE President Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan on the sidelines of the G7 summit. The two sides called for continued free, safe and unimpeded navigation, trade and commerce through the Strait of Hormuz. Prime Minister Narendra Modi addressed the outreach session on forging new partnerships and rebuilding international solidarity at the G7 summit in Avignon, France yesterday. Ministry of External Affairs informed that during the session, the Prime Minister underscored the importance of trust in building international partnerships, especially in an increasingly interconnected world. During the meeting, the Prime Minister also highlighted that India has always followed a humanitarian first approach. He said this is reflected in India-led initiatives such as the International Solar Alliance, the Coalition for Disaster Resilient Infrastructure, the Global Biofuel Alliance, Mission Life, and the Ek Ped Markinam campaign. He further said that India's vision of international partnership is rooted in the timeless philosophy of Vasudeva Kutumbakam, the world is one family. The G7 nations have announced a series of initiatives to strengthen global health and development cooperation with several partner countries, including India. The G7 leaders called for a coordinated international response to the re-emerging Ebola outbreak in the Democratic Republic of Congo and Uganda. India, Egypt, Kenya and South Korea joined the appeal for enhanced measures, including contact tracing, border surveillance and community engagement. Home Minister Amit Shah chaired a crucial meeting in New Delhi yesterday on the long-pending Kishau multi-purpose dam project aimed at the rejuvenation of the Yamuna River. In a statement, Home Ministry said that Himachal Pradesh, Uttarakhand, Delhi, Uttar Pradesh, Haryana and Rajasthan have agreed to sign a Memorandum of Understanding, MOU, for the implementation of the project. Following the signing of the MOU, the Kishau project will be placed before the Union Cabinet for approval. National Testing Agency NTA has urged parents and candidates to beware of scammers ahead of NEET examinations. In a social media post, NTA said that scammers on Telegram are running channels demanding money ranging from 14,000 to 25,000 rupees with claims of sharing the re-exam paper. It clarified that there is no leaked paper for the re-exam. In football, France defeated Senegal 3-1 in the opening game of Group 1 of FIFA World Cup 2026 at New Jersey Stadium last night. In men's cricket,

0: India will take on Afghanistan in the second ODI of three-match series in Lucknow today. The match is scheduled to begin at 1:30 p.m. And that is the end of this news bulletin.
1: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित हिंदी एवं अंग्रेजी में समाचार। यह आकाशवाणी ईटानगर केंद्र का अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज से, जहां होती है दिल से दिल की बात। अब आप सुन पाएंगे कार्यक्रम भक्ति गीत।

0: श्रोता दोस्तों, इसी के साथ ही कार्यक्रम भक्ति गीत यहीं पर समाप्त होता है। आपको बता दूं, अब से कुछ ही पलों में आप सुन पाएंगे गालो बोली में समाचार। कृपया कुछ पल प्रतीक्षा करें और बने रहे अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज पर।
1: जी आकाशवाणी ईटानगर तानका दमरोगाम पर लुए पोलो गए लोरी गोला आलोकने नानक हिर नारा जगो गालो मिंकेन आगम मेंजी दुने मिंकेन आगम मिलेन जी दुने गो जुमतो लंबु अतरु ने रिपोम इनिशिएटिव लादुला कैबिनेट मिनिस्टर का दमरो अरुणाचल प्रदेश माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइसेस ऑर्डिनेंस 2026 एमरेप का नाम लगावे पालेंतु एंटरप्रेन्योर्स का दिग ऑफिस लो जुक्तु चातुला होमई ओक आयन मुर्को कोचा एम कॉमती मोदूला मुनुग काम काज एम सेल्फ डिक्लेरेशन मेकानिज्म अबालो रिकेन बरिमो दूला रिलेप गुनाम लगावे पालेंतु हारने लेजिस्लेटिव असेंबली सेशन लो रूल एम रिडप गनाम लगावे कबा एम बालिग रे अलाम मेंकेन जितु ओक कैबिनेट गद अरुणाचल प्रदेश लैंड सेटलमेंट एंड रिकॉर्ड रूल्स APLSR 2012 एम मोदेन मोनाम लगावे अप्रूवल एम जितु दोलो रिगमे लोक रिकनामे रिने पार्मार्स ओके कोदे आतो गादेम ने कोदे लगी लगालो ऑफिस लो जुक्तु चातुला रिनाम एम रिपाक मोनाम लगावे मोदुने अलाम मेंकेन जितु जो का प्रोविजन अरालो गवर्नमेंट मास्टर प्लान एरिया अरालो एग्रीकल्चर को दे यदि को कादू दु एगम नम नाजू बिजनेस ओके कभी कभी रिजिमेंजी एम मास्टर प्लान एरिया को दे लो परमिशन लाख मा बरिला दुकुबे पालेंतु जकना अगर गुमिन सोइन एम हुबिदा जिदुला मोको गे उर्बान डेवलपमेंट एम प्लान पालें मोदे दुने अला मेंकेन जितु रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन एम होमोइलो रिगे तनम रेगा कुमार नाम लगावे कैंडिडेट गादग अन्य एंगेगला एग्जाम एम जिपा कुमार नाम ग तिंग अंग कादुला गवर्नमेंट अन्य एंगेगला जिपा कुमार ने एलिजिबल ने कैंडिडेट्स का दम हार ने APPSC एग्जामिनेशन लो लकेन गोदा अन्य निकेन गो एक्सटेंशन जिदुला एग्जाम एम जिदी मोदो कुबे पालेंतु प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी मरो फ्रांस ग एवियन सिटी लो हालिक दूला दोनी लोनी नाव रिगनाम G7 समिट लो रेलिग मिंगतु सोशल मीडिया पोस्ट लो नर्म मोदी म ग्लोबल इश्यूज अवालो तानी मोको लोके बुते पोते गदम दुरुक जिनम एम हिरगा मोबे म दुने अला मेंदुला भारत गदा तानी मोको एम रकेन दुएन ब रेमोनाम अगर एम दिनची दुने अला मेंतु जो के पोलो का आलो चामनी गोला लोकेन नाने आलो लो नेशनल एलिजिबिलिटी एंट्रेंस टेस्ट नीट UG 2026 एम जिदी तनाम एग्जाम एम कादुला गवर्नमेंट सोशल मीडिया एप टेलीग्राम एम जो के पोलो गए चामनी गोला लोनिना ने आलो लोबे रेस्ट्रिक्शन मोदब मेंतु नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एम टेलीग्राम एप एम रेस्ट्रिक्शन मोदूला एप के मैसेज एडिटिंग फीचर्स एम जो के पोलो गए चामुम आलो लोबे लापा मोदब मेंतु तनेगत नुनु मेंकेन आगम एम आकाशवाणी ईटानगर लोके तपादु स्टेट कैबिनेट मिनिस्टर का दमरो शिक्षित भारत शिक्षित अरुणाचल मिशन अरालो मुनुग स्टेट लोक परिपोता आवा लगाब अत्यारु बरगनम लगाब रिव्यू मीटिंग एम दुलग गतु पेस 1 2023-2026 अरालो गवर्नमेंट 3612.50 करोड़ मुर्को एम स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर टीचर डिजिटल एजुकेशन लो परिपोता एम पुर्दी मुनाम लगाब लिखतु और रिरब गतु गत दूने पेस 2 अरालो 15,500 करोड़ इन्वेस्टमेंट ओके हारे ने 2029 मिशन अरालो 5,100 करोड़ नेन्नगो परिपोता आवा एम पुर्दी मोनाम लगावे इन्वेस्टमेंट एम रिते दूने अला मेंकें जितु अरुणाचल प्रदेश लोक सियांग रिवर राफ्टिंग एम ने इंडिया टुडे टूरिज्म सर्वे एंड अवार्ड 2026 लो एडवेंचर डेस्टिनेशन कैटेगरी लो एडिटर चॉइस अमन एम पातु सोशल मीडिया पोस्ट लो टूरिज्म मिनिस्टर पीडी सोनाम जकना अमन पानम एम अरुणाचल टूरिज्म लगाब माजब मैकेन आगम गबरदू ने अला मेंदुला सियांग रिवर राफ्टिंग स्टेक होल्डर दोलू रिग में टूरिज्म गाइड्स गदम ने आगम आगम एम जिलिक दूला जम बदा सियांग एम तपा कापा मा मोबे मुनाम लगाब मेंतु अरुणाचल प्रदेश ग लोअर दिबांग वैली लोक अबिदा बेगम ओक तिरात डिस्ट्रिक्ट लोक ईसा कुमारी सा ओक तोवांग अतुआ ने विकसित भारत यूथ पार्लियामेंट 2026 लगाब सेलेक्शन एम पातु विकसित भारत यूथ पार्लियामेंट प्रोग्राम एम लोकसभा स्पीकर ओम बिरला मरो सेंट्रल हॉल ऑफ पार्लियामेंट न्यू दिल्ली लो हाल पिलिक दूला रिकॉर्ड जितु इंडिया का विमेन हॉकी टीम FIH हॉकी नेशन कप लो जापान एम 2-1 लो लोकपे पक दूला सेमीफाइनल लो चालेंदु हारन मेदो आलो लो इंडिया सेमीफाइनल लगाब यूरेगे एम पैका मिंजितादु कहता नगद जीरो गंगुनुगा गालो मिंकेन आगोम एगे।
2: All India Radio Itanagar ga galo nik homen nijik niko kam uka takanam gudhe pam tadun gaddam rogamba hilongunu ngoga galoga akna yesodu sogana nijik jikt basin mu idu ok mega galo

आती है और सेहतमंद शरीर उस उम्मीद को हकीकत में बदलने की ताकत देता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी रेडियो दोस्त किची कनिक और आज सुबह सवेरे में हम बात करेंगे योगा और एक्सरसाइज के कुछ ऐसे आसनों की जो न सिर्फ शरीर को फिट रखते हैं बल्कि मन को भी शांत और ऊर्जा से भर देते हैं।

दोस्तों आइए सबसे पहले बात करते हैं तदासना, जिसे माउंटेन पोज भी कहा जाता है। ये देखने में बहुत सरल लगता है, लेकिन इसका प्रभाव काफी गहरा होता है। तदासना करने से शरीर का पोस्चर सुधरता है, रीढ़ की हड्डी मजबूत होती है और शरीर का संतुलन बेहतर बनता है। जो लोग लंबे समय तक बैठकर काम करते हैं, उनके लिए ये आसन काफी फायदेमंद माना जाता है। और दोस्तों एक रोचक बात ये है कि हमारे पोस्चर हमारे कॉन्फिडेंस को भी प्रभावित करता है। जब हम सीधा खड़े होते हैं, तो न सिर्फ शरीर बल्कि सोच भी सकारात्मक महसूस करती है। दोस्तों अब बात करते हैं वृक्षासना की, यानी ट्री पोज की। इस आसन में शरीर को एक पैर पर संतुलित किया जाता है, इससे कंसंट्रेशन बढ़ता है, पैरों की मसल्स मजबूत होती है और मानसिक स्थिरता मिलती है। अगर आपको फोकस करने में दिक्कत होती है तो वृक्षासना का नियमित अभ्यास फायदेमंद हो सकता है। दोस्तों कहते हैं ना, जिस तरह पैर आंधियों में भी अपनी जड़ों से जुड़ा होता है, वैसे ही हमें भी जीवन में संतुलन बनाए रखना चाहिए। वृक्षासना हमें यही सीख देता है।

चलिए दोस्तों, बात करते हैं भुजंगासना की। तो दोस्तों, इसे कोबरा पोज भी कहा जाता है। यह आसन पेट की मांसपेशियों को मजबूत करता है और रीढ़ की हड्डी को लचीला बनाता है। जो लोग पेट दर्द या स्टिफनेस से परेशान रहते हैं, उनके लिए ये काफी उपयोगी माना जाता है। और दोस्तों, आजकल मोबाइल और लैपटॉप के अधिक उपयोग की वजह से गर्दन और पीठ में तनाव आम बात हो गई है। ऐसे में भुजंगासना शरीर को राहत पहुंचाने में मदद कर सकता है। दोस्तों, योगा की बात हो और सूर्य नमस्कार का जिक्र ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो दोस्तों, सूर्य नमस्कार में 12 अलग अलग मुद्राओं का समावेश होता है। इसे पूरे शरीर की एक्सरसाइज हो जाती है। ये मेटाबॉलिज्म को बेहतर बनाता है, शरीर को फ्लेक्सिबल रखता है और ऊर्जा का स्तर बढ़ाता है। कई एक्सपर्ट्स मानते हैं कि अगर रोजाना कुछ राउंड सूर्य नमस्कार किए जाए तो पूरे शरीर को इसका लाभ मिल सकता है। दोस्तों, अब बात करते हैं वज्रासना की। तो ये एक ऐसा आसन है जो खाने के बाद भी किया जा सकता है। वज्रासना पाचन क्रिया को बेहतर बनाने में मदद करते हैं और मन को शांत करता है। दोस्तों, सेहत सिर्फ एक्सरसाइज से नहीं बनती, बल्कि एक्सरसाइज के बाद हम क्या करते हैं, ये भी उतना ही जरूरी है। तो आइए जानते हैं कि एक्सरसाइज के तुरंत बाद हमें क्या नहीं करना चाहिए। दोस्तों, सबसे पहली बात, एक्सरसाइज के तुरंत बाद एकदम से बैठ या लेट नहीं जाना चाहिए। शरीर को धीरे धीरे नॉर्मल मोड में आने का समय देना चाहिए। दूसरी बात, बहुत ज्यादा ठंडा पानी तुरंत नहीं पीना चाहिए। इसकी जगह नॉर्मल या हल्का ठंडा पानी थोड़ी थोड़ी मात्रा में पीना बेहतर माना जाता है। तीसरी बात है, एक्सरसाइज के तुरंत बाद जंक फूड या ऑयली स्नैक्स से बचना चाहिए। वर्कआउट के बाद शरीर को पोषक तत्वों की

ज़रूरत होती है, इसीलिए फल, नट्स या हेल्दी ब्रेकफास्ट एक अच्छा विकल्प हो सकता है। छोटी बात, कुछ लोग एक्सरसाइज करते ही मोबाइल में लग जाते हैं और पूरी तरह इनएक्टिव हो जाते हैं। इसकी जगह थोड़ी देर स्ट्रेचिंग और कूल डाउन करना ज्यादा फायदेमंद होता है। और दोस्तों, पांचवी बात है, शरीर के संकेतों को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। अगर ज्यादा थकान, चक्कर या असुविधा महसूस हो तो आराम करना और जरूरत पड़ने पर डॉक्टर की सलाह लेना उचित होता है। श्रोता दोस्तों, योगा और एक्सरसाइज का मकसद सिर्फ वजन कम करना नहीं है, इसका असली उद्देश्य है शरीर, मन और जीवन में संतुलन बनाना। रोजाना थोड़ा सा समय अपनी सेहत के लिए निकालना एक ऐसी आदत है जो आने वाले समय में बहुत बड़े फायदे दे सकती है। इसी सोच के साथ याद रखिए, रोज की थोड़ी सी मेहनत कल की बड़ी सेहत बन सकती है। मैं हूं आपकी अपनी रेडियो साथी गिची कनिक और आप सुन रहे हैं सुबह सवेरे कार्यक्रम। इसी के साथ दोस्तों, अब वक्त हो चला है कुछ बेहतरीन गीतों का। बने रहे हमारे साथ अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। तो आइए दोस्तों, अब कुछ बेहतरीन गीतों का आनंद लेते हैं।

श्रोताओं, इसी के साथ ही कार्यक्रम सुबह सवेरे यहीं पर समाप्त होता है। आपको बता दूं, अब से कुछ ही देर बाद आप सुन पाएंगे आपतानी बोली में समाचार। कृपया कुछ पल प्रतीक्षा करें।

चलिए दोस्तों, इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं हमारे खास सेगमेंट से, यानी आज का इतिहास। दोस्तों आइए जानते हैं 17 जून के इतिहास में दर्ज कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में। सन 1775 में आज के दिन बंकर हिल के युद्ध में ब्रिटिश सेना ने अमेरिकन महाद्वीपीय सेना को पराजित किया था, लेकिन इस जीत के लिए उन्हें भारी नुकसान उठाना पड़ा था। सन 1858 में आज के दिन प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की महान वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई ने ग्वालियर में अंग्रेजों से लड़ते हुए वीरगति प्राप्त की थी।

सन 1885 में आज के दिन अमेरिका और फ्रांस की दोस्ती के प्रतीक स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी के पर्स जहक के माध्यम से न्यूयॉर्क बंदरगाह पर पहुंचे थे। सन 1938 में आज के दिन जापान ने चाइना के खिलाफ युद्ध की औपचारिक घोषणा की थी। सन 1973 में आज के दिन भारत के प्रसिद्ध टेनिस खिलाड़ी लिएंडर पेस का जन्म हुआ था।

सन 2004 में आज के दिन वैज्ञानिकों ने मंगल ग्रह पर ऐसे पत्थर खोजे थे जो पृथ्वी की चट्टानों से मिलते जुलते पाए गए थे। सन 2008 में आज के दिन भारत में पूरी तरह से विकसित हल्क लड़ाकू विमान तेजस का बेंगलुरु में सफल परीक्षण किया गया था।

तो दोस्तों इतिहास के पन्नों से आज बस इतना ही और अब आइए रुख करते हैं राजधानी ईटानगर से प्रकाशित समाचार पत्रों की सुर्खियों की ओर। अरुणाचल टाइम्स की पहली हेडलाइन से रिसर्च डिपार्टमेंट सेलिब्रेट 75 इयर्स ऑफ सर्विस। अरुणाचल प्रदेश सरकार के अनुसंधान विभाग ने मंगलवार को यहां डीके कन्वेंशनल हॉल में राज्य के लिए अपनी सेवा के 75 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में अपने साल के उत्सव का शुभारंभ किया। उद्घाटन कार्यक्रम का शुभारंभ राज्यसभा सदस्य चुनाव टाई तेगत ने किया। विभाग की उत्पत्ति 1951 में पहले सोड अधिकारी की नियुक्ति से हुई थी और तब से अरुणाचल प्रदेश की समृद्ध विरासत के दस्तावेजीकरण, संरक्षण और प्रचार में एक उल्लेखनीय 75 साल की यात्रा पूरी की है। द अरुणाचल टाइम्स की अगली हेडलाइन से हिलांग याजेक विंस गोल्ड एट 15 फेडरेशन कप। हाल ही में लुधियाना पंजाब में आयोजित 15वें फेडरेशन कप पुरुषों के शरीर स्वास्थ्य और खेल काया, महिलाओं के मॉडल काया और फिटनेस काया चैंपियनशिप में हिलांग याजेक अरुणाचल प्रदेश के लिए असाधारण कलाकार के रूप में उभरे। महिलाओं के मॉडल काया में स्वर्ण और महिलाओं के स्विमसूट स्पर्धाओं में रजत पदक जीता। द अरुणाचल टाइम्स की अगली हेडलाइन से नीट यूजी रीटेस्ट गवर्नमेंट ब्लॉक्स टेलीग्राम ऐप टिल 22 जून। सरकार ने मंगलवार को नीट यूजी 2026 की फिर से जांच से पहले टेलीग्राम मैसेजिंग ऐप तक पहुंच को अस्थायी रूप से प्रतिबंधित कर दिया। राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी एनटीए ने कहा कि इस उपाय का उद्देश्य धोखाधड़ी वाले रैकेट और गलत सूचना से निपटना है। एनटीए के महानिदेशक अभिषेक सिंह ने कहा कि 22 जून तक टेलीग्राम पर प्रतिबंध ये सुनिश्चित करने के प्रयासों का हिस्सा है कि 21 जून को बिना कदाचार के पुनः परीक्षण किया जाए। तो दोस्तों राजधानी ईटानगर से प्रकाशित समाचार पत्रों की सुर्खियों में आज बस इतना ही और आप हमें सुन रहे हैं आकाशवाणी ईटानगर केंद्र के अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज पर। श्रोता दोस्तों इसी के साथ आइए मॉर्निंग इन्फोटेनमेंट कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और आनंद लेते हैं कुछ बेहतरीन फिल्मी नगमों का।

दोस्तों, इसी के साथ ही कार्यक्रम मॉर्निंग इन्फोटेनमेंट यहीं पर समाप्त होता है। अब से कुछ ही पलों में आप सुन पाएंगे तागिन बोली में समाचार। कृपया कुछ पल प्रतीक्षा करें।

नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं सदाबहार कार्यक्रम और मैं हूं आपकी रेडियो दोस्त केचि कनिक। तो दोस्तों आइए नजर डालते हैं आज के मौसम के हाल पर। दोस्तों आज ईटानगर में सुबह का तापमान लगभग 24 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। मौसम फिलहाल आंशिक रूप से बादलों से घिरा हुआ है और तापमान 26 डिग्री तक पहुंचने की संभावना है। नमी यानी ह्यूमिडिटी करीब 95% है, इसलिए मौसम थोड़ा उमस भरा महसूस हो सकता है। सुबह 9 बजे से दोपहर तक हल्की बारिश और कहीं कहीं गरज के साथ बौछारों की संभावना बनी हुई है, इसीलिए यदि आप घर से बाहर निकलने की योजना बना रहे हैं तो छाता या रेनकोट साथ रखना ना भूलें। हवा की रफ्तार लगभग 3 किलोमीटर प्रति घंटा है, यानी हवाएं शांत रहेगी। अच्छी बात ये है कि आज हवा की गुणवत्ता काफी अच्छी है, इसलिए सुबह की सैर या हल्की फुल्की एक्सरसाइज के लिए मौसम अनुकूल कहा जा सकता है। तो दोस्तों बादलों की इस नरम चाव और बारिश की हल्की फुहारों के बीच अपने दिन को मुस्कुराहट के साथ बिताइए। मौसम चाहे जैसा भी हो, मन का मौसम हमेशा खुशनुमा बनाए रखिए। और अब इसी सुहाने एहसास के साथ आइए सुनते हैं कुछ सदाबहार गीत जो आपके दिन को और भी खुशनुमा बना देगा।

दोस्तों, इसी के साथ ही कार्यक्रम सदाबहार यहीं पर समाप्त होता है। और आपको बता दूं, अब से कुछ ही देर बाद बारी बारी से यानी 8 बजे आप सुन पाएंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित समाचार प्रभात, 8:15 पर मॉर्निंग न्यूज, 8:30 पर आप सुन पाएंगे आकाशवाणी सिलोंग केंद्र से नॉर्थ ईस्ट न्यूज। हम फिर हाजिर होंगे कार्यक्रम हेलो ईटानगर के साथ। तब तक के लिए बने रहे अरुण एफ एम 103.1 मेगाहर्ट्ज़ पर, जहां होती है दिल से दिल की बात।

0: शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी देशों से वैश्विक समुद्री मार्गों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की अपील की। संघर्ष वाले इलाकों में नाविकों की सुरक्षा पर भी जोर दिया। प्रधानमंत्री मोदी आज फ्रांस में G7 शिखर सम्मेलन के क्रम में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करेंगे। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान ने यमुना नदी को स्वच्छ बनाने के लिए किशाऊ बांध परियोजना के अमल पर सहमति व्यक्त की। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने उम्मीदवारों को नीट पुनर्परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक होने के फर्जी दावों पर भरोसा न करने की अपील की। पश्चिम बंगाल के हिमालय से सटे इलाकों और सिक्किम में आज भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट। और पुरुष क्रिकेट में भारत आज दोपहर लखनऊ में 3 मैचों की श्रृंखला के दूसरे वनडे में अफगानिस्तान के साथ खेलेगा। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी देशों से अंतर्राष्ट्रीय समुद्री मार्गों की सुरक्षा सुनिश्चित करने और नाविकों को संघर्ष से जुड़े खतरों से सुरक्षा देने की अपील की है। फ्रांस में G7 शिखर सम्मेलन के आउटरीच सत्र में समुद्री व्यापार के बढ़ते खतरों और पश्चिम एशिया में अस्थिरता से मानवीय नुकसान के बारे में प्रधानमंत्री ने कहा कि उन नाविकों की सुरक्षा को सुनिश्चित करना हमारी जिम्मेदारी है जो वैश्विक समुद्री व्यापार के माध्यम से सभी देशों को जोड़ते हैं। बैठक के दौरान प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत ने हमेशा मानवता को प्राथमिकता दी है, जो भारत के नेतृत्व वाली पहलों में दिखाई देती है। उन्होंने ये भी कहा कि भारत की सोच सदियों से वसुधैव कुटुंबकम की रही है और इसीलिए भारत दुनिया में प्राकृतिक आपदाओं के समय सबसे पहले मदद पहुंचाने वाला देश बना है। श्री मोदी ने श्रीलंका में चक्रवात, अफगानिस्तान में भूकंप, मोजाम्बिक में बाढ़ और जमैका में तूफान के समय भारत के सहयोग की चर्चा भी की। श्री मोदी ने कहा कि वित्तीय समावेशन, स्वास्थ्य सुरक्षा, डिजिटल पहचान और तकनीक के जरिए लोगों के सशक्तिकरण तथा महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास को बढ़ावा देने में सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय का मंत्र बहुत कारगर रहा है। श्री मोदी ने स्पष्ट कहा कि अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी शांति और स्थिरता से आएगी, जिसके लिए बातचीत और कूटनीतिक प्रयास जरूरी हैं। G7 के सदस्य देश भारत समेत कई देशों के साथ मिलकर दुनिया भर में स्वास्थ्य और विकास सहयोग को भी मजबूत करने की पहल करेंगे। G7 के नेताओं ने अफ्रीकी देश कांगो और युगांडा में फिर से फैले इबोला के प्रकोप से निपटने के लिए मिलकर कदम उठाने की अपील की है। G7 शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ बैठक करेंगे। आज की इस मुलाकात में दोनों पक्षों के बीच कई क्षेत्रों में आपसी सहयोग को मजबूत करने तथा आपसी हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी व्यापक चर्चा की संभावना है। और ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: यह बैठक इसलिए भी काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत एक बड़ी वैश्विक महाशक्ति के रूप में उभरा है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय जटिल वैश्विक चुनौतियों के समाधान के लिए लगातार नई दिल्ली की ओर देख रहा है। वैश्विक मुद्दों पर चर्चाओं को नया आकार देने में भारत की बढ़ती भूमिका, उसके विस्तार लेते राजनयिक प्रभाव और विभिन्न मंचों पर विश्व नेताओं के साथ सक्रिय जुड़ाव को दर्शाती है। कल शिखर सम्मेलन के एक आउटरीच सत्र के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बात पर विशेष जोर दिया कि आज की आपस में जुड़ी हुई दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी बनाने के लिए आपसी विश्वास कितना जरूरी है। उन्होंने इस बात को भी रेखांकित किया कि भारत ने हमेशा मानवता को सर्वोपरि रखने के दृष्टिकोण का पालन किया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी का भारत का दृष्टिकोण वसुधैव कुटुंबकम यानी पूरी दुनिया एक परिवार है के दर्शन पर आधारित है। अंकित कुमार, आकाशवाणी समाचार, एवियों, फ्रांस।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल फ्रांस में G7 शिखर सम्मेलन के दौरान कनाडा, ब्रिटेन और संयुक्त अरब अमीरात के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें की। श्री मोदी और कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने भारत कनाडा संबंधों में आई सकारात्मक तेजी का स्वागत किया है और रणनीतिक साझेदारी के लिए प्रतिबद्धता दोहराई है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर के साथ बैठक में प्रधानमंत्री मोदी ने विजन 2035 के तहत आपसी संबंधों में हुई प्रगति की समीक्षा की। प्रधानमंत्री मोदी ने संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान से भी मुलाकात की। श्री मोदी ने राष्ट्रपति अल नाहयान को इस वर्ष भारत में होने वाले ब्रिक्स सम्मेलन में शामिल होने का न्योता भी दिया है। प्रधानमंत्री मोदी ने केन्या और मिस्र के राष्ट्रपति से भी मुलाकात की। श्री मोदी ने जापान की प्रधानमंत्री सानाए ताकाइची के साथ बैठक में कहा कि दोनों देशों के संबंधों में व्यापार और निवेश को प्राथमिकता दी जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 वर्ष में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांत पर भारत में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। इस मौके पर आकाशवाणी समाचार 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के इस विषय पर एक विशेष श्रृंखला प्रस्तुत कर रहा है। आज इस कड़ी में चर्चा देश की विरासत के संरक्षण और संवर्धन के लिए सरकार के प्रयासों पर।
2: पिछले 12 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने अपनी सभ्यतागत धरोहर के संरक्षण और संवर्धन के लिए कई ऐतिहासिक पहल की है, जिसने करोड़ों नागरिकों में गौरव की भावना को मजबूत किया है। इनमें सबसे महत्वपूर्ण क्षण जनवरी 2024 में आया, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अयोध्या में भव्य श्री राम जन्मभूमि मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की। पारंपरिक नागर शैली में निर्मित यह मंदिर आस्था, श्रद्धा और भारत की स्थापत्य कला की उत्कृष्टता का प्रतीक है। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में एक श्रद्धालु पंकज जड़िया ने अपनी हाल ही में की अयोध्या यात्रा के अनुभव साझा किए।
3: अभी थोड़े दिनों पहले मैं अयोध्या गया था, वहाँ हमने प्रभु राम के दर्शन किए। वहाँ व्यवस्था बहुत ही बढ़िया है, भीड़ को मैनेज के लिए सरकार ने बढ़िया प्रबंध कर रखा है। मंदिर का प्रांगण बहुत ही भव्य है, सभी लोग लाइन में लगकर प्रभु का दर्शन करते हैं।
2: मध्य प्रदेश के उज्जैन में महाकाल लोक परियोजना के प्रथम चरण को अक्टूबर 2022 में राष्ट्र को समर्पित किया गया। इस परियोजना की कुल लागत लगभग 850 करोड़ रुपए है। भव्य कॉरिडोर में भगवान शिव से जुड़ी कथाओं को दर्शाने वाली आकर्षक मूर्तियां, भित्ति चित्र और स्थापत्य कला के अद्भुत उदाहरण देखने को मिलते हैं। आधुनिक तकनीक और AI आधारित निगरानी प्रणाली से सुसज्जित महाकाल लोक विरासत और नवाचार का अद्भुत संगम प्रस्तुत करता है। वहीं वाराणसी में दिसंबर 2021 में समर्पित काशी विश्वनाथ कॉरिडोर ने तीर्थ यात्रियों के अनुभव को पूरी तरह बदल दिया है। यह परियोजना काशी विश्वनाथ मंदिर को सीधे गंगा नदी से जोड़ती है। 5.5 एकड़ में फैली इस परियोजना ने पहुंच को सुगम बनाया है और भारत के सबसे पूजनीय आध्यात्मिक केंद्रों में से एक को नया स्वरूप दिया है। वर्ष 2014 से मार्च 2025 तक काशी में 48,000 करोड़ रुपए से अधिक लागत वाली 580 विकास परियोजनाओं पर काम शुरू किया गया। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में वाराणसी के निवासी प्रियांशु सिंह ने कहा कि काशी विश्वनाथ कॉरिडोर मंदिर आने वाले श्रद्धालुओं को आसान और सुविधाजनक पहुंच प्रदान कर रहा है।
4: काशी में मोदी जी ने बहुत काम किया है। पहले मंदिर तक जाने वाला रास्ता काफी संकरा हुआ करता था, जिससे बहुत ही ज्यादा दिक्कत होती थी, पर अब कॉरिडोर बनने से भीड़ भी व्यवस्थित रहती है और लोगों को भी दर्शन करने में काफी आसानी होती है।
2: ये परिवर्तनकारी पहले भारत की उस प्रतिबद्धता को दर्शाती हैं, जिसके तहत देश अपनी सांस्कृतिक जड़ों को सहेजते हुए आत्मविश्वास के साथ भविष्य की ओर अग्रसर है। सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। यमुना नदी को स्वच्छ बनाने के लिए किशाऊ बांध परियोजना पर 6 राज्यों में सहमति बन गई है। इनमें हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा और राजस्थान शामिल हैं। ये सहमति कल गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में नई दिल्ली में आयोजित एक बैठक में बनी। सहमति के अनुसार परियोजना की 90% राशि केंद्र सरकार देगी, शेष 10% राशि 6 राज्य मिलकर वहन करेंगे। गृह मंत्रालय के अनुसार ये फैसला यमुना को स्वच्छ करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने आगामी नीट परीक्षा को देखते हुए विद्यार्थियों और अभिभावकों को घोटालेबाजों से सावधान रहने का अनुरोध किया है। एजेंसी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि घोटालेबाज लोग टेलीग्राम पर ऐसे चैनल चला रहे हैं जिनमें 21 तारीख को प्रस्तावित परीक्षा के प्रश्न पत्र साझा करने के लिए 14,000 से 25,000 रुपए तक की मांग की जा रही है। एनटीए के महानिदेशक अभिषेक सिंह ने कहा कि हम ये सुनिश्चित करेंगे कि ये परीक्षा बिना किसी गड़बड़ी के संपन्न हो।
5: एनटीए इज कमिटेड।
6: एनटीए यह पक्का करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है कि कोई भी गड़बड़ी ना हो। हर प्रश्न पत्र और उसमें शामिल हर सवाल को पूरी तरह सुरक्षित तरीके से तैयार किया गया है। हमने सामान्य सुरक्षा उपायों के अलावा अतिरिक्त सुरक्षा इंतजाम भी किए हैं। एनटीए ने कई एजेंसियों की मदद ली है और हम यह सुनिश्चित करेंगे कि परीक्षा बिना किसी गड़बड़ी के संपन्न हो।
5: एंड वी विल इंश्योर दैट द एग्जामिनेशन इज कंडक्टेड इन अ फ्लॉलेस मैनर।
0: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य के 59 जिलों में 21 जून को होने वाली नीट परीक्षा के उम्मीदवारों के लिए विशेष व्यवस्था करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा है कि उम्मीदवारों को प्रवेश पत्र दिखाने पर राज्य सड़क परिवहन निगम की बसों के किराए में 50% की छूट दी जाएगी। मुख्यमंत्री ने परीक्षा से जुड़ी अफवाहों, भ्रामक जानकारी या झूठे दावों को फैलने से रोकने के लिए सोशल मीडिया और अन्य प्लेटफॉर्म्स की कड़ी निगरानी करने का भी आदेश दिया है। मौसम विभाग ने आज पश्चिम बंगाल में हिमालय से लगे क्षेत्रों और सिक्किम के कुछ हिस्सों में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। असम, मेघालय, बिहार, केरलम, माहे और कराईकल के कुछ हिस्सों में दिन में तेज बारिश की संभावना है। वहीं राजस्थान के कुछ हिस्सों में आज गरज के साथ आंधी की संभावना बन रही है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, बिहार, छत्तीसगढ़ और उत्तर पूर्वी भारत के कुछ हिस्सों में गरज के साथ बारिश हो सकती है। क्रिकेट में भारत और अफगानिस्तान के बीच 3 मैचों की एक दिवसीय श्रृंखला का दूसरा मुकाबला आज लखनऊ में दोपहर 1:30 बजे से होगा। शुभमन गिल की अगुवाई वाली भारतीय टीम फिलहाल 1-0 से आगे है। धर्मशाला में खेला गया पहला मैच भारत ने जीता था। और आवाज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं सरफिरोजी।
7: धन्यवाद मुनीश। देश की राजधानी से प्रकाशित सभी हिंदी अखबारों ने G7 शिखर सम्मेलन और नीट UG पुनर्परीक्षा के आयोजन से जुड़ी खबरों को सुर्खियों में जगह दी है। कुछ अखबारों ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के विकास के लिए तैयार की गई बड़ी योजना को भी मुख्य पृष्ठ पर सबसे ऊपर प्रकाशित किया है। लोकसत्ता की पहली खबर का शीर्षक है G7 का आगाज, पीएम मोदी और डोनाल्ड ट्रंप की हुई मुलाकात। अखबार ने स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी से उनके देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान स्वीकार करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर को भी प्रमुखता से छापा है। दैनिक ट्रिब्यून की सुर्खी है मोदी ट्रंप की 16 माह बाद मुलाकात, वार्ता आज। पंजाब केसरी ने प्रधानमंत्री मोदी और अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की भेंट का चित्र प्रकाशित करते हुए शीर्षक दिया है G7 में मोदी ने उठाया भारतीय नागरिकों का मुद्दा। पत्र ने नीट UG की पुनः परीक्षा से पहले टेलीग्राम ऐप पर स्थायी प्रतिबंध की खबर को भी अपना शीर्ष समाचार बनाया है। दैनिक भास्कर सहित सभी अखबारों ने इस खबर को विस्तार से पहले पन्ने पर जगह दी है। दैनिक भास्कर की सुर्खी है पेपर लीक ना हो इसलिए 22 तक टेलीग्राम बंद। पत्र ने इस वजह से आम उपयोगकर्ताओं को होने वाली परेशानी का भी विस्तार से विश्लेषण प्रकाशित किया है। अमर उजाला ने अपने संपादकीय पृष्ठ पर द न्यूयॉर्क टाइम्स की पत्रकार आजादे मुआवेनी के लेख को प्रकाशित किया है। शीर्षक है क्या ये तेहरान की जीत है। इस लेख में कहा गया है कि दूसरे विश्व युद्ध के बाद से ज्यादातर अमरीकी सैन्य दखल जटिल संघर्ष में बदलती गई जिसे शायद ही कोई जीत कहे।
0: और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी देशों से वैश्विक समुद्री मार्गों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की अपील की। प्रधानमंत्री मोदी आज फ्रांस में G7 शिखर सम्मेलन के क्रम में अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से करेंगे मुलाकात। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान ने यमुना नदी को स्वच्छ बनाने के लिए किछाऊ बांध परियोजना के अमल पर सहमति व्यक्त की। और पुरुष क्रिकेट में भारत आज दोपहर लखनऊ में 3 मैचों की श्रृंखला में दूसरे वनडे में अफगानिस्तान के साथ खेलेगा। और इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
8: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I'm Sarabjit Kaur. The headlines. Prime Minister Narendra Modi calls on all nations to ensure security of global maritime routes and protect seafarers from conflict-related threats. Prime Minister Modi to meet US President Donald Trump on the sidelines of G7 summit in Avion, France today. Himachal Pradesh, Uttarakhand, Delhi, Uttar Pradesh, Haryana and Rajasthan reach consensus on implementation of long-pending Keshau Dam project to revive Yamuna River. National Testing Agency warns candidates against fake NEET re-exam paper leak claims. IMD issues orange alert for heavy rainfall over sub-Himalayan West Bengal and Sikkim today. And in men's cricket, India to take on Afghanistan in second ODI of three-match series in Lucknow this afternoon. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi has called on all nations to ensure security of global maritime routes and protect seafarers from conflict-related threats. Addressing an outreach session of G7 summit in Avion, France, Mr. Modi said that conflicts in West Asia have disrupted global trade and caused loss of life. Highlighting the growing risks to maritime trade and the human cost of instability in West Asia, Prime Minister said it is our responsibility to ensure the safety of the seafarers who connect all nations through global maritime trade. Ministry of External Affairs informed that during the session, the Prime Minister underscored the importance of trust in building international partnerships, especially in an increasingly interconnected world. The Prime Minister also noted that international partnerships should move beyond the donor-recipient paradigm to one of solidarity and equal ownership. He also stated that lack of respect for international law was the biggest hurdle to building international solidarity and needed to be addressed as a priority. The French city of Avion remains the epicenter of global diplomacy today as the G7 summit enters its crucial phase. With India participating as a partner country, all eyes are firmly set on a highly anticipated bilateral meeting between Prime Minister Narendra Modi and US President Donald Trump, scheduled for later today on the sidelines of the summit. This marks the first face-to-face meeting between the two leaders since they last met in Washington, D.C. in February 2025. During today's engagement, they are expected to hold wide-ranging discussions to deepen bilateral cooperation across multiple sectors while also deliberating on pressing regional and global issues of mutual interest. A report.
1: This meeting also holds significance as India has emerged as a major global power, with the international community increasingly looking towards New Delhi for solutions to complex global challenges. India's growing role in shaping discussions on global issues reflects its expanding diplomatic outreach and active engagement with world leaders across forums. During an outreach session at the summit yesterday, Prime Minister Narendra Modi underscored the importance of trust in building international partnerships, especially in an increasingly interconnected world. He also highlighted that India has always followed a humanity-first approach. He said this is reflected in India-led initiatives such as the International Solar Alliance, the Coalition for Disaster Resilient Infrastructure, the Global Biofuel Alliance, Mission Life and Ek Ped Maa Ke Naam campaign. He further said that India's vision of international partnership is rooted in the timeless philosophy of Vasudev Kutumbakam. The world is one family. Ankit Kumar, Akashwani News, Avion, France.
8: Besides his meeting with the US President, Prime Minister Modi is also scheduled today to participate in the G7 working session on reviving balanced, inclusive and sustainable economic growth for the benefit of all, and the working lunch on ensuring the safe, rapid and effective deployment of artificial intelligence. The Prime Minister will also hold a trilateral meeting with EU Council President Antonio Costa, European Commission President von der Leyen, and a bilateral engagement with German Chancellor Friedrich Merz. Earlier yesterday, the Prime Minister held bilateral meetings with Canadian Prime Minister Mark Carney, United Kingdom Prime Minister Keir Starmer, and the President of the United Arab Emirates, Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan, on the sidelines of the summit. The G7 nations have announced a series of initiatives to strengthen global health and development cooperation with several partner countries, including India. The G7 leaders called for a coordinated international response to the re-emerging Ebola outbreak in the Democratic Republic of Congo and Uganda. India, Egypt, Kenya and South Korea joined the appeal for enhanced measures, including contact tracing, border surveillance and community engagement. The leaders also pledged support for the development of vaccines, diagnostics and treatments for the rare Ebola strain. Home Minister Amit Shah chaired a crucial meeting in New Delhi yesterday on the long-pending Keshau Multipurpose Dam project aimed at the rejuvenation of the Yamuna River. In a statement, Home Ministry said that Himachal Pradesh, Uttarakhand, Delhi, Uttar Pradesh, Haryana and Rajasthan have agreed to sign a memorandum of understanding for the implementation of the project. Following the signing of the MOU, the Keshau project will be placed before the Union Cabinet for approval. Under the agreed funding pattern, the central government will provide 90% assistance for the water component of the project, while the remaining 10% will be shared by the six states. This is Akashvani giving you the news. For quick news updates round the clock, follow us on our X handle at AIR News Alerts. And for details of stories and more, log on to our website www.newsonair.gov.in and download News on AIR app. Welcome back. You're listening to the Morning News. National Testing Agency, NTA, has urged parents and candidates to beware of scammers ahead of

नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं ज्ञान और मनोरंजन से भरा हुआ कार्यक्रम हेलो ईटानगर, और मैं हूं आपकी रेडियो दोस्त केजे कनिक। लेकर आया हूं एक और रोचक और जानकारी से भरा हुआ सेगमेंट। दोस्तों, हमारे घर की रसोई में ऐसी कई चीजें होती है जो सिर्फ खाने का स्वाद ही नहीं बढ़ाती बल्कि हमारी सेहत के लिए भी बहुत फायदेमंद होती है। और आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे ही खास मसाले की जो लगभग हर भारतीय रसोई में मिल ही जाती है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रही हूँ हल्दी की। हल्दी सिर्फ खाने को रंग और टेस्ट देने के लिए ही नहीं होती बल्कि ये एक नेचुरल मेडिसिन के रूप में भी जानी जाती है। सदियों से हल्दी का इस्तेमाल आयुर्वेदिक इलाज में होता आ रहा है।

दोस्तों आइए सबसे पहले बात करते हैं हल्दी के एंटीसेप्टिक और एंटीबैक्टीरियल गुणों की। अगर आपको छोटी मोटी चोट लग जाए या स्किन पर कोई इन्फेक्शन हो तो हल्दी बहुत मददगार साबित होती है। हल्दी में ऐसे तत्व होते हैं जो बैक्टीरिया से लड़ते हैं और इन्फेक्शन को कम करने में मदद करते हैं। इसी वजह से पुराने जमाने में लोग जख्म पर हल्दी का लेप लगाया करते थे। दोस्तों हल्दी का एक और बड़ा फायदा है कि ये इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग बनाती है। अगर आप रोज थोड़ी सी हल्दी का सेवन करते हैं तो आपकी बॉडी बीमारियों से लड़ने के लिए ज्यादा मजबूत हो जाती है। दोस्तों अक्सर आपने सुना होगा कि जब किसी को सर्दी या खांसी हो जाती है तो घर के बड़े लोग कहते हैं गर्म दूध में हल्दी मिलाकर पियो। और सच में दोस्तों हल्दी वाला दूध सर्दी खांसी में बहुत फायदेमंद होती है। ये गला साफ करता है और बॉडी को अंदर से गर्म रखने में मदद करता है। इसके अलावा हल्दी पाचन क्रिया के लिए भी बहुत अच्छी होती है। अगर किसी को डाइजेशन की प्रॉब्लम हो तो खाने में हल्दी का इस्तेमाल करना फायदेमंद हो सकता है। ये पेट को हेल्दी रखती है और मेटाबॉलिज्म को बेटर बनाती है। दोस्तों हल्दी का इस्तेमाल स्किन केयर में भी किया जाता है। हल्दी को बेसन और दूध के साथ मिलाकर फेस पैक बनाया जाता है जो स्किन को ग्लो देने में मदद करता है। इसी वजह से शादियों में भी हल्दी की रस्म होती है जहां दुल्हा दुल्हन को हल्दी लगाई जाती है।

दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि हल्दी में एक पावरफुल एलिमेंट होता है जिसे क्यूरक्यूमिन कहा जाता है। यह हमारे शरीर में इन्फ्लेमेशन को कम करने में मदद करता है और कई हेल्थ प्रॉब्लम से बचाने में भी सहायक होता है। दोस्तों, अगर किसी को जॉइंट पेन है या बॉडी पेन की प्रॉब्लम होती है तो हल्दी का सेवन बहुत फायदेमंद माना जाता है। हल्दी में एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज होती है जो दर्द और सूजन को कम करने में मदद करती है। एक और इंटरेस्टिंग बात ये है कि हल्दी हार्ट हेल्थ के लिए भी अच्छी मानी जाती है। ये ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करने में मदद करती है और दिल को हेल्दी रखने में सहायक देती है। लेकिन दोस्तों, हर चीज की तरह हल्दी का भी संतुलित मात्रा में सेवन करना जरूरी है। ज्यादा मात्रा में किसी भी चीज का इस्तेमाल ठीक नहीं होता, इसीलिए हल्दी का इस्तेमाल भी लिमिटेड क्वांटिटी में ही करना चाहिए। तो दोस्तों, आज हमने जाना कि हमारी रसोई में मौजूद एक छोटी सी चीज हल्दी हमारी सेहत के लिए कितने फायदेमंद है। ये सिर्फ एक मसाला नहीं बल्कि एक नेचुरल हेल्थ बूस्टर भी है। अगर आप अपनी डेली लाइफ में थोड़ी सी हल्दी शामिल करते

दोस्तों इसी के साथ ही कार्यक्रम हेलो ईटानगर यहीं पर समाप्त होता है। आपको बता दूं अब से कुछ ही देर बाद आप सुन पाएंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र द्वारा प्रसारित हिंदी एवं अंग्रेजी में समाचार। कृपया कुछ पल प्रतीक्षा करें।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी देशों से अंतर्राष्ट्रीय समुद्री मार्गों की सुरक्षा सुनिश्चित करने और नाविकों को संघर्ष से जुड़े खतरों से सुरक्षा देने की अपील की है। फ्रांस में G7 शिखर सम्मेलन के आउटरीच सत्र में समुद्री व्यापार के बढ़ते खतरों और पश्चिम एशिया में अस्थिरता से मानवीय नुकसान के बारे में प्रधानमंत्री ने कहा कि उन नाविकों की सुरक्षा करना हमारी जिम्मेदारी है जो वैश्विक समुद्री व्यापार के माध्यम से सभी देशों को जोड़ते हैं। बैठक के दौरान प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत ने हमेशा मानवता को प्राथमिकता दी है, जो भारत के नेतृत्व वाली पहलों में दिखाई देती है। उन्होंने ये भी कहा कि भारत की सोच सदियों से वसुधैव कुटुंबकम की रही है और इसीलिए भारत दुनिया में प्राकृतिक आपदाओं के समय सबसे पहले मदद पहुंचाने वाला देश बना है। श्री मोदी ने श्रीलंका में चक्रवात, अफगानिस्तान में भूकंप, मोजम्बिक में बाढ़ और जमैका में तूफान के समय भारत के सहयोग की चर्चा की। श्री मोदी ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी शांति और स्थिरता से आएगी, जिसके लिए बातचीत और कूटनीतिक प्रयास जरूरी हैं। G7 शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ बैठक करेंगे। आज की इस मुलाकात में दोनों पक्षों के बीच कई क्षेत्रों में आपसी सहयोग को मजबूत करने तथा आपसी हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर व्यापक चर्चा की संभावना है। और ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: यह बैठक इसलिए भी काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत एक बड़ी वैश्विक महाशक्ति के रूप में उभरा है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय जटिल वैश्विक चुनौतियों के समाधान के लिए लगातार नई दिल्ली की ओर देख रहा है। वैश्विक मुद्दों पर चर्चाओं को नया आकार देने में भारत की बढ़ती भूमिका, उसके विस्तार लेते राजनयिक प्रभाव और विभिन्न मंचों पर विश्व नेताओं के साथ सक्रिय जुड़ाव को दर्शाती है। कल शिखर सम्मेलन के एक आउटरीच सत्र के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बात पर विशेष जोर दिया कि आज की आपस में जुड़ी हुई दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी बनाने के लिए आपसी विश्वास कितना जरूरी है। उन्होंने इस बात को भी रेखांकित किया कि भारत ने हमेशा मानवता को सर्वोपरि रखने के दृष्टिकोण का पालन किया है। अंकित कुमार, आकाशवाणी समाचार, एवियो फ्रांस।
0: प्रधानमंत्री यूरोपीय संघ परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा और यूरोपियन कमीशन के अध्यक्ष फॉन डेर लेन के साथ त्रिपक्षीय बैठक करेंगे। वे जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्स के साथ भी बैठक करेंगे। इससे पहले कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रांस में G7 शिखर सम्मेलन के दौरान कनाडा, ब्रिटेन और संयुक्त अरब अमीरात के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें की थी। यमुना नदी को स्वच्छ बनाने के लिए किशाऊ बांध परियोजना पर 6 राज्यों में सहमति बन गई है। इनमें हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा और राजस्थान शामिल हैं। ये सहमति कल गृहमंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में नई दिल्ली में आयोजित एक बैठक में बनी। सहमति के अनुसार परियोजना की 90% राशि केंद्र सरकार देगी, जबकि शेष 10% राशि 6 राज्य मिलकर वहन करेंगे। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने आगामी नीट परीक्षा को देखते हुए विद्यार्थियों और अभिभावकों को घोटालेबाजों से सावधान रहने का अनुरोध किया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य के 59 जिलों में 21 जून को होने वाली नीट परीक्षा के उम्मीदवारों के लिए विशेष व्यवस्था करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने परीक्षा से जुड़ी अफवाहों, भ्रामक जानकारी या झूठे दावों को फैलने से रोकने के लिए सोशल मीडिया और अन्य प्लेटफॉर्म्स की कड़ी निगरानी करने का भी आदेश दिया है। जम्मू कश्मीर में वार्षिक अमरनाथ यात्रा को देखते हुए सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। सुरक्षा बलों, पुलिस और नागरिक प्रशासन ने तीर्थ यात्रा से जुड़े स्थलों पर सुरक्षा के व्यापक प्रबंध किए हैं। ये यात्रा जुलाई में शुरू होगी। आज विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस है। यह दिवस मरुस्थलीकरण और सूखे के प्रभावों से निपटने के लिए जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से मनाया जाता है और इस साल का विषय है चरागाह, पहचान, सम्मान और पुनर्स्थापना। दक्षिण एशियाई थ्रोबॉल चैंपियनशिप और राष्ट्रीय स्पीड स्केटिंग चैंपियनशिप की शुरुआत आज से झारखंड की राजधानी रांची में हो रही है। और इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Tanvi Khurana. Prime Minister Narendra Modi has called on all the nations to ensure security of global maritime routes and protect seafarers from conflict-related threats. Addressing an outreach session of G7 summit in Avion in France, Mr. Modi said conflicts in West Asia have disrupted global trade and caused loss of life, highlighting the growing risks to maritime trade and the human cost of instability in West Asia. Prime Minister said it is our responsibility to ensure the safety of the seafarers who connect all nations through global maritime trade. Ministry of External Affairs informed that during the session, the Prime Minister underscored the importance of trust in building international partnerships, especially in an increasingly interconnected world. The Prime Minister also noted that international partnerships should move beyond the donor-recipient paradigm to one of solidarity and equal ownership. The French city of Avion remains the epicenter of global diplomacy today as the G7 summit enters its crucial phase. With India participating as a partner country, all eyes are firmly set on a highly anticipated bilateral meeting between Prime Minister Narendra Modi and US President Donald Trump, scheduled for later today on the sidelines of the summit. This marks the first face-to-face meeting between the two leaders since they last met in Washington, D.C. in February last year. During today's engagement, they are expected to hold wide-ranging discussions to deepen bilateral cooperation across multiple sectors while also deliberating on pressing regional and global issues of mutual interest. Home Minister Amit Shah chaired a crucial meeting in New Delhi yesterday on the long-pending Kishau multi-purpose dam project aimed at the rejuvenation of the Yamuna River. In a statement, Home Ministry said that Himachal Pradesh, Uttarakhand, Delhi, Uttar Pradesh, Haryana and Rajasthan have agreed to sign a Memorandum of Understanding, MOU, for the implementation of the project. Following the signing of the MOU, the Kishau project will be placed before the Union Cabinet for approval. Under the agreement,

नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके फेवरेट कार्यक्रम फिल्मी गपशप पर। मैं हूँ आपकी रेडियो दोस्त किचि कनिक और हम बात करेंगे बॉलीवुड के सबसे गर्मा गर्म गॉसिप, बॉक्स ऑफिस अपडेट्स, एक्सक्लूसिव स्टोरीज और स्टार्स की दुनिया की दिलचस्प बातें। तो बिना किसी डिले के आइए शुरू करते हैं आज का धमाकेदार फिल्मी गपशप।

दोस्तों आइए सबसे पहले बात करते हैं इस हफ्ते की सबसे ज्यादा चर्चा में रहने वाली फिल्म मैं वापस आऊंगा की। डायरेक्टर इम्तियाज अली की लेटेस्ट डायरेक्टोरियल ने रिलीज के साथ ही क्रिटिक्स और ऑडियंस दोनों का अटेंशन ग्रैब किया है। फिल्म एक इमोशनल लव स्टोरी है जो इंडिया के पार्टीशन के बैकड्रॉप में सेट है। ओपनिंग डे पर फिल्म ने एवरेज शुरुआत की थी, लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि वर्ड ऑफ माउथ का असर धीरे धीरे दिख रहा है। डे 5 तक फिल्म के कलेक्शंस में स्टेबिलिटी और ग्रोथ नजर आ रही है। सोशल मीडिया पर कई व्यूअर्स इस फिल्म को इम्तियाज अली की बेस्ट फिल्म्स में से एक बता रहे हैं। फिल्म के इमोशनल सीन्स और सोलफुल स्टोरी टेलिंग को काफी अप्रिसिएट किया जा रहा है। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या मैं वापस आऊंगा फिल्म वीकेंड के बाद भी स्ट्रॉन्ग रन मेंटेन कर पाएंगी, अब देखना होगा। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं एक्ट्रेस कंगना रनौत की लेटेस्ट रिलीज भारत भाग्या विधाता की। फिल्म 12 जून को थिएटर्स में रिलीज हुई थी और ओपनिंग वीकेंड में कलेक्शंस में अच्छा इम्प्रूवमेंट देखने को मिला, लेकिन वीकडेज शुरू होते ही एक्सपेक्टेड स्लो डाउन नजर आया। मंडे को कलेक्शंस में नोटिसेबल ड्रॉप देखा गया और ट्यूसडे पर भी डाउनवर्ड ट्रेंड कंटिन्यू रहा। इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स का मानना है कि फिल्म को सस्टेन करने के लिए स्ट्रॉन्ग वर्ड ऑफ माउथ और ऑडियंस सपोर्ट की जरूरत होगी। और दोस्तों कंगना की फिल्म्स अक्सर डिस्कशन का टॉपिक बन जाती है, लेकिन बॉक्स ऑफिस पर लॉन्ग रन के लिए कंटेंट और ऑडियंस कनेक्ट सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है। दोस्तों अब चलते हैं नॉस्टैल्जिया लैंड में और बात करते हैं बॉलीवुड की आइकॉनिक फिल्म दिल तो पागल है की। रिसेंटली एक्ट्रेस करिश्मा कपूर अपनी वेब सीरीज ब्राउन के प्रमोशंस में बिजी थी, जबकि माधुरी दीक्षित अपनी फिल्म माँ बहन को प्रमोट कर रही है। प्रमोशन के दौरान करिश्मा कपूर ने दिल तो पागल है से जुड़ी एक बहुत इंटरेस्टिंग बात शेयर की। उन्होंने बताया कि उनके कैरेक्टर

दोस्तों, इस म्यूजिकल ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है कार्यक्रम फिल्मी गपशप पर। चलिए दोस्तों, इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और अब बात करते हैं फिल्म माँ बहन की। दोस्तों, फिल्म माँ बहन ऑडियंस के बीच काफी पसंद की जा रही है। फिल्म में माधुरी दीक्षित, तृप्ति डिमरी और धरना दुर्गा जैसे कलाकार नजर आ रहे हैं। पहली नजर में ये कॉमेडी एंटरटेनर लगती है, लेकिन इसकी कहानी में कई गहरी बातें छुपी हुई है। फिल्म कंसेंट यानी किसी की मर्जी की अहमियत और सोसाइटी में सिंगल मदर्स को लेकर बनी सोच जैसे मुद्दों को बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से दिखाती है। सबसे खास बात ये है कि फिल्म ऑडियंस को प्रीच नहीं करती, बल्कि हंसाते हंसाते एक जरूरी मैसेज दे जाती है। शायद इसी वजह से लोग इस फिल्म से खुद को कनेक्ट कर पा रहे हैं। दोस्तों, बात करते हैं बॉलीवुड के एक ऐसे सिंगर की जिनकी आवाज हर जनरेशन के दिल के करीब है। दोस्तों, सिंगर सोनू निगम ने हाल ही में अपनी हेल्थ को लेकर एक अपडेट शेयर किया है। उन्होंने बताया कि वो पिंच नर्व्स की प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं। पिछले कई दिनों से MRI और CT स्कैन्स करवाया जा रहे हैं और इलाज भी चल रहा है, लेकिन एक सच्चे कलाकार की पहचान ही यही होती है कि मुश्किलें चाहे कितनी भी हो, वो अपने फैंस को निराश नहीं करते। तो दोस्तों, सोनू निगम ने भी अपने लाइफ कमिटमेंट्स को पूरा करने का फैसला किया है। उनकी इस डेडिकेशन को देखकर बस इतना ही कहने का मन करता है कि सफर मुश्किल हो तो हौसले और भी जरूरी हो जाते हैं। हम दुआ करते हैं कि सोनू निगम जल्द से जल्द पूरी तरह सेहतमंद हो जाए। दोस्तों, आइए अब चलते हैं साल 2024 की उन फिल्मों की तरफ जिनका इंतजार फैंस बेसब्री से कर रहे हैं। सबसे पहले नंबर पर है दृश्यम 3। अजय देवगन और टाबू की ब्लॉकबस्टर फ्रेंचाइज एक बार फिर वापस आ रही है। विजय सलगांवकर का कैरेक्टर आज भी लोगों के जहन में बसा हुआ है। अब देखना होगा कि तीसरी कहानी में क्या नया ट्विस्ट और सस्पेंस लेकर आती है ये फिल्म। दूसरे नंबर पर है बटवारा 1947। सनी देओल, प्रीति जिंटा और अली फजल स्टेरर, ये फिल्म भारत के भीवा जान के दौर की कहानी लेकर आ रही है। हिस्ट्री और इमोशन से भरी ये फिल्म ऑडियंस को एक अलग ही सफर पर ले जाती है। तीसरे नंबर पर है बेरिया 2। हॉरर और कॉमेडी का जबरदस्त कॉम्बिनेशन फिर से लौटने वाला है। पहली फिल्म ने ऑडियंस को खूब एंटरटेन किया था और अब सीक्वल से एक्सपेक्टेशंस और भी बढ़ गई है। चौथी नंबर पर है रामायणा फिल्म। 2024 की सबसे ग्रैंड और मोस्ट अवेटेड फिल्म्स में से एक है। इंडियन माइथोलॉजी को बड़े पर्दे पर देखने के लिए ऑडियंस का एक्साइटमेंट काफी हाई है। फिल्म को लेकर हर नई अपडेट सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर जाती है। दोस्तों, अब बात करते हैं OTT की। तो दोस्तों, आजकल OTT प्लेटफॉर्म्स में एंटरटेनमेंट की दुनिया में किसी सुपरस्टार से कम नहीं। OTT पर ट्रेंड कर रही है फिल्म योर फॉल्ट लंदन। रोमांस और इमोशन से भरी यह फिल्म रिलेशनशिप की कम्प्लेक्सिटीज को एक्सप्लोर करती है। अगर आप रोमांटिक ड्रामास पसंद करते हैं तो ये आपकी वॉचलिस्ट में जरूर होनी चाहिए। दूसरे नंबर पर है राख। क्राइम थ्रिलर लवर्स के लिए एक इंटरेस्टिंग चॉइस। मिस्ट्री और सस्पेंस से भरी ये कहानी व्यूअर्स को लास्ट तक बंधे रखने की कोशिश करती है। और दोस्तों, तीसरे नंबर पर है टुकड़ा के मेरा प्यार सीजन 2। पॉलिटिकल ड्रामा और रिवेंज की कहानी को आगे बढ़ाता हुआ ये सीजन ऑडियंस के बीच काफी चर्चा में है। जो लोग पहले सीजन देख चुके हैं, उनके लिए ये सीजन और भी एक्साइटिंग हो सकता है। दोस्तों, फिल्मों की दुनिया में हर दिन कुछ नया सिखाती है। कभी हंसी देती है, कभी जज्बात और कभी एक नया नजरिया। आज हमने बात की एक मीनिंगफुल फिल्म की, सोनू निगम के जज्बे की, आने वाली बड़ी बॉलीवुड

फिल्म्स की और ओटीटी की फ्रेश रिलीज की। और दोस्तों, जाते जाते एक छोटी सी बात कहना चाहूंगा कि हर फिल्म के पीछे एक कहानी होती है और हर कहानी के पीछे कुछ एहसास। शायद इसीलिए सिनेमा हम सबको इतना पसंद आता है। मैं हूँ आपकी रेडियो दोस्त केची कनिक। फिलहाल लेती हूँ इजाजत। मुस्कुराते रहिए, गाते रहिए और सुनते रहिए अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज। इसी के साथ दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको सुनवाते हैं कुछ बॉलीवुड नगमों को।

0: आकाशवाणी ईटानगर का अरुण एफ एम 103.1 मेगाहर्ट्ज, दिल से दिल की बात।
1: दोस्तों, इसी के साथ ही कार्यक्रम फिल्मी गपशप यहीं पर समाप्त होता है। आपको बता दूं, अब से कुछ ही देर बाद आप सुन पाएंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित हिंदी एवं अंग्रेजी में समाचार। इसके बाद हम लौटेंगे कार्यक्रम रेडियो ऑन डिमांड लेकर।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी देशों से अंतर्राष्ट्रीय समुद्री मार्गों की सुरक्षा सुनिश्चित करने और नाविकों को संघर्ष से जुड़े खतरों से सुरक्षा देने की अपील की है। फ्रांस में G7 शिखर सम्मेलन के आउटरीच सत्र में समुद्री व्यापार के बढ़ते खतरों और पश्चिम एशिया में अस्थिरता से मानवीय नुकसान के बारे में प्रधानमंत्री ने कहा कि उन नाविकों की सुरक्षा सुनिश्चित करना हमारी जिम्मेदारी है जो वैश्विक समुद्री व्यापार के माध्यम से सभी देशों को जोड़ते हैं। बैठक के दौरान प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत ने हमेशा मानवता को प्राथमिकता दी है, जो भारत के नेतृत्व वाली पहलों में दिखाई देती है। उन्होंने कहा कि भारत की सोच सदियों से वसुधैव कुटुंबकम की रही है और इसलिए भारत दुनिया में प्राकृतिक आपदाओं के समय सबसे पहले मदद पहुंचाने वाला देश बना है। श्री मोदी ने श्रीलंका में चक्रवात, अफगानिस्तान में भूकंप, मोजाम्बिक में बाढ़ और जमैका में तूफान के समय भारत के सहयोग की चर्चा की। श्री मोदी ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी शांति और स्थिरता से आएगी, जिसके लिए बातचीत और कूटनीतिक प्रयास जरूरी हैं। G7 शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ बैठक करेंगे। आज की मुलाकात में दोनों पक्षों के बीच कई क्षेत्रों में आपसी सहयोग को मजबूत करने तथा आपसी हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी व्यापक चर्चा की संभावना है। और ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: यह बैठक इसलिए भी काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत एक बड़ी वैश्विक महाशक्ति के रूप में उभरा है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय जटिल वैश्विक चुनौतियों के समाधान के लिए लगातार नई दिल्ली की ओर देख रहा है। वैश्विक मुद्दों पर चर्चाओं को नया आकार देने में भारत की बढ़ती भूमिका, उसके विस्तार लेते राजनयिक प्रभाव और विभिन्न मंचों पर विश्व नेताओं के साथ सक्रिय जुड़ाव को दर्शाती है। कल शिखर सम्मेलन के एक आउटरीच सत्र के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बात पर विशेष जोर दिया कि आज की आपस में जुड़ी हुई दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी बनाने के लिए आपसी विश्वास कितना जरूरी है। उन्होंने इस बात को भी रेखांकित किया कि भारत ने हमेशा मानवता को सर्वोपरि रखने के दृष्टिकोण का पालन किया है। अंकित कुमार, आकाशवाणी समाचार, एवियो फ्रांस।
0: प्रधानमंत्री यूरोपीय संघ परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा और यूरोपियन कमीशन के अध्यक्ष फॉन डेर लेन के साथ त्रिपक्षीय बैठक करेंगे। वे जर्मन चांसलर फेडरिक मर्स के साथ भी बैठक करेंगे। इससे पहले कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रांस में G7 शिखर सम्मेलन के दौरान कनाडा, ब्रिटेन और संयुक्त अरब अमीरात के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें की। यमुना नदी को स्वच्छ बनाने के लिए किशाऊ बांध परियोजना पर 6 राज्यों में सहमति बन गई है। इनमें हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा और राजस्थान शामिल हैं। ये सहमति कल गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में नई दिल्ली में आयोजित बैठक में बनी। सहमति के अनुसार परियोजना की 90% राशि केंद्र सरकार देगी, शेष 10% राशि 6 राज्य मिलकर वहन करेंगे। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने आगामी नीट परीक्षा को देखते हुए विद्यार्थियों और अभिभावकों से घोटालेबाजों से सावधान रहने का अनुरोध किया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य के 59 जिलों में 21 जून को होने वाली नीट परीक्षा के उम्मीदवारों के लिए विशेष व्यवस्था करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि उम्मीदवारों को प्रवेश पत्र दिखाने पर राज्य सड़क परिवहन निगम की बसों के किराए में 50% की छूट दी जाएगी। अमेरिका और ईरान के बीच हुए शांति समझौते के बाद हॉर्मुज जल डमरू मध्य इस सप्ताहांत तक खुल जाएगा। इससे ब्रेंट क्रूड की कीमत 5.4% गिरकर $78.66 हो गई है। 28 फरवरी को ईरान पर अमेरिका और इसराइल की सैन्य कार्रवाई के बाद दुनिया भर में कच्चे तेल की कीमतों में भारी उछाल आया था। मौसम विभाग ने आज पश्चिम बंगाल में हिमालय से लगे क्षेत्रों और सिक्किम के कुछ हिस्सों में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। असम, मेघालय, बिहार, केरलम, माहे, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकाल के कुछ हिस्सों में दिन में तेज बारिश की संभावना है। ICC महिला T20 विश्व कप क्रिकेट में आज भारत का सामना नीदरलैंड से होगा। ये मैच ब्रिटेन में लीड्स में भारतीय समय के अनुसार शाम 7 बजे से होगा। भारत ने अपने पहले मैच में पाकिस्तान को 64 रन से हराया था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashwani. The news read by Tanvi Khurana. The French city of Avignon remains the epicenter of global diplomacy today as the G7 summit enters its crucial phase. With India participating as a partner country, all eyes are firmly set on a highly anticipated bilateral meeting between Prime Minister Narendra Modi and US President Donald Trump, scheduled for later today on the sidelines of the summit. During today's engagement, they are expected to hold wide-ranging discussions to deepen bilateral cooperation across multiple sectors, while also deliberating on pressing regional and global issues of mutual interest. Prime Minister Modi is also scheduled today to participate in the G7 working session on reviving balanced, inclusive and sustainable economic growth for the benefit of all, and the working lunch on ensuring the safe, rapid and effective deployment of artificial intelligence. The Prime Minister will also hold trilateral meeting with EU Council President Antonio Costa, European Commission President Ursula von der Leyen, and a bilateral engagement with German Chancellor Friedrich Merz. Prime Minister Narendra Modi has called on all the nations to ensure security of global maritime routes and protect seafarers from conflict-related threats. Addressing an outreach session of G7 summit in Avignon, France, Mr. Modi said that conflicts in West Asia have disrupted global trade and caused loss of life, highlighting the growing risks to maritime trade and the human cost of instability in West Asia. Prime Minister said it is our responsibility to ensure the safety of the seafarers who connect all nations through global maritime trade. Prime Minister Narendra Modi has said that affectionate respect and acceptance instill a sense of pride and contentment in a person. Sharing a Sanskrit quote, Mr. Modi noted this, that this not only boosts self-confidence but also infuses a new sense of energy and enthusiasm. Defence Minister Rajnath Singh has highlighted that India's annual defence production has surged to an all-time high of 1.78 lakh crore rupees in the financial year 2025-26. In a social media post, Mr. Singh said that this milestone represents an impressive 15.6% growth over the previous fiscal year's output of 1.54 lakh crore rupees and a staggering 110% increase since financial year 2020-21, when the figure stood at over 84,000 crore rupees. He added that indigenous defence production has increased nearly fourfold from 4,746 crore rupees in the financial year 2013-14. National Testing Agency, NTA, has urged parents and candidates to beware of the scammers ahead of NEET examinations. In a social media post, NTA said that scammers on Telegram are running channels demanding

0: demanding money ranging from 14,000 to 25,000 rupees with the claims of sharing the re-exam paper. Union Home Minister Amit Shah has paid tributes to the third Sarsangh Chalak of the Rashtriya Swayam Sevak Sangh, Balasaheb Deoras, on his death anniversary today. In a social media post, Mr. Shah said that Balasaheb Deoras dedicated his life to the national service, social harmony and the character building of the youth and considered untouchability to be the greatest curse. World Day to Combat Desertification and Drought is being observed today globally. The theme for this year is Ranged Lands, Recognize, Respect, Restore, which calls for greater recognition of the economic, ecological and cultural value of range lands, respect for their traditional stewards and stronger investment in restoring degraded range lands. Domestic equity benchmarks traded flat in morning session today after a three-day rally driven by lower crude oil prices and optimism over a US-Iran peace deal. Sensex was trading at 76,817.58, up 8.58 points or 0.01%, while Nifty was at 23,988, down 1 point in early trade. And that is the end of this news bulletin.
1: श्रोताओं अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र द्वारा प्रसारित हिंदी एवं अंग्रेजी में समाचार। यह आकाशवाणी ईटानगर केंद्र का अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज से जहां होती है दिल से दिल की बात। चलिए दोस्तों, इसी के साथ अब वक्त हो चला है कार्यक्रम रेडियो ऑन डिमांड।
2: रेडियो ऑन डिमांड सुबह के 10:10 से सिर्फ और सिर्फ अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज पर। जी हाँ दोस्तों, एसएमएस के जरिए भी आप अपने मनपसंद गीतों का रिक्वेस्ट हमें भेज सकते हैं 9436887808 पर। जी हाँ, हमारा फोन नंबर है 9436887808। इस नंबर पर हमें आपके एसएमएस का इंतजार रहेगा।
1: चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं रेडियो ऑन डिमांड कार्यक्रम, जहां गाने भी आपके पसंद के और बातें भी आपके दिल से। तो चलिए दोस्तों, आज की पहले रिक्वेस्ट लेते हैं और आपको बता दूं, पहला सॉन्ग रिक्वेस्ट भेजा है टेंसन क्रो, अतुल क्रो, सरलोई क्रो, नीलिका क्रोपी, सेरजांग क्रोपी ने, जो कि लंखंग सम कार्बी अंगलोंग के रहने वाले है। तो दोस्तों, उन्होंने परमाइश की है फिल्म लकी नो टाइम फॉर लव का एक बहुत ही खूबसूरत सा गीत। आइए इस गीत को सुनते हैं।

दोस्तों आइए इसी के साथ रेडियो ऑन डिमांड कार्यक्रम पर बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगली सॉन्ग फरमाइश। आपको बता दूं अगला सॉन्ग रिक्वेस्ट भेजा है रोमेश पत्रो, रुन्नू पत्रो और लकी ने, जो घोलाघाट आसाम के रहने वाले हैं, और उन्होंने इस सॉन्ग को डेडिकेट किया है अपने दोस्तों के नाम, जिनके नाम है अमोल, बिमल, बाइकोन, अंजलि, जोगेंद्र, सोनाली और हितेंद्र। और दोस्तों उन्हें सुनना है फिल्म सिलसिला का एक बहुत ही खूबसूरत गीत किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज में। आइए दोस्तों सुनते हैं इस गीत को।

चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आगे और आपको बता दूं अगला सॉन्ग रिक्वेस्ट भेजा है गोपुर बाकोरी से और भेजने वाले का नाम है सानू प्रधान। उन्हें ये सुनना है सिवाय फिल्म का एक बेहद सा खूबसूरत गीत जिसे गाया है सुनिधि चौहान और अरिजीत सिंह ने। पेश है ये गीत।

सानू प्रधान जी, उम्मीद है आप हमें सुन रहे थे और आपके भेजे हुए सॉन्ग रिक्वेस्ट का आनंद ले रहे थे। आप हमें ऐसे ही रिक्वेस्ट भेजते रहिए, अपना प्यार जताइए और सुनते रहे अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़, जहां होती है दिल से दिल की बात।

0: आकाशवाणी ईटानगर का अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज दिल से दिल की बात।
1: चलिए दोस्तों, वक्त है एक खास फरमाइश का और ये गीत भेजा है हितेंद्र दास जी ने सोनबिल कुदाली आसाम से। उन्होंने इस गीत को आकाशवाणी ईटानगर के सभी आरजेस और स्टाफ मेंबर्स के साथ साथ अपने प्यारे दोस्तों जिनका नाम मीनल, रोमेश, अमल, बिमल, शिवा, महाराज, बाइकॉन, अंकित, दुर्गेश, विक्रम और स्वराजीत को डेडिकेट किया गया है। दोस्ती और अपनापन ही जिंदगी को खूबसूरत बनाते हैं, इसे प्यारी सी भावना के साथ सुनिए ये खास नगमा अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज पर।

0: दोस्तों अभी आपने इस गीत को सुना हितेंद्र जी की फरमाइश में फिल्म तेरे नाम से, जिसे गाया है अलका याग्निक ने। जी हाँ दोस्तों, अगर आप भी अपना पसंदीदा गाना सुनना चाहते हैं तो देर किस बात की, जल्दी से हमें मैसेज कीजिए 9436887808 पर और सुनिए अपनी पसंद का गाना सिर्फ अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज पर सुबह के 10:10 से सुबह के 11 तक।
1: रेडियो ऑन डिमांड सुबह के 10:10 से सिर्फ और सिर्फ अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज पर। जी हाँ दोस्तों, एसएमएस के जरिए भी आप अपने मनपसंद गीतों का रिक्वेस्ट हमें भेज सकते हैं 9436887808 पर। जी हाँ, हमारा फोन नंबर है 9436887808। इस नंबर पर हमें आपके एसएमएस का इंतजार रहेगा।
0: चलिए दोस्तों, इसी के साथ ही बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगली फरमाइश। और आपको बता दूं, अगला सॉन्ग रिक्वेस्ट भेजा है जोगेंद्र रोंगपी सोनाली इंटीपी दोरोंगकिरी रोंगपी, जो सारी हजान कार्बी आंगलोंग के रहने वाले हैं। और दोस्तों, उन्हें सुनना है लता मंगेशकर जी की आवाज में फिल्म मैं सुंदर हूं का एक खूबसूरत गीत।

दोस्तों, अभी आपने इस गीत को सुना फिल्म साजन से अलका याग्निक की आवाज में। और आपको बता दूं, इस गीत की फरमाइश की थी कविता और खागेन सुथर ने, जो कि सोनितपुर बालीजुरी आसाम के रहने वाले हैं। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और अगला गीत आपको सुनवाते हैं, दिल तो पागल है फिल्म का। और दोस्तों, आपको बता दूं, इस गीत की फरमाइश की है अंजलि चड्ढा ने, जो न्यू दिल्ली के रहने वाले हैं।

दोस्तों आइए रेडियो निर्माण कार्यक्रम का आखिरी सॉन्ग रिक्वेस्ट लेते हैं और आपको बता दूं अगली फरमाइश भेजी है सुनील छेत्री ने और उन्हें सुनना है फिल्म अग्निहोत्री का एक बहुत ही खूबसूरत सा गीत लता मंगेशकर की आवाज में।

तो दोस्तों, इस गीत के साथ ही आज का हमारा रेडियो ऑन डिमांड कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। आप हमारे साथ बने हुए हैं एफएम बैंड के 103.1 मेगाहर्ट्ज़ पर, जहां होती है दिल से दिल की बात। और श्रोताओं, इसी के साथ ही हमारी पहले प्रसारण सभा भी यहीं पर समाप्त होती है। उम्मीद करते हैं इस सभा में प्रसारित सभी कार्यक्रम आप सबको बेहद पसंद आए होंगे। अब से कुछ ही देर बाद यानी 11 बजे आप सुन पाएंगे आकाशवाणी दिल्ली केंद्र से प्रसारित हिंदी एवं अंग्रेजी में समाचार। श्रोताओं, जाते जाते आपको बताना चाहेंगे कि आपके दिन को और भी खुशनुमा बनाने के लिए हमारी दूसरी प्रसारण सभा में आपके साथ जुड़ेगी आपकी अपनी

आरजे दंपक लोम्बे। तो अब आप मुझे यानी आपकी रेडियो साथी गिजी कनिक और स्टूडियो तथा एचपीटी में मौजूद तमाम सहकर्मियों सहित प्रसारण निष्पादक तीतांगजंग तथा तकनीकी अभियंता बी बोरुआ को दीजिए इजाजत। नमस्कार, शुभ दिन।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी देशों से अंतर्राष्ट्रीय समुद्री मार्गों की सुरक्षा सुनिश्चित करने और नाविकों को संघर्ष से जुड़े खतरों से सुरक्षा देने की अपील की है। फ्रांस में G7 शिखर सम्मेलन के आउटरीच सत्र में समुद्री व्यापार के बढ़ते खतरों और पश्चिम एशिया में अस्थिरता से मानवीय नुकसान के बारे में प्रधानमंत्री ने कहा कि उन नाविकों की सुरक्षा सुनिश्चित करना हमारी जिम्मेदारी है जो वैश्विक समुद्री व्यापार के माध्यम से सभी देशों को जोड़ते हैं। बैठक के दौरान प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत ने हमेशा मानवता को प्राथमिकता दी है, जो भारत के नेतृत्व वाली पहलों में दिखाई देती है। उन्होंने ये भी कहा कि भारत की सोच सदियों से वसुधैव कुटुंबकम की रही है और इसीलिए भारत दुनिया में प्राकृतिक आपदाओं के समय सबसे पहले मदद पहुंचाने वाला देश बना है। श्री मोदी ने श्रीलंका में चक्रवात, अफगानिस्तान में भूकंप, मोजाम्बिक में बाढ़ और जमैका में तूफान के समय भारत के सहयोग की चर्चा की। श्री मोदी ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी शांति और स्थिरता से आएगी, जिसके लिए बातचीत और कूटनीतिक प्रयास जरूरी हैं। G7 शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ बैठक करेंगे। आज की मुलाकात में दोनों पक्षों के बीच कई क्षेत्रों में आपसी सहयोग को मजबूत करने तथा आपसी हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी व्यापक चर्चा की संभावना है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: यह बैठक इसलिए भी काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत एक बड़ी वैश्विक महाशक्ति के रूप में उभरा है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय जटिल वैश्विक चुनौतियों के समाधान के लिए लगातार नई दिल्ली की ओर देख रहा है। वैश्विक मुद्दों पर चर्चाओं को नया आकार देने में भारत की बढ़ती भूमिका, उसके विस्तार लेते राजनयिक प्रभाव और विभिन्न मंचों पर विश्व नेताओं के साथ सक्रिय जुड़ाव को दर्शाती है। कल शिखर सम्मेलन के एक आउटरीच सत्र के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बात पर विशेष जोर दिया कि आज की आपस में जुड़ी हुई दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी बनाने के लिए आपसी विश्वास कितना जरूरी है। उन्होंने इस बात भी रेखांकित किया कि भारत ने हमेशा मानवता को सर्वोपरि रखने के दृष्टिकोण का पालन किया है। अंकित कुमार, आकाशवाणी समाचार, एवियों, फ्रांस।
0: प्रधानमंत्री यूरोपीय संघ परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा और यूरोपियन कमीशन के अध्यक्ष फॉन्डर लाइन के साथ त्रिपक्षीय बैठक करेंगे। वे जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्स के साथ भी बैठक करेंगे। इससे पहले कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रांस में G7 शिखर सम्मेलन के दौरान कनाडा, ब्रिटेन और संयुक्त अरब अमीरात के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि वित्त वर्ष 2025-26 में भारत का वार्षिक रक्षा उत्पादन अब तक के उच्चतम स्तर 1,78,000 करोड़ रुपए पर पहुंच गया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंह ने कहा कि उपलब्धि पिछले वित्त वर्ष में 1,54,000 करोड़ रुपए के उत्पादन की तुलना में 15% से अधिक की प्रभावशाली वृद्धि है। यमुना नदी को स्वच्छ बनाने के लिए किशाऊ बांध परियोजना पर 6 राज्यों में सहमति बन गई है। इनमें हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा और राजस्थान शामिल हैं। ये सहमति कल गृहमंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में नई दिल्ली में आयोजित बैठक में हुई। परियोजना की 90% राशि केंद्र सरकार देगी, शेष 10% राशि 6 राज्य मिलकर वहन करेंगे। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने आगामी नीट परीक्षा को देखते हुए विद्यार्थियों और अभिभावकों को घोटालेबाजों से सावधान रहने का अनुरोध किया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य के 59 जिलों में 21 जून को होने वाली नीट परीक्षा के उम्मीदवारों के लिए विशेष व्यवस्था करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि उम्मीदवारों को प्रवेश पत्र दिखाने पर राज्य सड़क परिवहन निगम की बसों के किराए में 50% की छूट दी जाएगी। अमेरिका और ईरान के बीच शांति समझौते के बाद होर्मुज जल डमरू मध्य इस सप्ताहांत तक खुल जाएगा। इसमें ब्रांड क्रूड की कीमत 5.4% गिरकर $78.66 हो गई।

0: strikes on Iran beginning 28th of February, crude oil prices skyrocketed, climbing up to nearly $120 per barrel. In men's cricket, India A were 115 for 1 in 14.4 overs against Afghanistan A in Tri-Nation A series at the Rangiri Dambulla International Stadium in Sri Lanka when reports last came in. Earlier, Afghanistan A won the toss and opted to field first. Tilak Verma-led Indian side have managed to win only one out of three matches in the series. In their last encounter, India A faced a dramatic defeat by Sri Lanka A. And that is the end of this news bulletin.
1: शुद्ध अभी आप सुन रहे थे दिल्ली केंद्र से प्रसारित हिंदी एवं अंग्रेजी में समाचार। ये आकाशवाणी का अरुण एफएम है, जहां होती है दिल से दिल की बात। और बहुत बहुत धन्यवाद आरजे खानिक जी, मुझे आगे के कारोबार और आप सभी के साथ जुड़ने का मौका प्रदान किया आपने। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दूं कि इस वक्त हमारी स्टूडियो के घड़ी में 11:10 हो रहे हैं। इसी के साथ अब आरंभ होती है हमारी आज की दूसरी प्रसारण सभा। इससे पहले पहली प्रसारण सभा में आप जुड़े हुए थे आरजे कानिक के साथ और अब आप जुड़े हुए हैं आरजे दंपक यानी मेरे साथ। दोस्तों हमारे इस दूसरी प्रसारण सभा में साथ दे रहे हैं प्रसारण निष्पादक एल ताली तथा तकनीकी अभियंता के अनंत कुमार। तब चलिए श्रोता, दूसरी प्रसारण सभा की आरंभ करते हुए पेश है कार्यक्रम फिल्मी लहर। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है कार्यक्रम फिल्मी लहर में। आशा है आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो चलिए देर किस बात की, पेश कर रहे हैं कार्यक्रम का पहला गीत फिल्म वीर से। गीत के बोल है सलाम आया और इस गीत को आवाज दी है साजिद वाजिद, सुजन डी मेलो, श्रेया घोषाल और रूप कुमार राठौर ने।

दोस्तों आप सुन रहे थे ये गीत सोनू निगम की आवाज में फिल्म लकी से। आपको बता दूं कि आप बने हुए हैं मेरे साथ कार्यक्रम फिल्म लहर में और मैं हूं आपकी आरजे साथी दांपत। दोस्तों अब कार्यक्रम फिल्म लहर में आपके लिए पेश कर रहे हैं गीत कमबख्त इश्क फिल्म से। गीत के बोल है क्यों और इस गीत को आवाज दी है श्रेया घोषाल ने।

0: दोस्तों अब से कुछ ही पलों में आप सुनेंगे दिल्ली केंद्र से प्रसारित हिंदी एवं अंग्रेजी में समाचार।
1: दिल से दिल की बात।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी देशों से अंतर्राष्ट्रीय समुद्री मार्गों की सुरक्षा सुनिश्चित करने और नाविकों को संघर्ष से जुड़े खतरों से सुरक्षा देने की अपील की है। फ्रांस में G7 शिखर सम्मेलन के आउटरीच सत्र में समुद्री व्यापार के बढ़ते खतरों और पश्चिम एशिया में अस्थिरता से मानवीय नुकसान के बारे में प्रधानमंत्री ने कहा कि उन नाविकों की सुरक्षा सुनिश्चित करना हमारी जिम्मेदारी है जो वैश्विक समुद्री व्यापार के माध्यम से सभी देशों को जोड़ते हैं। बैठक के दौरान प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत ने हमेशा मानवता को प्राथमिकता दी है, जो भारत के नेतृत्व वाली पहलों में दिखाई देती है। उन्होंने ये भी कहा कि भारत की सोच सदियों से वसुधैव कुटुंबकम की रही है और इसलिए भारत दुनिया में प्राकृतिक आपदाओं के समय सबसे पहले मदद पहुंचाने वाला देश बना है। G7 शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ बैठक करेंगे। आज की मुलाकात में दोनों पक्षों के बीच कई क्षेत्रों में आपसी सहयोग को मजबूत करने तथा आपसी हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी व्यापक चर्चा की संभावना है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: यह बैठक इसलिए भी काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत एक बड़ी वैश्विक महाशक्ति के रूप में उभरा है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय जटिल वैश्विक चुनौतियों के समाधान के लिए लगातार नई दिल्ली की ओर देख रहा है। वैश्विक मुद्दों पर चर्चाओं को नया आकार देने में भारत की बढ़ती भूमिका, उसके विस्तार लेते राजनयिक प्रभाव और विभिन्न मंचों पर विश्व नेताओं के साथ सक्रिय जुड़ाव को दर्शाती है। कल शिखर सम्मेलन के एक आउटरीच सत्र के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बात पर विशेष जोर दिया कि आज की आपस में जुड़ी हुई दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी बनाने के लिए आपसी विश्वास कितना जरूरी है। उन्होंने इस बात को भी रेखांकित किया कि भारत ने हमेशा मानवता को सर्वोपरि रखने के दृष्टिकोण का पालन किया है। अंकित कुमार, आकाशवाणी समाचार, एवियों, फ्रांस।
0: प्रधानमंत्री यूरोपीय संघ परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा यूरोपियन कमीशन के अध्यक्ष फॉर्डर लेन के साथ त्रिपक्षीय बैठक करेंगे। वे जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्स के साथ भी बैठक करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि वित्त वर्ष 2025-26 में भारत का वार्षिक रक्षा उत्पादन अब तक के उच्चतम स्तर 1,78,000 करोड़ रुपए पर पहुंच गया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंह ने कहा कि यह उपलब्धि पिछले वित्त वर्ष के 1,54,000 करोड़ रुपए के उत्पादन की तुलना में 15% से अधिक की प्रभावशाली वृद्धि है। यमुना नदी को स्वच्छ बनाने के लिए किशाऊ बांध परियोजना पर 6 राज्यों में सहमति बन गई है। इनमें हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा और राजस्थान शामिल हैं। ये सहमति कल गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में नई दिल्ली में आयोजित बैठक में बनी। परियोजना की 90% राशि केंद्र सरकार देगी, शेष 10% राशि 6 राज्य मिलकर वहन करेंगे। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने आगामी नीट परीक्षा को देखते हुए विद्यार्थियों और अभिभावकों को घोटालेबाजों से सावधान रहने का अनुरोध किया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य के 59 जिलों में 21 जून को होने वाली नीट परीक्षा के उम्मीदवारों के लिए विशेष व्यवस्था करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा है कि उम्मीदवारों को प्रवेश पत्र दिखाने पर राज्य सड़क परिवहन निगम की बसों के किराए में 50% की छूट दी जाएगी। पुदुचेरी मंत्रिमंडल में आज 3 नए मंत्रियों को शामिल किया गया। अखिल भारतीय NR कांग्रेस के विधायक P राजावेलु और VP शिव कोलुंधु तथा भाजपा विधायक G NH राजशेखरन को उपराज्यपाल K कैलाशनाथन ने पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने मोनाको के शासक अल्बर्ट द्वितीय से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री गोयल ने कहा कि इस दौरान नवाचार और उभरते प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारत मोनाको साझेदारी को आगे बढ़ाने पर चर्चा हुई। अमेरिका और ईरान के बीच हुए शांति समझौते के बाद होर्मुज जल डमरू मध्य इस सप्ताह तक खुल जाएगा। इससे ब्रांड क्रूड की कीमत 5.4% गिरकर $78.66 हो गई है। ICC महिला T20 विश्व कप क्रिकेट में आज भारत का सामना नीदरलैंड्स से होगा। ये मैच ब्रिटेन में लीड्स में भारतीय समय अनुसार शाम 7 बजे से होगा। भारत और अफगानिस्तान के बीच 3 एकदिवसीय क्रिकेट मैचों की श्रृंखला का दूसरा मुकाबला आज लखनऊ में दोपहर 1:30 बजे से खेला जाएगा। भारत श्रृंखला में 1-0 से आगे है। फीफा फुटबॉल विश्व कप में मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना ने आज अल्जीरिया को 3-0 से हराया। लियोन मेसी ने मैच में हैट्रिक लगाते हुए इतिहास रचा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: रोमांचित संगीत,
1: ज्ञान और मनोरंजन के गुलदस्ते से
0: प्यार भरे अल्फाजों में
1: दिल से दिल की बात,
0: बस आपके नाम।
1: ये है आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 मेगा।

दोस्त अभी आप सुन रहे थे दिल्ली केंद्र से प्रसारित हिंदी एवं अंग्रेजी में समाचार। ये आकाशवाणी का अरुण एफएम है, जहां होती है दिल से दिल की बात और प्रस्तुति कार्यक्रम नॉन हिंदी फिल्म सॉन्ग्स। दोस्तों कार्यक्रम नॉन हिंदी फिल्म सॉन्ग्स में आपके लिए पेश कर रहे हैं पहला गीत आदित्य भारद्वाज की एल्बम से गीत के बोल है बाय, और इस गीत को भी गाया है आदित्य भारद्वाज ने।

दोस्तों आप सुन रहे थे ये गीत एपिडिलन और श्रेया घोषाल की आवाज में। अब आपके लिए पेश कर रहे हैं एक ऐसा गाना जो ब्रेकअप के बाद मूव ऑन कर जाता है। जी हाँ, आपके लिए पेश कर रहे हैं मान बनो की आवाज में गीत आई एम डन।

0: दोस्त आप सुन रहे थे ये गीत अरमा मालिक की आवाज में। आपको बता दूं कि इसी के साथ ही कार्यक्रम नॉन हिंदी फिल्म सॉन्ग्स का ये सेगमेंट ये पर समाप्त होते हैं और अब आपके लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम अरुण परिचय।
1: नमस्कार प्रिय श्रोताओं, आकाशवाणी ईटानगर केंद्र के अरुण एफएम के 103.1 मेगाहर्ट्ज पर मैं तुम्बम रिबा लीली आप सभी का अपने कार्यक्रम अरुण परिचय में हार्दिक स्वागत करती हूं। अरुण परिचय जैसे कि नाम से ही जाहिर है, यह अरुण एफएम रेडियो ईटानगर का एक ऐसा कार्यक्रम है जिसके जरिए मैं आप सभी को इस कार्यक्रम की हरेक कड़ी में अपने राज्य अरुणाचल प्रदेश के बारे में और उससे जुड़ी कुछ जनजातियों के बारे में तमाम जानकारियां देती आई हूं। और इस कार्यक्रम की हरेक कड़ी में अपने खूबसूरत राज्य अरुणाचल प्रदेश के किसी न किसी अनोखी जनजाति की निराली संस्कृति परंपरा एवं त्योहार आदि के बारे में आप सभी को विस्तृत जानकारियां प्रदान करती आई हूं और साथ ही उस विशेष जनजाति से जुड़ी लोकगीत भी यहां पर प्रस्तुत करवाती हूं। इस कार्यक्रम का प्रसारण समय है तो चलिए आज अपने इस कार्यक्रम की इस कड़ी में मैं आप सभी को आपातानी जनजाति के जो प्रमुख त्योहार हैं और उनकी संस्कृति के बारे में यहाँ पर जानकारियां प्रदान करती हूँ। म्योको त्योहार आपातानी जनजाति के प्रमुख त्योहार है जिसे मार्च के महीने में मनाया जाता है। इसमें नवयुवक एवं नवयुवतियां विशेष दिलचस्पी लेते हैं। इसे मनाने के लिए गांव में एक निश्चित स्थान पर घर की तरह पूजा स्थल बनाया जाता है जहां पर तमाम देवी देवताओं और आत्माओं की पूजा की जाती है और उनसे तमाम जन समुदाय और गांव की सलामती और खुशहाली की मंगल कामना करते हुए पूजा संपन्न किया जाता है। इसमें मुख्य पुजारी अत्यंत ही मनमोहक पारंपरिक वस्त्र पहनकर लोगों को अपनी भाषा में आपातानी जनजाति का इतिहास गाकर सुनाते हैं जिसके पश्चात आदि पुरुष आबोतानी को मुर्गे एवं सुअर की बलि चढ़ाते हैं। इस त्योहार की तैयारी युवा वर्ग के लोग काफी पहले से ही आरंभ कर देते हैं। पूजा के दिन बड़े बड़े लकड़ी के खूंटे जिसे बाबू कहते हैं इकट्ठा करते हैं और पूजा के समय जलाने के लिए लकड़ियां एकत्र करते हैं। सभी आपातानी घरों में इस अवसर पर प्रचुर मात्रा में चावल की शराब बनाते हैं तथा चावल मरुआ आदि और मांस की व्यवस्था करते हैं। इस प्रकार इस त्योहार में बहुत अधिक खर्च होता है, इसीलिए पूजा के ध्येय से पूरे आपातानी क्षेत्र को 3-4 गांवों के समूह में बांट दिया जाता है और प्रत्येक वर्ष बारी बारी से वो तीनों गांव में पूजा होती है। इसमें खर्च भी कम पड़ता है और पूजा भी प्रतिवर्ष बहुत खूबसूरती से और धूमधाम से होता है। जिस गांव में पूजा होती है उस गांव के लोग दूसरे आपातानी गांव के लोगों को आमंत्रित करते हैं और पूजा वाले गांव में गाने की प्रतियोगिता रखते हैं। इसे इनकी भाषा में खोबो ब्योदू कहते हैं। प्रत्येक घर के लोग 2-2 गायक को अपने घर से ले आते हैं और यहाँ प्रश्नोत्तर के रूप में घर वालों और दूसरे गांव से आने वाले गायकों के बीच गीत के माध्यम से बहुत ही भव्य प्रतियोगिता होती है। इस पूजा में तरह तरह के देवी देवताओं और आत्माओं की पूजा होती है, इसलिए संपूर्ण गांव की मंगल कामना की भावना से पूजा की एक जगह निश्चित की जाती है। वहाँ एक छोटा सा घर नुमा बनाया जाता है जिसे आग्यांग कहते हैं। जिस जगह यह घर बनाते हैं इसे इनकी भाषा में युग्यांग कहते हैं और यहाँ सामूहिक रूप से पूजा होती है। पूजा के तीसरे दिन बलि चढ़ाई जाती है। इस बलि को युग्यांग तोदो कहते हैं। सामान्य बलि के बाद अलग अलग उपजाति के लोग सुअर को की बलि चढ़ाते हैं। यह अवसर बड़ा प्रमुख माना जाता है। सुअर की बलि के समय पुजारी अपनी अनोखी पोशाक में आपातानी जनजाति के इतिहास को तथा समस्त मानव जाति के उद्भव और विकास के इतिहास को गा गा कर सबको सुनाता है। इसके पश्चात वे मुर्गे की बलि आबोतानी के लिए चढ़ाते हैं। आबोतानी इनके यहाँ आदि पुरुष हैं। म्योको पूजा में विशेष रूप से भगवान सुगी की पूजा की जाती है जिसे आपातानी आदि पुरुष की मदद की थी। इसे देवता कीरू और कीलो है। बलि के दूसरे दिन को आजिंग व्योंग कहते हैं। उस दिन सभी लोग अपने अपने घरों में से बाहर आए हुए मेहमानों को आमंत्रित करते हैं। उनको खूब अच्छी तरह से मांस और भात खिलाते हैं और चावल की शराब पिलाते हैं तथा सारे दिन खूब नाचते गाते हैं और उनको विदा करते समय कुछ उपहार भी देते हैं। और उसके बाद यह त्योहार लगभग एक महीने तक चलता है, जिसमें विभिन्न गांवों से लोगों का आना जाना लगा रहता है तथा इसी बीच कुछ छोटे मोटे धार्मिक अनुष्ठान भी होते रहते हैं। इस प्रकार म्यू को आपातानियों का भाईचारे, प्यार, दोस्ती और जिंदा दिली का त्योहार है, जिसमें सभी लोग दिल खोलकर एक दूसरे से मिलते हैं। द्री त्योहार आपातानी जनजाति का बड़ा महत्वपूर्ण तथा आनंददायक त्योहार है। यह प्रति वर्ष जुलाई महीने में 3 दिनों तक मनाया जाता है। उस समय तक खेतों में धान के पौधे बड़े होकर लहराने लगते हैं तथा पानी खेती में रोपे गए धान के पौधे अब हरे हो चलते हैं। और इस प्रकार आपातानियों का यह त्योहार पूर्ण रूप से कृषि से संबंधित है। पूजा के समय विशेष रूप से धरती माता और कृषि देवी की बड़ी श्रद्धा के साथ पूजा की जाती है। इस पूजा में लोग देवियों से प्रार्थना करते हैं कि वे आपातानी जनजाति से प्रसन्न रहे तथा उनके खेतों में खूब अच्छी फसल दे, फसल को हर प्रकार की बीमारियों और कीड़ों के आक्रमण से बचाए रखे, लोगों को धन धान्य से पूर्ण कर दे तथा उनका सदा मंगल करे। गांव का पुजारी पूजा का प्रारंभ धार्मिक स्रोतों और मंत्रों का उच्चारण करके करता है। इससे पहले मंत्रों को गाता हुआ वो खेतों में जाता है और फिर वहां खेतों में कुछ अनुष्ठान करके सामूहिक पूजा के स्थान पर लौटता है। यह स्थान गांव से बाहर बनाया जाता है। पूजा के स्थान पर लौटने के बाद बलि वेदी पर पुजारी कुछ अनुष्ठान करता है और मंत्रों का जाप करता है। उसके बाद पुजारी द्री पूजा को करने का आदेश देते हैं। नवयुवतियां अपनी रंगीन और आकर्षक पोशाक में उस वेदी के चारों तरफ थिरक थिरक कर नाचने और गाने लगते हैं। प्रधान पुजारी की अन्य पुजारी आगवानी करके बलि वेदी के पास लाते हैं। प्रधान पुजारी धार्मिक अनुष्ठानिक गीतों को गाता है और नवयुवतियों तथा अन्य पुजारी अन्य गीतों को गाते हैं। उसके बाद बलि चढ़ाए जाने वाले जानवरों और चिड़ियों के मुख में चावल के आटे से लेप पोताई करके लाया जाता है और अब विभिन्न देवी देवताओं के नाम से वहां पर बलियां चढ़ाई जाती है। बलि के मांस को महाप्रसाद के रूप में सामूहिक भोजन के लिए रख दिया जाता है। उसके बाद नवयुवतियां वहां उपस्थित लोगों को खाने के खीरा और खो यानी कि चावल की मदिरा देती है और लड़के तरह तरह के खेल करते हैं और नाचते हैं। उसके बाद सबसे आनंददायक नृत्य प्रिय होते हैं। इस नृत्य में लड़के और लड़कियां दोनों एक साथ मिलकर नाचते और गाते हैं। बूढ़े लोगों के समानार्थक उनको लोग अलग से विशेष रूप से चावल की शराब प्रदान करते हैं। बलि के तीसरे दिन पूजा स्थल पर ही सामूहिक भोज की व्यवस्था की जाती है। फिर सभी लोग यहाँ मस्ती से झूम झूम कर नाचते गाते हैं। सामूहिक भोज के बाद बड़े बूढ़े लोग अपने से छोटों को आशीष देते हैं और उनकी मंगल कामना करते हैं। ऐसा करते हुए वे अपने घरों को चले जाते हैं। घर जाकर वे एक दूसरे से मिलने के लिए, अपना प्यार और सम्मान करने के लिए एक दूसरे के घर फिर आते जाते हैं। पूजा यहीं पर समाप्त हो जाती है, किंतु आपसी मिलना जुलना कई दिनों तक चलता रहता है। पूजा के समय जमीन का खोदना या खेतों में हल चलाना वर्जित है और उस समय कहा जाता है कि धरती माँ उत्पत्ति विषय विशेष शक्ति का अर्जन करती है, अतः हल चलाकर या मिट्टी खोदकर उसे क्षति नहीं पहुंचाने चाहिए। इस प्रकार द्री खुशियों का संदेश लेकर आते हैं, जिसके आते ही नाच और गान तथा खुशियों की बाढ़ सी आ जाती है। तो प्रिय श्रोताओं, अभी आपने आपातानी जनजाति से जुड़ी उनके जो प्रमुख त्योहार है उस पर जानकारियां प्राप्त की। तो चलिए अब इसी जनजाति के एक कर्णप्रिय गीत का आनंद लेते हैं।
0: सलो अलो सोड़े कड़े कड़े गंगा लो दो अलो सोड़े कड़े कड़े गंगा
2: सलो अलो सोड़े कड़े कड़े गंगा लो दो अलो सोड़े कड़े कड़े गंगा
0: सलो अलो सोड़े कड़े कड़े गंगा हेम प्यो अलो

प्रिय श्रोताओं, अभी आपने आपातानी लोक गीत सुना। हमें विश्वास है कि आपको ये गीत बहुत ही पसंद आए होंगे। तो हम फिर से आपकी खिदमत में यहाँ इसी चैनल पर उपस्थित होंगे अपने ही राज्य अरुणाचल प्रदेश के किसी अनोखी जनजाति की संस्कृति और त्योहार पर चर्चा करने के लिए। तो तब तक हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार।

0: गीत संगीत
1: ज्ञान और मनोरंजन के गुलदस्ते से
0: प्यार भरे अल्फाजों में
1: दिल से दिल की बात
0: बस आपके नाम
1: ये है आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 मेगा।

शताब्दी आप सुन रहे थे कार्यक्रम अरुण परिचय, ये आकाशवाणी का अरुण एफएम है, जहां होती है दिल से दिल की बात। और अब प्रस्तुत है आपके लिए कार्यक्रम हिंदी फिल्म सॉन्ग्स। और कार्यक्रम में आपके लिए पेश कर रहे हैं गीत रिफ्यूजी फिल्म से, गीत के बोल है मेरे हमसफर, और इस गीत का आवाज दी है अलका याग्निक और सोनू निगम ने, म्यूजिक दिया है अनु मलिक ने और लिरिक्स लिखे हैं जावेद अख्तर ने।

0: दोस्तों आप सुन रहे थे ये गीत श्रेया घोषाल की आवाज में फिल्म गजनी से। आपको बता दूं कि इसी के साथ ही हिंदी फिल्म सॉन्ग्स कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होते हैं और अब से कुछ पलों में आप सुनेंगे हिंदी एवं अंग्रेजी में समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G7 शिखर सम्मेलन में आज अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ बैठक करेंगे। आज की मुलाकात में दोनों पक्षों के बीच कई क्षेत्रों में आपसी सहयोग को मजबूत करने तथा आपसी हित के क्षेत्रीय वैश्विक मुद्दों पर भी व्यापक चर्चा की संभावना है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: यह बैठक इसलिए भी काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत एक बड़ी वैश्विक

0: महाशक्ति के रूप में उभरा है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय जटिल वैश्विक चुनौतियों के समाधान के लिए लगातार नई दिल्ली की ओर देख रहा है। वैश्विक मुद्दों पर चर्चाओं को नया आकार देने में भारत की बढ़ती भूमिका, उसके विस्तार लेते राजनयिक प्रभाव और विभिन्न मंचों पर विश्व नेताओं के साथ सक्रिय जुड़ाव को दर्शाती है। कल शिखर सम्मेलन के एक आउटरीच सत्र के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बात पर विशेष जोर दिया कि आज की आपस में जुड़ी हुई दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी बनाने के लिए आपसी विश्वास कितना जरूरी है। उन्होंने इस बात को भी रेखांकित किया कि भारत ने हमेशा मानवता को सर्वोपरि रखने के दृष्टिकोण का पालन किया है। अंकित कुमार, आकाशवाणी समाचार, एवियों, फ्रांस।
1: प्रधानमंत्री यूरोपीय संघ परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टर यूरोपियन आयोग के अध्यक्ष फॉन डर लेन के साथ त्रिपक्षीय बैठक करेंगे। वे जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज के साथ भी बैठक करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम फ्रांस की राजधानी पेरिस पहुंचेंगे। भारतीय समुदाय के लोग प्रधानमंत्री मोदी के आगमन की उत्सुकता के साथ प्रतीक्षा कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने सभी देशों से अंतर्राष्ट्रीय समुद्री मार्गों की सुरक्षा सुनिश्चित करने और नाविकों को संघर्ष से जुड़े खतरों से सुरक्षा देने की अपील की है। फ्रांस में G7 शिखर सम्मेलन के आउटरीच सत्र में समुद्री व्यापार के बढ़ते खतरों और पश्चिम एशिया में अस्थिरता से मानवीय नुकसान के बारे में प्रधानमंत्री ने कहा कि उन नाविकों की सुरक्षा सुनिश्चित करना हमारी जिम्मेदारी है जो वैश्विक समुद्री व्यापार के माध्यम से सभी देशों को जोड़ते हैं। बैठक के दौरान प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत ने हमेशा मानवता को प्राथमिकता दी है, जो भारत के नेतृत्व वाली पहलों में दिखाई देती है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि वित्त वर्ष 2025-26 में भारत का वार्षिक रक्षा उत्पादन अब तक के उच्चतम स्तर 1,78,000 करोड़ रुपए पर पहुंच गया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंह ने कहा कि यह उपलब्धि पिछले वित्त वर्ष के 1,54,000 करोड़ रुपए के उत्पादन की तुलना में 15% से अधिक की प्रभावशाली वृद्धि है। कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष अभिषेक देव ने बताया है कि भारत का कृषि संबंधी खाद्य उत्पादों से जुड़ा निर्यात बढ़कर 500 उत्पादों तक पहुंच गया है। भारत ने यह उपलब्धि अमेरिका, ब्राजील, चीन और यूरोपीय संघ जैसे प्रमुख वैश्विक निर्यातकों से प्रतिस्पर्धा के बावजूद हासिल की है। श्री देव ने कहा कि पिछले वर्ष कृषि निर्यात $53 अरब मूल्य का था। भारत विश्व के शीर्ष 10 कृषि निर्यातक देशों में शामिल है। यमुना नदी को स्वच्छ बनाने के लिए किशाऊ बांध परियोजना पर 6 राज्यों में सहमति बन गई है। इनमें हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा और राजस्थान शामिल हैं। यह सहमति कल गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में नई दिल्ली में आयोजित बैठक में हुई। परियोजना की 90% राशि केंद्र सरकार देगी, शेष 10% राशि 6 राज्य मिलकर वहन करेंगे। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने आगामी नीट परीक्षा को देखते हुए विद्यार्थियों और अभिभावकों को घोटालेबाजों से सावधान रहने का अनुरोध किया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य के 59 जिलों में 21 जून को होने वाली नीट परीक्षा के उम्मीदवारों के लिए विशेष व्यवस्था करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा है कि उम्मीदवारों को प्रवेश पत्र दिखाने पर राज्य सरकार परिवहन निगम की बसों के किराए में 50% की छूट दी जाएगी। पुदुचेरी मंत्रिमंडल में आज 3 नए मंत्रियों को शामिल किया गया। अखिल भारतीय NR कांग्रेस के विधायक P राजवेलु और VP शिवकोलुंधु तथा भाजपा विधायक GNS राजशेखरन को उपराज्यपाल के कैलाश नाथन ने पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। अमेरिका और ईरान के बीच हुए शांति समझौते के बाद होर्मुज जल डमरू मध्य इस सप्ताह तक खुल जाएगा। इनमें ब्रांड क्रूड की कीमत 5.4% गिरकर $78.66 हो गई है। लखनऊ में भारत और अफगानिस्तान के बीच 3 एकदिवसीय क्रिकेट मैचों की श्रृंखला का दूसरे मुकाबले में अफगानिस्तान ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया है। भारत श्रृंखला में 1-0 से आगे है। ICC महिला T20 विश्व कप क्रिकेट में आज भारत का सामना नीदरलैंड से होगा। मैच ब्रिटेन के लीड्स में शाम 7 बजे से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Shagun Chopra. Prime Minister Narendra Modi is set to participate in a series of high-level outreach programs today on the second day of his visit to Evian in France for the ongoing G7 summit. However, attention is firmly focused on his bilateral meeting with United States President Donald Trump, scheduled for this evening. This will be the first face-to-face interaction between the two leaders since their last meeting in Washington, D.C. in February 2025. During the talks, both sides are expected to deliberate on ways to further strengthen India-U.S. bilateral cooperation across multiple sectors, along with discussions on key regional and global issues of mutual interest. The Prime Minister will also attend a working session themed promoting balanced, inclusive and sustainable economic growth for the benefit of all. The session will include G7 member countries, partner nations, as well as representatives from the International Monetary Fund and the Organization for Economic Cooperation and Development. Besides his meeting with the US President Donald Trump, Mr. Modi will participate in a working lunch on ensuring the safe, rapid and effective deployment of artificial intelligence. The meeting will bring together G7 leaders, partner countries and chief executive officers of leading artificial intelligence companies to discuss the future of digital innovation and responsible AI development. On the sidelines of the summit, PM Modi is also scheduled to hold bilateral meetings with European Commission President Ursula von der Leyen and German Chancellor Friedrich Merz. Later, Prime Minister Narendra Modi will arrive in Paris this evening as part of his visit to France. Tomorrow morning, Prime Minister Modi is scheduled to hold meetings with leading chief executive officers. Later, he will participate in the WeaverTech Summit. Prime Minister Narendra Modi has called on all nations to ensure security of global maritime routes and protect seafarers from conflict-related threats. Addressing an outreach session of G7 summit in Evian, France, Mr. Modi said that conflicts in West Asia have disrupted global trade and caused loss of life, highlighting the growing risks to maritime trade and the human cost of instability in West Asia. The Prime Minister said it is our responsibility to ensure the safety of the seafarers who connect all nations through global maritime trade. Prime Minister Modi has highlighted that India's defence capabilities have witnessed significant transformation over the last decade, guided by the vision of self-reliance and powered by innovation, technology and indigenous manufacturing. Sharing a thread of MyGov on his social media account, Mr. Modi explained how the country has strengthened its defence capabilities across air, land, advanced indigenous technologies. India has delivered another 5 tons of essential medicines to Kabul. The External Affairs Ministry said that it reaffirms the country's enduring commitment to providing humanitarian assistance for the well-being of the people of Afghanistan. Union Commerce and Industry Minister Piyush Goyal called on Prince Albert II of Monaco. In a social media post, Mr. Goyal said that during their meeting, they discussed expanding the India-Monaco partnership in sectors such as sustainability, the blue economy, innovation and emerging technologies. Union Agriculture and Farmers Welfare Minister Shivraj Singh Chauhan and Environment, Forest and Climate Change Minister Bhupendra Yadav chaired a high-level inter-ministerial meeting in New Delhi to review stubble management measures and discuss long-term solutions to crop residue burning. During the meeting held yesterday, Mr. Chauhan highlighted the role of active monitoring by the Stubble Protection Force across 70 tehsils in 14 districts of the National Capital Region. In Puducherry, 3 new ministers were inducted into the cabinet today, completing the long-awaited expansion of the Council of Ministers. All India NR Congress MLAs P. Rajvelu and VP Shiv Kolundhu and BJP MLA GNS Rajashekaran were sworn in as ministers at a ceremony held at Lok Nivas. In FIFA World Cup 2026, Austria won its first World Cup victory in 36 years with a 3-1 win over Jordan today. Earlier defending champions Argentina also began their World Cup campaign with a dominant 3-0 win over Algeria at Kansas City Stadium in the United States this morning. Lionel Messi scripted history by scoring his 14th, 15th and 16th World Cup goals with a hat-trick in the game. And that is the end of this news bulletin.

0: गीत संगीत
1: ज्ञान और मनोरंजन के गुलदस्ते से
0: प्यार भरे अल्फाजों में
1: दिल से दिल की बात
0: बस आपके नाम
1: ये है आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 मेगा।

दोस्तों अभी आप सुन रहे थे दिल्ली केंद्र से प्रसारित हिंदी एवं अंग्रेजी में समाचार। ये आकाशवाणी का अरुण एफएम है, जहां होती है दिल से दिल की बात। और प्रस्तुत है आपके लिए कार्यक्रम हिंदी क्लासिक म्यूजिक, जहां आप सुन पाएंगे पुराने गीत। तो चलिए श्रोताओं, शुरू करते हैं कार्यक्रम। और आपके लिए पेश कर रहे हैं पहला गीत फिल्म सिलसिला से, गीत के बोल ही देखा एक ख्वाब। और इस गीत को आवाज दी है अमिताभ बच्चन, किशोर कुमार और लता मंगेशकर ने।

वैसे आप सुन रहे थे ये गीत आशा भोसले और मोहम्मद रफी की आवाज में फिल्म कश्मीर की खली से। आपको बता दूं कि आप बने हुए हैं मेरे साथ कार्यक्रम हिंदी क्लासिक म्यूजिक में और अब आपके लिए पेश कर रहे हैं गीत शराबी फिल्म से। गीत के बोल है इंतहा हो गई इंतजार की और इस गीत को आवाज दी है आशा भोसले और किशोर कुमार ने। दोस्तों ये फिल्म शराबी का सबसे मशहूर गाना है। ये गाना इस गाने को किशोर कुमार और आशा भोसले ने गाया था और म्यूजिक बप्पी लहरी ने दिया था। गाने में प्यार तरफ और मिलने की बेचैनी दिखाई गई है। इसकी धुन और किशोर कुमार की आवाज ने इसे एवरग्रीन क्लासिक म्यूजिक बना दिया है। फिल्म में गाना हल्का फुल्का रोमांटिक और एंटरटेनिंग अंदाज में फिल्माया गया था, इसलिए आज भी पार्टीज और रेट्रो म्यूजिक प्लेलिस्ट में सुना जाता है। दोस्तों गाने की भावना ये है कि प्यार में इंतजार इतना लंबा हो गया है कि अब महबूब के बिना रहना मुश्किल लग रहा है। ये गाना आज भी अमिताभ बच्चन की सबसे यादगार फिल्मों और गानों में से एक माना जाता है। तो पेश कर रहे हैं आपके लिए ये गीत।

दोस्तों आपको बता दूं कि आप सुन रहे थे गीत प्रिंस फिल्म से मोहम्मद रफी की आवाज में, और इसी के साथ ही कार्यक्रम हिंदी क्लासिक म्यूजिक यहीं पर समाप्त होते हैं। और अब आपको मैं ले चलूंगी एक ऐसे सफर में जहां पुराने गीत नहीं, 2000s के नए गीत आपको सुनवाऊंगी। जी हाँ, तो पेश कर रहे हैं आपके लिए गीत मैं हूं ना फिल्म का टाइटल ट्रैक, जिसे गाया है सोनू निगम ने।

0: दोस्तों आप सुन रहे थे गीत नीरज श्रीदार और दुलचे कुमार की आवाज में फिल्म बिल्लू से।
1: Dynamic performance, sleek design. Explore Maruti Suzuki Alto K10. Comes with a mileage of 24.90 km per liter. Smart Play Studio, 15 plus safety features, including 6 airbags, next gen K series, 1.0 liter dual jet, dual 50 engine, and spacious interiors.
2: Get attractive offers up to ₹67,500. Offer till stock lasts. Visit your nearest Maruti dealership today. Terms and conditions apply.
0: दोस्तों अब आपके लिए पेश कर रहे हैं कि कोई मिल गया फिल्म का टाइटल ट्रैक और इस टाइटल ट्रैक को आवाज दी है उदित नारायण और चित्र ने।

0: that there is no leaked paper for the re-exam. It said that fake proof videos showing chats from before the exam are also being circulated. NTA also shared a video of its Director General Abhishek Singh explaining the reason behind blocking the access to the app in the country.
1: See, NTA is committed 100% to ensure that no malpractice will happen. Every question paper has been made in a complete secure manner. We have added layers of security to what is normally done. We have taken every single precaution to ensure that nobody who is involved in setting up the question papers or translating them or printing them or moving them or storing them till the date of the examination is compromised in any manner.
0: In Manipur, security forces intensified counterinsurgency and law enforcement operations across the state, arresting 3 militants and destroying 26 illegal bunkers in separate operations, said the officials today. The militants were arrested from different locations in Imphal West District. Police said they were allegedly involved in multiple violent and criminal activities. U.S. President Donald Trump has criticized Israel's military campaign against Hezbollah in Lebanon, saying the conflict has continued for too long and has led to excessive civilian casualties. Speaking on the sidelines of the G7 summit in France, Mr. Trump said Israel was fighting Hezbollah too long and that too many people are being killed. India has delivered another 5 tons of essential medicines to Kabul. The External Affairs Ministry said that it reaffirms the country's enduring commitment to providing humanitarian assistance for the well-being of the people of Afghanistan. In cricket, India was 70-1 in 8.1 overs against Afghanistan on the second one-day international of the three-match series in Lucknow. Earlier, Afghanistan won the toss and elected to field first. Shubman Gill-led men in blue are currently leading the series 1-0 and will aim to clinch the series in today's clash. Benchmark domestic equity indices were trading around 0.3% up in the afternoon session today. The Sensex rose 225 points to 77,033, while the Nifty advanced 66 points to 24,056 when reports last came in. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. G7 leaders adopt declarations on global stability, security cooperation and efforts to counter transnational organized crime. Prime Minister Narendra Modi to meet US President Donald Trump on the sidelines of G7 summit in Evian, France, to reach Paris this evening as part of his visit to France. Defence Minister Rajnath Singh says India's sovereignty non-negotiable, cites surgical strikes, Balakot and Operation Sindoor as decisive actions against terrorism. India's defence production soars to record 1.78 lakh crore rupees in financial year 2025-26. Surges 110% since 2020-21. Security forces intensify enforcement and counter-insurgency operations across Manipur. 3 militants arrested, 26 illegal bunkers destroyed. And in men's cricket, second ODI of three-match series between India and Afghanistan underway in Lucknow. And with that, we end the midday news.
2: नमस्कार आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं लवलीन निगम G7 नेताओं ने वैश्विक स्थिरता सुरक्षा सहयोग और अंतर्राष्ट्रीय संगठित अपराध का मुकाबला करने के प्रयासों पर केंद्रित कई घोषणाओं को अपनाया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज फ्रांस के एविया में G7 शिखर सम्मेलन के दौरान अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करेंगे श्री मोदी आज शाम पेरिस पहुंचेंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सर्जिकल स्ट्राइक बालाकोट और ऑपरेशन सिंदूर का उदाहरण देते हुए कहा भारत की संप्रभुता पर कोई समझौता नहीं किया जा सकता वित्त वर्ष 2025-26 में भारत का रक्षा उत्पादन रिकॉर्ड 1,78,000 करोड़ रुपए पर पहुंचा 2020-21 की तुलना में 110% की वृद्धि सुरक्षा बलों ने मणिपुर में प्रवर्तन और आतंकवाद रोधी अभियान तेज किया 3 आतंकवादी गिरफ्तार 26 अवैध बंकर नष्ट और भारत और अफगानिस्तान के बीच 3 एक दिवसीय क्रिकेट मैच की श्रृंखला का दूसरा मुकाबला लखनऊ में जारी अब समाचार विस्तार से G7 नेताओं ने वैश्विक स्थिरता सुरक्षा सहयोग और अंतर्राष्ट्रीय संगठित अपराधों से निपटने के प्रयासों पर केंद्रित कई घोषणाओं को अपनाया है। अपने बयान में नेताओं ने अमेरिका और ईरान के बीच हुए शांति समझौते का स्वागत किया और इसे क्षेत्रीय तनाव कम करने तथा ईरान को परमाणु हथियार हासिल करने से रोकने का एक महत्वपूर्ण अवसर बताया। जी सेवन नेताओं ने होर्मुज जल डमरू मध्य से सुरक्षित नौवहन गतिविधियों के महत्व का भी उल्लेख किया। एक अन्य घोषणा में नेताओं ने मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ कार्रवाई तेज करने का संकल्प लिया और इसे राष्ट्रीय सुरक्षा, सार्वजनिक स्वास्थ्य और आर्थिक स्थिरता के लिए बढ़ता खतरा बताया। सहयोगी देशों ब्राजील और दक्षिण कोरिया ने भी इस पहल का समर्थन किया है। नेताओं ने ज्ञान कौशल को बढ़ाने और तस्करी को रोकने के लिए G7+ पोर्ट्स नेटवर्क का प्रस्ताव भी रखा। G7 देश के नेताओं ने विकासशील देशों पर बढ़ते कर्ज के बोझ से निपटने की कोशिशें तेज करने का संकल्प लिया है। इसमें वे कमजोर मध्यम आय वाले देश भी शामिल हैं, जो अभी कोरोना महामारी के दौरान G20 के कर्ज राहत ढांचे के लिए योग्य नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम फ्रांस के एविया में G7 शिखर सम्मेलन के दौरान अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करेंगे। इससे पहले दोनों नेताओं ने फरवरी 2025 में अमेरिका के वाशिंगटन में बैठक की थी। इस दौरान दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय सहयोग के विभिन्न क्षेत्रों सहित क्षेत्रीय और वैश्विक हित के मुद्दों पर चर्चा होने की संभावना है। हमारे संवाददाता अंकित कुमार एवियन से G7 सम्मेलन के घटनाक्रमों पर ताजा जानकारी के लिए जुड़ रहे हैं। जी अंकित, दोनों नेताओं के बीच किन क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर चर्चा होने की उम्मीद है?
3: जी लवली, देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की जो मुलाकात है ये कई वायरों में हम है। हालांकि दोनों नेता कल ग्रुप फोटो और वर्किंग सेशन के समय मिले थे, लेकिन अब सबकी निगाहें इस द्विपक्षीय मुलाकात पर टिकी हुई है। ऐसा माना जा रहा है कि दोनों नेताओं की मुलाकात के दौरान पश्चिम एशिया संकट को लेकर बात हो सकती है। देखिए भारत हमेशा से शांति और बातचीत का पैरोकार रहा है, ऐसे में उम्मीद जताई जा रही है कि इस मुद्दे पर व्यापक बातचीत हो सकती है। इसके अलावा दोनों देशों के बीच ट्रेड डील की प्रगति पर भी बात हो सकती है। भारत ऊर्जा सुरक्षा के मुद्दे पर भी बात कर सकता है, क्योंकि पश्चिम एशिया का संकट हो या अन्य कोई भी भू राजनीतिक तनाव हो, ऊर्जा क्षेत्र पर व्यापक असर पड़ने की आशंका बढ़ जाती है। ऐसे में इस मुद्दे पर प्रमुखता से बात हो सकती है। इन मुद्दों के अलावा श्री मोदी और श्री ट्रंप भारत अमेरिका के द्विपक्षीय व्यापार के सभी पहलुओं पर भी चर्चा कर सकते हैं। लवली,
2: धन्यवाद अंकित इस जानकारी के लिए। श्री मोदी सम्मेलन के दौरान सभी के लाभ के लिए संतुलित समावेशी और मजबूत आर्थिक विकास को बढ़ावा देने पर सत्र में भी हिस्सा लेंगे। श्री मोदी का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सुरक्षित, तेज और प्रभावी इस्तेमाल को सुनिश्चित करने पर आयोजित एक विशेष सत्र में भी भाग लेने का कार्यक्रम है। इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लेयन और जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज से भी मुलाकात करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री आज शाम फ्रांस की राजधानी पेरिस पहुंचेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि भारतीय समुदाय के लोग प्रधानमंत्री मोदी के आगमन की उत्सुकता से प्रतीक्षा कर रहे हैं।
4: प्रधानमंत्री मोदी कल सुबह प्रमुख वैश्विक कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों यानी CEOs के साथ बैठक करेंगे। यह बैठक दोपहर तक चलने की संभावना है। इसके बाद प्रधानमंत्री यूरोप के प्रमुख प्रौद्योगिकी और नवाचार आयोजनों में से एक विवाटेक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे और वहां उपस्थित प्रतिनिधियों को संबोधित करेंगे। पेरिस में विवाटेक शिखर सम्मेलन का उद्घाटन कुछ ही समय में होने जा रहा है। दुनिया भर के अग्रणी प्रौद्योगिकी कंपनियों, स्टार्टअप्स, निवेशकों और नवाचार क्षेत्र के विशेषज्ञों का इस प्रतिष्ठित आयोजन में जुटना शुरू हो चुका है। कल शाम को प्रधानमंत्री भारतीय समुदाय के विशेष कार्यक्रम में शामिल होंगे और प्रवासी भारतीयों को से संवाद करेंगे। कार्यक्रम में भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को प्रदर्शित करने वाली सांस्कृतिक प्रस्तुतियां भी होंगी, जो भारत और फ्रांस के बीच जन से जन संबंधों को और मजबूत करेगी। महेश सोपड़े, आकाशवाणी समाचार, पेरिस, फ्रांस।
2: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newzoneair.gov.in और हमारे newzoneair ऐप पर भी उपलब्ध है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की नीति से लेकर सर्जिकल स्ट्राइक, बालाकोट और ऑपरेशन सिंदूर जैसी निर्णायक कार्रवाइयों तक भारत ने स्पष्ट संदेश दिया है कि उसकी संप्रभुता पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व में भारत ने अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा संरचना में ऐतिहासिक परिवर्तन देखा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि वित्त वर्ष 2025-26 में भारत का वार्षिक रक्षा उत्पादन अब तक के उच्चतम स्तर 1,78,000 करोड़ रुपए पर पहुंच गया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंह ने कहा कि यह उपलब्धि पिछले वित्त वर्ष के 154,000 करोड़ रुपए के उत्पादन की तुलना में 15% से अधिक की प्रभावशाली वृद्धि है। वित्त वर्ष 2020-21 में इसमें 110% की वृद्धि हुई है, जब ये आंकड़ा 84,000 करोड़ रुपए से अधिक था। श्री सिंह ने कहा कि स्वदेशी रक्षा उत्पादन वित्त वर्ष 2013-14 के 4,000

0: 746 करोड़ रुपए की तुलना में 4 गुना बढ़ा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पिछले एक दशक में भारत की रक्षा क्षमताओं में आत्मनिर्भरता और नवाचार, तकनीक तथा स्वदेशी निर्माण की सहायता से महत्वपूर्ण परिवर्तन आया है। माई गॉव की एक पोस्ट को अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर साझा करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा, कैसे भारत ने जल, थल और आकाश में उन्नत स्वदेशी तकनीकों के बल पर अपनी रक्षा क्षमताओं को मजबूत किया है। उन्होंने कहा कि इससे पिछले 12 वर्षों में भारत के रक्षा क्षेत्र में हुए बदलाव की झलक स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ती है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि भारत एक प्रमुख इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण केंद्र के रूप में उभरा है। अब भारत दुनिया का 6वां सबसे बड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यातक देश है। पुणे में एक अमेरिकी कंपनी के विनिर्माण इकाई के उद्घाटन समारोह में श्री वैष्णव ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत एक वैश्विक इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण केंद्र के रूप में विकसित हुआ है। कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष अभिषेक देव ने बताया है कि भारत का कृषि संबंधी खाद्य उत्पादों से जुड़ा निर्यात बढ़कर 500 उत्पादों तक पहुंच गया है। भारत ने यह उपलब्धि अमेरिका, ब्राजील, चीन और यूरोपीय संघ जैसे प्रमुख वैश्विक निर्यातकों से प्रतिस्पर्धा के बावजूद हासिल की है। श्री देव ने कहा कि पिछले वर्ष कृषि निर्यात $53 अरब मूल्य का था।
1: भारत आज विश्व के शीर्ष 10 कृषि निर्यातक देशों में लगातार अपनी जगह बनाए हुए है। ये उपलब्धि इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत का मुकाबला कई बड़े और विकसित देशों से है। पिछले कुछ वर्षों में भारत के कृषि निर्यात में निरंतर वृद्धि देखने को मिली है। हाल ही में समाप्त हुए वित्तीय वर्ष में हमारा कृषि निर्यात $53 अरब तक पहुँच गया और इसकी वृद्धि दर भी काफी अच्छी रही है।
0: पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा है कि बंजर भूमि को दोबारा उपजाऊ बनाने की सरकार की कोशिशें न सिर्फ प्रकृति की सेवा है बल्कि मानवता के भविष्य को सुरक्षित करने का संकल्प भी है। नई दिल्ली में मरुस्थलीकरण और सूखे से निपटने के लिए वैश्विक दिवस के अवसर पर आयोजित एक कार्यक्रम में श्री यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2,60,00,000 हेक्टेयर भूमि को उपजाऊ बनाने का लक्ष्य रखा है।
2: हम पूरी तरीके से अपने मंत्रालय की प्रतिबद्धता, माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो कॉप 2014 की दिल्ली डिक्लेरेशन के समय में करी थी कि हम 26 मिलियन हेक्टर को 2030 तक एक तरीके से रेस्टोरेशन का काम करेंगे। भारत सरकार अपने ग्रीन इंडिया मिशन में लगभग 1.7 लाख हेक्टर जमीन का कार्य हमने किया है और कैंपा के समर्थन से भी पिछले 5 वर्षों में 3.2 लाख हेक्टर का हम लोगों ने फॉरेस्टेशन करने का काम किया है।
0: मणिपुर में सुरक्षा बलों ने राज्य भर में उग्रवाद विरोधी अभियान तेज कर दिए हैं। अधिकारियों के अनुसार अलग अलग अभियानों में 3 उग्रवादियों को गिरफ्तार किया गया और 26 अवैध बंकर नष्ट किए गए हैं। गिरफ्तार किए गए उग्रवादियों की पहचान प्रतिबंधित पीपल्स लिबरेशन आर्मी और उसके राजनीतिक विंग रिवोल्यूशनरी पीपल्स फ्रंट के सक्रिय सदस्यों के रूप में हुई है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने आगामी नीट परीक्षा को देखते हुए विद्यार्थियों और अभिभावकों को घोटालेबाजों से सावधान रहने का अनुरोध किया है। एनटीए के महानिदेशक अभिषेक सिंह ने कहा कि हम ये सुनिश्चित करेंगे कि परीक्षा बिना किसी गड़बड़ी के संपन्न हो।
3: एनटीए यह पक्का करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है कि कोई भी गड़बड़ी ना हो। हर प्रश्न पत्र और उसमें शामिल हर सवाल को पूरी तरह सुरक्षित तरीके से तैयार किया गया है। हमने सामान्य सुरक्षा उपायों के अलावा अतिरिक्त सुरक्षा इंतजाम भी किए हैं। एनटीए ने कई एजेंसियों की मदद ली है और हम यह सुनिश्चित करेंगे कि परीक्षा बिना किसी गड़बड़ी के सम्पन्न हो।
0: इस बीच उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि उम्मीदवारों को प्रवेश पत्र दिखाने पर राज्य सड़क परिवहन निगम की बसों के किराए में 50% की छूट दी जाएगी। भारतीय जनता पार्टी ने आज लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी पर नीट पुनर्परीक्षा से पहले छात्रों के मन में तनाव पैदा करने और उनकी एकाग्रता भंग करने का आरोप लगाया। भाजपा प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि सरकार इस परीक्षा को पूरी संवेदनशीलता और सतर्कता के साथ व्यवस्थित तरीके से आयोजित करने जा रही है।
4: मात्र 3 दिन के बाद नीट की परीक्षा दोबारा संपन्न होने जा रही है। इस विषय को लेकर जहां एक तरफ सारे छात्र पूर्ण मनोयोग से परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, जहां एक तरफ सरकार संवेदनशीलता से काम करती हुई दिखाई पड़ रही है, वहीं कांग्रेस पार्टी और नेता प्रतिपक्ष श्री राहुल गांधी ऐसा प्रतीत हो रहा है कि संवेदनशीलता के स्थान पर कुटिलता का प्रयोग करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: हैं ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIR न्यूज हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इसराइल के हिजबुल्ला और सैन्य कार्रवाइयों की निंदा की है। फ्रांस में जारी G7 सम्मेलन के दौरान ट्रंप ने कहा कि यह संघर्ष बहुत लंबे समय से जारी है और इसमें कई लोगों की जान गई है। उन्होंने इसराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू से सैन्य कार्रवाइयों के संचालन में अधिक जिम्मेदारी बरतने का आग्रह किया है। एक रिपोर्ट।
1: ईरान ने आरोप लगाया है कि अमेरिका ईरान समझौता ज्ञापन की घोषणा के बाद से इसराइल ने लेबनान में युद्ध विराम का कई बार उल्लंघन किया है। साथ ही चेतावनी भी दी है कि यदि हमले जारी रहे तो कड़ा जवाब दिया जा सकता है। ईरान के सैन्य अधिकारियों ने कहा है कि इसराइली बलों ने 48 घंटे में 84 बार युद्ध विराम का उल्लंघन किया है। उन्होंने कहा कि किसी भी प्रकार का उल्लंघन ईरान और अमेरिका के बीच जारी व्यापक कूटनीतिक प्रक्रिया के लिए खतरा बन सकता है। वहीं इस बीच हिजबुल्ला के अधिकारियों का कहना है कि समझौते के बाद से संगठन ने कोई सैनिक कार्रवाई नहीं की है। उन्होंने ये भी कहा है कि इसराइल को भी युद्ध विराम की शर्तों का पालन करना चाहिए। वहीं दूसरी ओर इसराइली नेतृत्व ने संकेत दिया है कि सुरक्षा खतरों को देखते हुए सैन्य अभियान जारी रहेंगे और उत्तरी सीमा पर सेना हाई अलर्ट पर बनी रहेगी। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
0: इस बीच ब्रेंट क्रूड की कीमत 5.4% गिरकर $78.66 हो गई है। लखनऊ में भारत और अफगानिस्तान के बीच 3 एक दिवसीय क्रिकेट मैचों की श्रृंखला के दूसरे मुकाबले में अफगानिस्तान ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया है। ताजा समाचार मिलने तक भारत ने 13 ओवर में 1 विकेट पर 96 रन बना लिए हैं। भारत श्रृंखला में 1-0 से आगे है। आईसीसी महिला T20 विश्व कप क्रिकेट में आज भारत का सामना नीदरलैंड्स से होगा। ये मैच ब्रिटेन में लीड्स में भारतीय समय अनुसार शाम 7 बजे से होगा। फीफा फुटबॉल विश्व कप में ऑस्ट्रिया ने जॉर्डन को 3-1 से हराया है। अर्जेंटीना ने भी आज सुबह अल्जीरिया को 3-0 से पराजित किया। मौसम विभाग ने कहा है कि अगले 4 से 5 दिन में दक्षिण पश्चिम मॉनसून के तेलंगाना, ओडिशा, झारखंड, बिहार और छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में आगे बढ़ने की संभावना है। विभाग ने आज उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम के कुछ स्थानों पर तेज वर्षा का अनुमान जताया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। G7 नेताओं ने वैश्विक स्थिरता, सुरक्षा सहयोग और अंतर्राष्ट्रीय संगठित अपराध का मुकाबला करने के प्रयासों पर केंद्रित कई घोषणाओं को अपनाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज फ्रांस के एविया में G7 शिखर सम्मेलन के दौरान अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करेंगे। श्री मोदी आज शाम पेरिस पहुंचेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सर्जिकल स्ट्राइक बालाकोट और ऑपरेशन सिंदूर का उदाहरण देते हुए कहा कि भारत की संप्रभुता से कोई समझौता नहीं किया जा सकता। वित्त वर्ष 2025-26 में भारत का रक्षा उत्पादन रिकॉर्ड 1,78,000 करोड़ रुपए पहुंचा। सुरक्षा बलों ने मणिपुर में प्रवर्तन और आतंकवाद रोधी अभियान तेज किया। 3 आतंकवादी गिरफ्तार, 26 अवैध बंकर नष्ट और भारत और अफगानिस्तान के बीच दूसरा एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच जारी। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: अभी आप सुन रहे थे दिल्ली केंद्र से प्रसारित मीडिया न्यूज तथा दोपहर समाचार। ये आकाशवाणी का अरुण FM है, जहाँ होती है दिल से दिल की बात। और प्रस्तुत है आपके लिए कार्यक्रम हिट्स ऑफ 90s।

दोस्तों कार्यक्रम हिट्स ऑफ 90s में आपके लिए पेश कर रहे हैं पहला गीत मासूम फिल्म से। गीत के बोल है ये जो तेरी पायलों की और इस गीत को आवाज दी है अभिजीत भट्टाचार्य और साधना सरगम ने।

Nós estamos reunidos aqui de Sadhana Sargam और उदितनारायण की आवाज में फिल्म जो जीता वही सिकंदर से आपको बता दो कि आप बने हुए हैं मेरे साथ कार्यक्रम हिट्स ऑफ 90s में और मैं हूं आपके आरजे साथी दांपक। दोस्तों अब आपके लिए पेश कर रहे हैं गीत दिल वाले फिल्म से। गीत के बोल है कितना हसीन और इस गीत को गाया है कुमार शानू ने।

0: dynamic performance, sleek design. Explore Maruti Suzuki Alto K10. Comes with a mileage of 24.90 km per liter. Smart Play Studio, 15 plus safety features, including 6 airbags, next gen K Series 1.0 liter dual jet, dual 50 engine, and spacious interiors.
1: Get attractive offers up to ₹67,500. Offer till stock lasts. Visit your nearest Maruti dealership today. Terms and conditions apply.
2: दोस्तों ब्रेक के बाद आप सबका फिर से स्वागत है कार्यक्रम हिट्स ऑफ 90s में. और कार्यक्रम में अब आपके लिए पेश कर रहे हैं गीत कुछ कुछ होता है फिल्म से. गीत के बोल है कोई मिल गया और इस गीत को गाया है जतिन ललित ने.

का वी डिपार्टमेंट फॉर प्लेटिनम जुबली सेलिब्रेशन लॉन्च कर का दाखाए था उम्बाइंग इन वे विन डिपार्टमेंट अचंबुई रात लाओ कनो मकलाइन समलाम जाम ही उरा का इन्यूग्रेशन प्रोग्राम वन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट राज्यसभा ताई तगक चीफ गेस्ट लने अटेंड कर का दाखाए था उमन इवेन वन एग्जीबिशन खाने का तान का दाखाए था उम डिपार्टमेंट विन फसल ब्रंग उरा का अचीवमेंट उरा का कंट्रीब्यूशन जाम सन खाने का उरा का चीफ गेस्ट का प्लेटिनम जुबली फॉर लोगो डिजाइन कॉम्पिटिशन ने लॉन्च कर का दाखाए था उमन वनलिंग एकेडमिक कल्चर उड़ा का हेरिटेज प्रोग्राम से कर्माता उड़ा दातला रा का डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन लोवल सुबनश्री का इन कैप मोफा अवेयरनेस कैंपेन लॉन्च कर का दाखाए था उम नशा मुक्त भारत अभियान विकसित भारत की पहचान वन बैनर गुंगलग ड्रग फ्री इंडिया दोतरा ही प्रोग्राम मन यशी लाई तारिक तलमो तामो चुलीमान दाखाए था उमन रा का इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग एब्यूज एंड इलिसिट ट्रैफिकिंग गुंगलग अन प्रोग्राम था मतो दाखाए था उमन अन प्रोग्राम मन लॉन्च का थी डिप्यूटी कमिश्नर का मास प्लेज प्रोग्राम नई कन का दाखाया था उम्बाइंग इन वे डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरियट ऑफिस कम्प्लेक्स जीरो अलग डिप्यूटी कमिश्नर का ओली परमे का हेड्स ऑफ डिपार्टमेंट उरा का लोकल एडमिनिस्ट्रेटिव लीडर सन विने सरमोनी अटेंड कन हेड का दाखाया था उमन उरा का फीफा वर्ल्ड कप लाहिंग किंग दलम का ताम लग डिफेंडिंग चैंपियन अर्जेंटीना का 3-0 का अल्जेरिया भी कांसास सिटी स्टेडियम यूनाइटेड स्टेट्स लग पे का दाखाया था उमन लियोनेल मेसी का कैप मोक्रबन कैप मोकलैन कैप मोकताम वर्ल्ड कप गोल ताने का हैट्रिक ता का दाखाया था उमन मेसी का जर्मनी लेजेंड मिरोस्लाव क्लॉस विनय पे का दाखाया था उमन गोल वर्ल्ड कप फाइनल पर गोल्डन दता ही उरा कंसम लकमान किंग लाइकों संग फाइम तो किन कमान जाएगा जाए

नई आकाशवाणी ईटानगर डिब्रुगढ़ मीडियम वेब सिपा सिसिपसी चुमसी मीटर हो पा चि छिपा किलो हर्स में मचलांग खाम तई खाम ती हौ को माहो मेने वन बुक टू लांगनी पीटा सोंहिंग पा साउ टू ने इना जी पी मु सोंहिंग साउ हो नन जुन नई सिपचित वन मने फोंग लोय पिन मा जी सेवन समिट निया ती मंग इवियन फ्रांस मई प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी तंग यूएस प्रेसिडेंट हिचू डोनाल्ड ट्रम्प थत पी मू सों हिंग साउ हा नीन फेब्रुवारी मई मने सोंखा सोंचाउ तो ना कंसी मीटिंग मई नंग मा का मू नई हूप कन मा मई खाम लाई काम पोंग लोई बायलेटरल कॉर्पोरेशन नल मल्टीपल सेक्टर मई औसी तानमा नम हो डीसी खों तिराब खाउ हिचू तीचु अरन ngun la leng sau song heng missionaries khong charity khonsa khau mai wan manga khun lung man chau mai ngun nei a phar kan ka nam ho department kan long lem resource khau wan manga mai platinum jubilee celebration nei mat yam kan ma thun ma चिप चिप हापी खाउ चौ सर्विस खनसम कंट्रीब्यूशन इंटेलेक्चुअल मैको कल्चरल खनसम डेवलपमेंटल लैंडस्केप खोंग मंग अरुणाचल प्रदेश हौ मै तुता मंग कनमा का डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन खोंग जिला लोअर सुबनसिरी खाउ हंग चा सिप वन अवेयरनेस कैंपेन नल नासा मुख भारत अभियान विकसित भारत की पहचान ड्रग्स फ्री इंडिया कैंपेन नई लुक साहु वन नन जून सोहिंग साहु मई तको पिन कन मायाव पिनमा फीफा वर्ल्ड कप सोहिंग साहु ने मई मने फै कंगल मंग अर्जेंटीना खानसम अर्जेरिया लिनमा का मने अर्जेंटीना खाउ लुक सामसिन लुक मंग अर्जेरिया खाउ पी ओं कन मा का नम हो वन मंगा मई कैबिनेट खाउ प्रोमुलगेशन खोंग अरुणाचल प्रदेश माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस ऑर्डिनेंस सोंहिंग साउ हु नई कना लेजिस्लेटिव असेंबली इनेक्टमेंट मई तक हित अप्रूव कन मायो खानसम कैबिनेट खाउ अमेंडमेंट खोंग अरुणाचल प्रदेश लैंड सेटलमेंट खनसम रिकॉर्ड रूल्स खोंग पीमु सोंहिंग सिप सोंग मई को हिट अप्रूव कन मा का नम हो खनसम चा हंग मने कौ खम तिखाई ने नम हो मने मु उई खम मई लुक नंग समुद्र मंग यक मई हने थोम तिखा

0: chom nang akhing nam nali na studio mai chi kan ma wa pha poi ne cha hang mane kham tai kham ti ho ti khai mai su jo ho
1: दोस्तों भी आप सुन रहे थे थैकम ती श्रोताओं का कार्यक्रम। ये आकाशवाणी का अरुण एफएम है, जहां होती है दिल से दिल की बात।

0: गीत संगीत
1: ज्ञान और मनोरंजन के गुलदस्ते से
0: प्यार भरे अल्फाजों में
1: दिल से दिल की बात
0: बस आपके नाम
1: ये है आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 MHz।

दोस्तों समाचारों के बाद अब आपके लिए पेश कर रहे हैं फिल्मी गाने, और फिल्मी गानों में आपके लिए पेश कर रहे हैं बीवा फिल्म से गीत ओ जी जी, और इस गीत को आवाज दी है पामेला जैन और श्रेया घोषाल ने।

0: आकाशवाणी इटानगर अनि जून लेट मा निबन अन्न तारीख बुधवार इरुमा केम वांचो चाय का होवांग बांगना होवांग ए का हो पाई फाले मंचुई जामे खमे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अनि फ्रांस तो इवेन होनुमा जी सेवन सबमिट होबा तो यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप है अपोंगाई लीडर्स नि हाले थानखांगा सावले फेब्रुवारी 2025 तो वाशिंगटन डीसी मा अपोंगले आके कफाई मा इरुमति अपोंगाई अनि हले अपोंके मा हॉकीए माली माली सत मोटो तमोक के बोमा रीजनल अंतोले चावनु मयो पांगनु खातो वे तुमई लमखौ लेंगो अंक बामा ले रोय हले इंडिया चावनु मयो तुनु मा ग्लोबल पावर अंग अचांगले हाइ का फैतो चावनु अंक के माली माली तुटाई पन अमय अंक के बामा न्यू दिल्ली तो पांगनु एवे ओंबक कराइले अपोंग असाउ अंक कराइले मनी कैबिनेट होटा में अरुणाचल प्रदेश माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस फैसिलिटेशन ऑफ एस्टैब्लिशमेंट एंड ऑपरेशन ऑर्डिनेंस लेजिस्लेटिव असेंबली मा अलाइले फनले हाइयर ऑर्डिनेंस एमएसएमई स्टो मोक्से ले चुके एंटरप्रेन्योर्स थम हानपक मा वानलम साना नायको ले लाइलेरिंगांग लतुंगले कैबिनेट हलवाई हवान होपुनुबु बोमा मानराय मि थामरोंग माना मैको ले अरुणाचल प्रदेश लैंड सेटलमेंट एंड रेकॉर्ड्स रूल्स एपीएलएसआर 2012 वानलमचु लैले रिंगै फनले हले लैले रिंग का खंगे मास्टर प्लान एरियास खामा ओमके रांगहा होनुइबु परमिशन साइले लांगो अंका चिताई ले मास्टर प्लान खा अंके अंग अचांगै हजा होलम हले लाई ले रिंग के खांग ए यंग यंग खनक रोंग मा टेम टू टाई चिटाई ले प्लान अर्बन डेवलपमेंट रोंग मा माइके अंग चंगाई कैबिनेट होटा में रिक्रूटमेंट परीक्षा जी अंगोट ले आशान थाम के कैंडिडेट्स बु रोंग मा टू टाई अपोंग बक के बामा अजंग ला ले 2022 मा एपीपीएससी जी मा खांग ए अलाई के रिक्रूटमेंट परीक्षा हान पक मा तुम लोग का कैंडिडेट्स थम हन पक मचु वन टाइम अपर एस रिलैक्सेशन को ऐड फन ले हले गवर्नमेंट जी मा खांग ए हले खट का बुरोंग मा ना मे को ले फन के ngan kap le tirap deputy commissioner techu aran e many chi office jamba ma khonsa angke missionaries of charity ang yongphong po le ngun lak ta yak cha ani ko le hale charity hum ma कमी लक्मी बोमा चिथो चिलन मी थम तो बुटोले हुमेले ngo के मिशनरीज ऑफ चैरिटी ची मा खंग ए मुंजान मा खंग ए सफोंग फा ले हो के खोमा तिरप डिस्ट्रिक्ट कंग के डिपार्टमेंट्स बु खामा आखो के थम ए होम मोंगते तो साइले को कचंगले हाले को के मा डिप्टी कमिश्नर ए मिशनरीज ऑफ चैरिटी ची मा खंग ए खनक नुसा तो ओबकु हुमेले को टाइप ओइले कबामा ngaile wan ke boma हले साइले को के खोमा डिस्ट्रिक्ट ऑफिशियल्स थम तो चू अचोकले डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने मिशनरीज ऑफ चैरिटी तो अचोक के बोमा तुनु अंके चिथो चिलन खनक नु जों फोंगले मोक ngo kraile ले हया हा थम तो फाइ फाइ मचु फोंगले को ऐ जौ ले चु ngai ले डिपार्टमेंट ऑफ रिसर्च ए अरुणाचल प्रदेश मा रंगपुरम बन आगा बामा माली माली सत मोट तो मोक दो के आखा अकन ले प्लेटिनम जुबली ले अतु जाले हायका चीप गेस आंग हकले राज्यसभा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट टाइटा गाक ए डबले हायतु सोमा डिपार्टमेंट ची मखांग ए लेन के रंगपुरम बन होनाई बामा टेम्पांग मोक दो पोइ लेके बुचु अहोले चीप गेस ए प्लेटिनम जुबली लोगो डिजाइन कंपटीशन का चुटापले हाया प्लेटिनम जुबली एकेडमिक कल्चरल बोमा हेरिटेज निंग के प्रोग्राम्स बु अटु याले रंगपो हमले जो अपन साई लोबर सुबनश्री डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने नशा मुक्त भारत अभियान विकसित भारत की पहचान ड्रग फ्री इंडिया कैंपेन लेकर खामा अवेयरनेस कैंपेन नी बन जो टू जाले हले डिस्ट्रिक्ट मा इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग अब्यूज एंड एलिसाइट ट्रैफिकिंग बामा ना खत बाकले जून चारों कपले जो टू जाए हजार पक मले डिप्टी कमिश्नर ऑफिस चंबा ऑफिस चिमा खंग ए मनी जीरो अंके डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी ऑफिस कॉम्प्लेक्स मा chau sat program chu to ja le hayama lowa subansri deputy commissioner oli parme e heads of department hods tham local administrative leaders bu phai le halake tokna kali saling ke phai awale atu ya ka tu so bu to hak bak ko la ka le haboma football ma anap united states to kansas city stadium ma arab abauke fifa world cup 2026 campaign ma algeria to defending champions argentina e goals aram choli julat le hayage ma lionel messi e thamban ali thamban ga boma thamban rok leke world cup goals halako ke tele le thamram jonguina messi thamban rok leke world cup goals ko mi khama akko ke germany legend miroslav kos phai danta tuchu alap la haina anika ka ho iwai ija akashwani itanagar debrugar ka ho phai matai pa hai hawange ngam hwa jo hamding ma pa hai
1: दोस्तों अभी आप सुन रहे थे वांछो श्रोताओं का समाचार। वांछो श्रोताओं का कार्यक्रम आप आगे और भी सुन सकते हैं हमारे मीडिया वेब चैनल 444.6 मीटर यानी 675 किलोहर्ट्ज तथा डीआरएम 666 किलोहर्ट्ज पर अब आप बने हुए हैं मेरे साथ आकाशवाणी के 103.1 मेगाहर्ट्ज पर जहां होती है दिल से दिल की बात। दोस्तों अब चलिए समाचारों के बाद आपके लिए पेश कर रहे हैं फिल्मी गाने फ्रॉम द फिल्म युवराज। गीत के बोल है तू मेरी दोस्त और इस गीत को आवाज दी है ए आर रहमान, बेनिडेल और श्रेया घोषाल ने।

दोस्तों इस गीत के बाद अब कार्यक्रम में आपके लिए पेश है गीत दिल मांगे मोर फिल्म से। गीत के बोल है ओम मखना और इस गीत को गाया है के और समीर ने।

दोस्तों, अब चलिए फिल्मी गानों से ब्रेक लेते हुए आपको बता दो कि अब से कुछ पलों में आप सुनेंगे ईद मिस में श्रोताओं का समाचार।

0: charity home ate cha hate bada aoga imo he kaji ho kaji bi we asahi mi ngi pu nga imo na problem praga pani su ge mane missionaries charity home me esme te hi me ya minga na bro do ne chi ga chi ma ujita ne tirap di si me la oga da aoga Arunachal Pradesh ma research department kha ba mangar hunu pachi kwa bunye ne platinum jobli ena pagam ba rajya sabha mp tai tagak me ay pahag bada aoga research department me mangar hunu li ba jala chi pwa tala pra exhibition ekega chebu tagak me karu heta chu mane ay pa o bane platinum jobli ma che logo zo ajamaga bu ame ay pa o bada aoga जो नाद ने किसा कल्चरल प्रोग्राम आखागने ऐसा प्लेटिनम जुबली है इनम बने हानो थालापू लेना एना लेथवा ला होगा आई मुगा ड्राग दुहा नुगाना उचिपुआ लवार सुबंशी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन में हो निगा बने ऐचा लापुची जहला हरमाची ने ऐचा लापुची जनहर एरोमाची ने लिबा ड्रग फ्री इंडिया कैंपेन अखापगम बदा आहोगा आ कैंपेन को कमाने आयु अलम्ब में आयु मुगा ड्रग दो हाजिम ना लाने अला जगह बो महो लोअर स्पेशल डीसी ओली पार्म में बुनी जीरो डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरियट ऑफिस माने अली दो हानो चिपुआ लासे आथाचिदा आहुगा आ दो मा डीसी ब्रम डिपार्टमेंट आजा है तालम्ब्रो इकिसा आजा बाबा लम्ब्रो दोने इकिसा मुतांदो गिगा बदा ला होगा ऐसा मोहे फीफा वर्ल्ड कप आने का अर्जेंटीना में ओना अनामा अमेरिका मची कंसास सिटी स्टेडियम मने अल्जेरिया है कासो जीरो गोल मने आने का बदा होगा लायोनेल मेसी में आ मैच मने गोल कासो हागने फीफा वर्ल्ड कप में पैन दो गोल हाएगा जर्मनी मचे आएगा मिरोस्लेव क्लोज गो होला होता गोल रोगा तमा क्या बदा आहोगा एतनिचि इदुमिस्मि आहो अनिमा ओन दबाए एचा आकाशवाणी ईटानगर दिब्रुगढ़ नाले इदुमिस्मि प्रोग्राम मा एचमता आशे अहोसो खिया महो एतनि हेंदो ललो लिंगि जि चासि छि हमजे
1: दोस्तों अभी आप सुन रहे थे इदुमिस्मि श्रोताओं का कार्यक्रम श्रोताओं का कार्यक्रम आप आगे भी सुन सकते हैं हमारे मीडियम वेब चैनल 444.6 मीटर यानी 675 किलोहर्ट्ज तथा डीआरएम 666 किलोहर्ट्ज पर। अब आप बने हुए हैं मेरे साथ आकाशवाणी करुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज पर, जहां होती है दिल से दिल की बात।

0: गीत संगीत
1: ज्ञान और मनोरंजन के गुलदस्ते से
0: प्यार भरे अल्फाजों में
1: दिल से दिल की बात
0: बस आपके नाम
1: ये है आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 में।

दोस्तों अब आपके लिए प्रस्तुत है फिल्मी गानों का कार्यक्रम। जी हाँ, और पेश कर रहे हैं आपके लिए अजब प्रेम की गजब कहानी फिल्म से गीत के बोल है तेरा होने लगा हूँ। और इस गीत को आवाज दी है अतीब असलम और अलिसा चेन्नई ने। दोस्तों इस फिल्म में रणबीर कपूर ने प्रेम और कैटरीना कैफ ने जेनी का रोल निभाया था। दोनों की केमिस्ट्री फिल्म की सबसे बड़ी ताकत मानी जाती है। कहानी एक ऐसे लड़के की है जो जेनी से प्यार करता है, लेकिन जब उसे पता चलता है कि जेनी किसी और से प्यार करती है तो वो उसकी खुशी के लिए अपना प्यार कुर्बान करने को तैयार हो जाता है। फिल्म की कॉमेडी स्टाइल बहुत अलग और स्लैपस्टिक थी, जिसे कई लोग आज भी रिपीट देखना पसंद करते हैं। दोस्तों फिल्म 2009 की सबसे सफल हिंदी फिल्मों में से एक थी और बॉक्स ऑफिस पर भी हिट रहे। सबसे यादगार बात यह है कि फिल्म सिर्फ लव स्टोरी नहीं बल्कि सच्चे प्यार और सेक्रीफाइस की कहानी भी है। इसी वजह से

तो दोस्तों आपको बता दूं कि इस गीत के साथ ही अब वक्त हो चला है हमारी दूसरी प्रसारण सभा के अंतिम मोड़ पर और वक्त हो चला है मेरे आपसे अलविदा कहने का। पर जाने से पहले आप सभी श्रोताओं को बता दूं कि अब से कुछ ही पलों में आप सुनेंगे थम्स अप श्रोताओं का समाचार और आगे के सफर में आपसे जुड़ेंगे आरजे नीलम जी। दोस्तों हमारे इसी दूसरे प्रसारण सभा में साथ दे रहे थे प्रसारण निष्पादक एल ताली तथा तकनीकी अभियंता के अनंत कुमार और अब मुझे यानी अपना आरजे साथी दंपा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।

तो परम चीफ गेस र प्लैटिनम जुबली लोगो डिजाइन कंपटीशन मन तफांग तो अराउ प्लैटिनम जुबली सेलिब्रेशन पर पांसी सरेंसी प्रजु एकेडमिक कल्चरल नई हेरिटेज कमुंगनांग प्रोग्राम ताम पर तगयांगसिंग ओरु तो लोअर सुबनसिरी डिस्ट्रिक्ट वांग डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन र नशामुक्त भारत अभियान विकसित भारत की पहचान बैनर अंदर म रंगसई अवेयरनेस कैंपेन तफांग तंग ओरु तो डिस्ट्रिक्ट पम नंग ड्रग्स अब्यूज नई इलिसिट ट्रैफिकिंग सक नंग इंटरनेशनल डे तगयांगसी सकान नंग मचुजिलिंग रंगखुरा करोक तारीख अटाक पर कैंपेन पर तगयांगसी ओरु तो पर ओकेजन नंग लोअर सुबनसिरी डिस्ट्रिक्ट वांग डीसी ऑफिस र जीरो वांग डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरिएट ऑफिस कॉम्प्लेक्स नंग मनई मास प्लेस प्रोग्राम तगयांग तो पर ओकेजन नंग डीसी ओली पारमे र मसौ फानतनांग सेरेमोनी नंग तोंगथोक म वसरोप हेड ऑफ डिपार्टमेंट नई लोकल एडमिनिस्ट्रेटिव लीडर हिंग मरुक तो आरो फीफा वर्ल्ड कप फुटबॉल टूर नंग मचुरनाप यूनाइटेड स्टेट वंग कैंसस सिटी स्टेडियम नंग अर्जेंटीना र अल्जीरिया प आरोम गोल म चेरो फीफा वर्ल्ड कप 2026 नंग पन मैच प तो फंग तंगो रुक तो रुंगरंग इतान नंग थुमरा

अभी आप सुन रहे थे तांगसा श्रोताओं का समाचार। तांगसा श्रोताओं के कार्यक्रम को आगे सुनने के लिए आप हमारे मीडियम वेब चैनल 444.4 मीटर यानी 675 किलो हर्ट्स तथा डीआरएम 666 किलो हर्ट्स पर अभी जुड़ सकते हैं और पूरे कार्यक्रम का आनंद ले सकते हैं।

0: गीत संगीत
1: ज्ञान और मनोरंजन के गुलदस्ते से
0: प्यार भरे अल्फाजों में
1: दिल से दिल की बात
0: बस आपके नाम
1: ये है आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 मेगाहर्ट्ज़।

नमस्कार, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी ईटानगर का अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़, जहां होती है दिल से दिल की बात। और इस तीसरे प्रसारण सभा में आज मैं हूं आपके अपने रेडियो साथी नीलम। जी हां श्रोता मित्र, दूसरी प्रसारण सभा के खूबसूरत सफर का आप आनंद ले रहे थे आपकी चहेती आरजे दांपा के साथ। आरजी दांपाक, आगे की जिम्मेदारी मुझे सौंपने के लिए और मेरे परिचय के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। श्रोता मित्रों, इस वक्त हमारे स्टूडियो की घड़ी में शाम के 4:27 हो रहे हैं, तो चलिए इसके साथ ही आरंभ करते हैं तीसरे प्रसारण सभा और पेश करते हैं कार्यक्रम गुड इवनिंग ईटानगर।

नेगेटिव थॉट पर काबू पाने के कुछ पहलुओं के बारे में। मानव मस्तिष्क जागते सोते हर वक्त विचारों को जन्म देता है। कभी कभी मन में अनचाहे विचार आ जाते हैं, यानी ऐसी बातें मस्तिष्क में आ जाती हैं जो हम सोचना नहीं चाहते। गलत या बुरे ख्याल मन विचलित कर देते हैं और व्यक्ति को असहज महसूस कराते हैं। इससे घबराने की जरूरत नहीं, ये एक सामान्य मानसिक प्रक्रिया है। विचार जैसे होते हैं वैसा ही आपका जीवन बन जाता है, इसलिए अच्छे विचारों को अपनाना चाहिए और नकारात्मकता को दूर करना चाहिए। श्रोता मित्रों, इस पर हम आगे भी बात करेंगे, लेकिन फिलहाल अब हो चला है एक वक्त एक गीत का। जी हाँ, कार्यक्रम का पहला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं गोलमाल 3 फिल्म से।

श्रोता मित्रों, आप आनंद ले रहे थे कार्यक्रम, जी हाँ, इवनिंग कार्यक्रम गुड इवनिंग ट्राइब का। ये इस पहले गीत का गोलमाल ट्री फिल्म से शान और अनुष्का मनचंदा की आवाजों में। श्रोता मित्र, आपको फिर से एक बार बता दें कि आप जुड़े हुए हैं अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज पर, और जी हाँ, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम गुड इवनिंग ईटानगर। और कार्यक्रम के तहत आज हम बात कर रहे हैं नकारात्मक विचार पर नियंत्रित करने के कुछ उपाय के बारे में। श्रोता मित्रों, गलत या नकारात्मक विचार आना स्वाभाविक है, लेकिन उन पर काबू पाना भी जरूरी है। गलत या बुरे विचारों को काबू में किया जा सकता है। अगर आप इन विचारों को नियंत्रित करना चाहते हैं तो कुछ उपाय आपकी मदद कर सकते हैं। ध्यान, सकारात्मक सोच और व्यस्त दिनचर्या से आप अपने विचारों को नियंत्रित कर सकते हैं और मानसिक शांति पा सकते हैं। जब भी आपके मन में कोई बुरा या नकारात्मक विचार आए तो उसे नजरअंदाज करने की बजाय उसकी जड़ को समझने की कोशिश करें। ये जाने कि ये विचार क्यों और किस स्थिति में आ रहा है। जितना अधिक आप इनसे लड़ने की कोशिश करेंगे, ये उतनी ही मजबूत होंगे। ध्यान करने से दिमाग शांत होता है और अनचाहे विचारों पर नियंत्रण पाने में मदद मिलती है। साथ ही अपने विचारों को बिना जज किए देखने की कोशिश करें और धीरे धीरे उन्हें जाने दें। ज्यादा खाली समय में दिमाग अधिक अनचाहे विचार उत्पन्न करता है। खुद को रचनात्मक यानी कि क्रिएटिव कामों में व्यस्त रखें। नियमित रूप से व्यायाम करें। ये मानसिक तनाव को कम करता है और दिमाग को सकारात्मक बनाए रखता है। तो चलिए श्रोता मित्रों, इसी के साथ ही कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अब हम आपको सुनवा रहे हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत।

श्रोता मित्रों, आध्यात्मिक प्रेरणादायक किताबें पढ़ने से मन शांत होता है और नकारात्मक विचार दूर रहते हैं। इंटरनेट और सोशल मीडिया पर क्या देख रहे हैं, इस पर ध्यान दें। बुरे या फिर नकारात्मक कमेंट से बचें। अगर आप ऐसे लोगों के साथ रहते हैं जो नकारात्मक विचारों को बढ़ावा देते हैं, तो उनसे दूरी बनाए रखें। अच्छे और सकारात्मक लोगों के साथ समय बिताएं, जिससे आपके विचार भी शुद्ध और अच्छे बने रहें। अगर आपके मन में बुरे ख्याल आ रहे हैं, तो खुद को दोषी महसूस करने की जरूरत नहीं है। हर इंसान के मन में कभी ना कभी ऐसे विचार आते हैं, लेकिन उन्हें स्वीकार करके सही दिशा में आगे बढ़ना महत्वपूर्ण है। अगर अनचाहे विचार बहुत ज्यादा परेशान कर रहे हैं और आपका रोजमर्रा का जीवन प्रभावित हो रहा है, तो किसी अच्छे मनोवैज्ञानिक या फिर काउंसलर से सलाह जरूर लें। श्रोता मित्रों, इन बातों पर ध्यान देने से हम हमारे मन में उठने वाले नकारात्मक विचारों पर नियंत्रण पा सकते हैं। तो चलिए, इसी के साथ ही अब हम आपको सुनवाने जा रहे हैं कार्यक्रम का ये अंतिम गीत थ्री इडियट फिल्म से।

0: श्रोता मित्र, कार्यक्रम का यह आखिरी गीत आप सुन रहे थे थ्री इडियट्स फिल्म से शान और शांतनु मोइत्रा की आवाजों में। और इसी के साथ ही कार्यक्रम गुड इवनिंग ईटानगर का आज का ये अंक यहीं पर संपन्न होता है। आपको बता दें कि कुछ ही पलों में आप सुन पाएंगे बारी बारी से समाचार। पहले आप सुन पाएंगे हिंदी एवं अंग्रेजी में समाचार और 5 बजते ही आप सुन पाएंगे नुक्ते श्रोताओं का समाचार।
1: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। अभी आप सानू शर्मा से समाचार सुनेंगे। पहले मुख्य समाचार। G7 नेताओं ने वैश्विक स्थिरता, सुरक्षा सहयोग और अंतर्राष्ट्रीय संगठित अपराध का मुकाबला करने के प्रयासों पर केंद्रित कई घोषणाओं को अपनाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज फ्रांस के एवियन में G7 शिखर सम्मेलन के दौरान अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करेंगे। श्री मोदी आज शाम पेरिस पहुंचेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सर्जिकल स्ट्राइक बालाकोट और ऑपरेशन सिंदूर का उदाहरण देते हुए कहा, भारत की संप्रभुता से कोई समझौता नहीं किया जा सकता। वित्तीय वर्ष 2025-26 में भारत का रक्षा उत्पादन रिकॉर्ड 1,78,000 करोड़ रूपये पहुंचा, 2020-21 की तुलना में 110% की वृद्धि। सुरक्षा बलों ने मणिपुर में प्रवर्तन और आतंकवाद रोधी अभियान तेज किया, 3 आतंकवादी गिरफ्तार, 26 अवैध बंकर नष्ट। अब समाचार विस्तार से। G7 नेताओं ने वैश्विक स्थिरता, सुरक्षा सहयोग और अंतर्राष्ट्रीय संगठित अपराध से निपटने के प्रयासों पर केंद्रित कई घोषणाओं को अपनाया है। अपने बयान में नेताओं ने अमरीका और ईरान के बीच एक शांति समझौते का स्वागत किया और इसे क्षेत्रीय तनाव कम करने तथा ईरान को परमाणु हथियार हासिल करने से रोकने का एक महत्वपूर्ण अवसर बताया। G7 नेताओं ने हॉर्मुज जलडमरू मध्य से सुरक्षित नौवहन गतिविधियों के महत्व का भी उल्लेख किया। एक अन्य घोषणा में G7 नेताओं ने मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ कार्रवाई तेज करने का संकल्प लिया और इसे राष्ट्रीय सुरक्षा, सार्वजनिक स्वास्थ्य और आर्थिक स्थिरता के लिए बढ़ता खतरा बताया। सहयोग देशों ब्राजील और दक्षिण कोरिया ने भी इस पहल का समर्थन किया है। नेताओं ने ज्ञान कौशल को बढ़ाने और तस्करी को रोकने के लिए G7 प्लस पोस्ट नेटवर्क का प्रस्ताव भी रखा। G7 देशों के नेताओं ने विकासशील देशों पर बढ़ती कर्ज के बोझ से निपटने की कोशिश तेज करने का संकल्प लिया है। इसमें वे कमजोर मध्य आय वाले देश भी शामिल हैं जो अभी भी कोरोना महामारी के दौरान G20 के कर्ज राहत ढांचे से के लिए योग्य नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम फ्रांस के एवियन में G7 शिखर सम्मेलन के दौरान अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करेंगे। इससे पहले दोनों नेताओं ने फरवरी 2025 में अमेरिका के वाशिंगटन में बैठक की थी। इस दौरान दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय सहयोग के विभिन्न क्षेत्रों सहित क्षेत्रीय और वैश्विक हित के मुद्दों पर चर्चा होने की संभावना है। श्री मोदी सम्मेलन के दौरान सभी के लाभ के लिए संतुलित, समावेशी और मजबूत आर्थिक विकास को बढ़ावा देने पर सत्र में भी भाग लेंगे। श्री मोदी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सुरक्षित, तेज और प्रभावी इस्तेमाल को सुनिश्चित करने पर आयोजित एक विशेष सत्र में भी भाग लेने का कार्यक्रम है। इसके अलावा प्रधानमंत्री यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लेन और जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्टज से भी मुलाकात करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री आज शाम फ्रांस की राजधानी पेरिस पहुंचेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि भारतीय समुदाय के लोग प्रधानमंत्री मोदी के आगमन की उत्सुकता से प्रतीक्षा कर रहे हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की नीति से लेकर सर्जिकल स्ट्राइक बालाकोट और ऑपरेशन सिंदूर जैसे निर्णायक कार्रवाई तक भारत ने स्पष्ट संदेश दिया है कि उसकी संप्रभुता से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व में भारत ने अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा संरचना में ऐतिहासिक परिवर्तन देखा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि वित्तीय वर्ष 2025-26 में भारत का वार्षिक रक्षा उत्पादन अब तक के उच्चतम स्तर 1,78,000 करोड़ रुपए पर पहुंच गया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंह ने कहा कि यह उपलब्धि पिछले वित्तीय वर्ष के 1,54,000 करोड़ रुपए के उत्पादन की तुलना में 15% से अधिक की प्रभावशाली वृद्धि है। वित्तीय वर्ष 2020-21 में इसमें 110% की वृद्धि हुई है, जब यह आंकड़ा 84,000 करोड़ रुपए से अधिक था। श्री सिंह ने कहा कि स्वदेशी रक्षा उत्पादन वित्तीय वर्ष 2013-14 के 4,746 करोड़ रुपए की तुलना में 4 गुना बढ़ा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पिछले एक दशक में भारत की रक्षा क्षमता में आत्मनिर्भरता और नवाचार, तकनीक और स्वदेशी निर्माण की सहायता से महत्वपूर्ण परिवर्तन आया है। मायगांव की एक पोस्ट में अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर साझा करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि कैसे भारत ने जल, थल और आकाश में उन्नत स्वदेशी तकनीकों के बल पर अपनी रक्षा क्षमता को मजबूत किया है। उन्होंने कहा कि इससे पिछले 12 वर्ष में भारत के रक्षा क्षेत्र में हुए बदलाव की झलक स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ती है। इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि भारत एक प्रमुख इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण केंद्र के रूप में उभरा है। अब भारत दुनिया का 6वां सबसे बड़ा इलेक्ट्रॉनिक निर्यातक देश है। पुणे में एक अमरीकी कंपनी की विनिर्माण इकाई के उद्घाटन समारोह में श्री वैष्णव ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत एक वैश्विक इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण केंद्र के रूप में विकसित हुआ है। कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष अभिषेक देव ने बताया कि भारत का कृषि संबंधित खाद्य उत्पादों से जुड़ा निर्यात बढ़कर 500 उत्पादों तक पहुंच गया है। भारत ने यह उपलब्धि अमेरिका, ब्राजील, चीन और यूरोपीय संघ जैसे प्रमुख वैश्विक निर्यातकों से प्रतिस्पर्धा के बावजूद हासिल किया है। श्री देव ने कहा कि पिछले वर्ष कृषि निर्यात 53 अरब डॉलर मूल्य का था। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा है कि बंजर भूमि को दोबारा उपजाऊ बनाने की सरकार की कोशिश न सिर्फ प्रकृति की सेवा है, बल्कि मानवता के भविष्य को सुरक्षित करने का संकल्प है। नई दिल्ली में मरुस्थलीकरण और सूखे से निपटने के लिए वैश्विक दिवस के अवसर पर आयोजित एक कार्यक्रम में श्री यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2,60,00,000 हेक्टेयर भूमि को उपजाऊ बनाने का लक्ष्य रखा है। मणिपुर में सुरक्षा बलों ने राज्य भर में उग्रवाद विरोधी अभियान तेज कर दिया है। अधिकारियों के अनुसार अलग अलग अभियानों में 3 उग्रवादियों को गिरफ्तार किया गया और 26 अवैध बंकर नष्ट किए गए। गिरफ्तार किए गए उग्रवादियों की पहचान प्रतिबंधित पीपल्स लिबरेशन आर्मी और उसके राजनीतिक विंग्स रिवोल्यूशनरी पीपल फ्रंट के सक्रिय सदस्य के रूप में हुई है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने आगामी नीट परीक्षा को देखते हुए विद्यार्थियों और अभिभावकों से घोटालेबाजों से सावधान रहने का अनुरोध किया है। एनटीए के महानिदेशक अभिषेक सिंह ने कहा है कि हम यह सुनिश्चित करेंगे कि परीक्षा बिना किसी गड़बड़ी के संपन्न हो। इस बीच उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि उम्मीदवारों को प्रवेश पत्र दिखाने पर राज्य सड़क परिवहन निगम की बसों के किराए में 50% की छूट दी जाए।

अभी आप सुन रहे थे बारी बारी से समाचार। पहले आपने सुना हिंदी एवं अंग्रेजी में समाचार, और अभी आप सुन रहे थे नोक्ते श्रोताओं का समाचार। आपको बता दें कि नोक्ते श्रोताओं के कार्यक्रम को आगे सुनने के लिए आप हमारे मीडियम वेब चैनल 444.4 मीटर यानी 675 किलोहर्ट्ज तथा डीआरएम 666 किलोहर्ट्ज पर अभी जुड़ सकते हैं और पूरे कार्यक्रम का आनंद ले सकते हैं।

0: गीत संगीत
1: ज्ञान और मनोरंजन के गुलदस्ते से
0: प्यार भरे अल्फाजों में
1: दिल से दिल की बात
0: बस आपके नाम
1: ये है आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 मेगाहर्ट्ज़।

जी हाँ श्रोता मित्र, आप जुड़े हुए हैं आकाशवाणी ईटानगर के अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज पर, जहां होती है दिल से दिल की बात। और इस सफर में आपके साथ है आपकी अपनी रेडियो साथी नीलम। जी हाँ श्रोता मित्र, आपको बता दें कि इस वक्त हमारे स्टूडियो की घड़ी के अनुसार शाम के 5:05 हो रहे हैं। और इसी के साथ ही लीजिए, अब प्रस्तुत है हमारा अगला कार्यक्रम इवनिंग ट्राइब। श्रोता मित्रों, आज भी हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ चुनिंदे गाने और साथ ही एक प्रेरणादायक प्यारी सी कहानी। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत में हम आपको सुनवा रहे हैं पाठशाला फिल्म का ये बेहद ही खूबसूरत गीत लकी अली की आवाज में।

जी श्रोता मित्रों, आप आनंद ले रहे थे पाठशाला फिल्म का एक खूबसूरत गीत लकी अली की आवाज में। तो चलिए इस गीत के साथ ही अब हम आपको सुनवाना चाहेंगे ये छोटी सी प्रेरणादायक कहानी। एक बार राजा कृष्णदेव ने जी हां तेनाली राम से बोले कि मैंने स्वर्ग की बहुत तारीफ सुनी है, मैं स्वर्ग देखना चाहता हूं, क्या तुम मुझे स्वर्ग दिखा सकते हो? तेनाली राम बोला, हां महाराज, मैं आपको स्वर्ग दिखा सकता हूं, लेकिन मुझे खुद उसकी खोज करना है। कृपया मुझे कुछ समय दे ताकि मैं स्वर्ग की खोज कर सकूं। महाराज ने कहा, ठीक है, तुम जल्दी से स्वर्ग की खोज कर लो। कुछ दिनों के बाद तेनाली राम ने राजा कृष्णदेव से कहा कि महाराज, मैंने स्वर्ग को ढूंढ लिया है, आप वहां मेरे साथ चल सकते हैं, लेकिन आपको वहां पैदल ही चलना होगा, वहां आप घोड़ा लेकर नहीं जा सकते। राजा कृष्णदेव तैयार हो गए और अगले दिन सुबह तेनाली राम और दो सैनिकों के साथ स्वर्ग जाने के लिए निकल पड़े। श्रोता मित्रों, अब राजा को स्वर्ग कहाँ मिलता है वो हम आपको बताएंगे, लेकिन इस गीत के बाद।

तो चलिए दोस्तों, कहानी को आगे बढ़ाते हैं। राजा और तेनाली राम दो सैनिकों के साथ स्वर्ग को निकल जाते हैं। उन दिनों बहुत गर्मी पड़ रही थी और राजा कृष्णदेव को पैदल चलने की बिल्कुल भी आदत नहीं थी। वे थोड़ी देर चलने के बाद थक गए। उन्होंने पास के ही एक कुएं का पानी पिया और पेड़ से तोड़कर मीठे और स्वादिष्ट फल खाए। थके होने के कारण एक छायादार पेड़ के नीचे बैठकर आराम करने लगे। तेनालीराम ने राजा कृष्णदेव से पूछा, महाराज आपको कैसा लग रहा है? राजा कृष्णदेव खुश होते हुए बोले, तेनालीराम मुझे इतना आनंद तो कभी नहीं आया। तेनालीराम बोले, महाराज यही स्वर्ग है। स्वर्ग एक कल्पना है, लेकिन जहां हमें सच्ची खुशी और आनंद मिले उसे ही स्वर्ग कहते हैं। राजा कृष्णदेव तेनालीराम के इस जवाब से बेहद खुश हुए। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये प्रेरणा मिलती है कि जहां हमें सच्ची खुशी और आनंद मिले वही जगह हमारे लिए सबसे अच्छी होती है और वही हमारे लिए स्वर्ग होती है। इसलिए हमें बनावटी और दिखावटी खुशियों की जगह सच्ची खुशियां ढूंढना चाहिए। तो श्रोता मित्रों, ये थी हमारी बेहद ही प्यारी और प्रेरणादायक कहानी। उम्मीद है कि आप सभी को पसंद आए होंगे। तो चलिए इसी के साथ ही कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम में ये अगला गीत।

श्रोता मित्र, आप सुन रहे थे आजा नचले फिल्म का एक खूबसूरत गीत राहत फतेह अली खान की आवाज में। आपको फिर से एक बार बता दें कि आप जुड़े हुए हैं अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज पर और आप आनंद ले रहे हैं कार्यक्रम इवनिंग ट्रैप का। तो चलिए इसी के साथ ही आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम का ये आखिरी गीत।

श्रोता मित्रों, आप सुन रहे थे ये बेहद ही खूबसूरत गीत मोहित चौहान की आवाज में, दिल तो बच्चा है जी फिल्म से। और हाँ, आपको बता दें कि इस गीत के साथ ही कार्यक्रम इवनिंग ट्राइब यहीं पर समाप्त होता है। श्रोता मित्रों, हिंदी फिल्मी गीतों का ये सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। हमारे अगले कार्यक्रम शाम की महफिल में, तो आप बने रहें अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़ पर, कहीं जाएगा मत।

0: गीत संगीत
1: ज्ञान और मनोरंजन के गुलदस्ते से
0: प्यार भरे अल्फाजों में
1: दिल से दिल की बात
0: बस आपके नाम
1: ये है आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 मेगाहर्ट्ज़।

जी हाँ श्रोता मित्रों, इस वक्त हमारे स्टूडियो की घड़ी में शाम के 5:30 हो रहे हैं और इसी के साथ ही लीजिए प्रस्तुत है हमारा अगला कार्यक्रम शाम की महफिल। आप सभी सुनने वालों का कार्यक्रम में तहे दिल से स्वागत है। जी हाँ, शाम की महफिल एक खूबसूरत संगीत की यात्रा। दोस्तों, दिन और रात के मिलन की ये संध्या बेला अपने आप में बहुत ही खास है। दिन भर मजदूरी करने वालों के लिए आराम का समय होता है, घर के बुलावे का संकेत होता है, परिवार के साथ वक्त बिताने का अच्छा अवसर होता है, किसी खास के साथ यादगार भरे पल गुजारने का बेहतरीन वक्त होता है। तो चलिए, आपकी शाम को और भी बेहतरीन बनाने के लिए हम लेकर आए हैं कुछ चुनिंदे गाने। उम्मीद है आप सभी को पसंद आएंगे और आप कार्यक्रम के आखिरी समय तक हमारे साथ बने रहेंगे। तो चलिए, कार्यक्रम की शुरुआत में हम आपको सुनवा रहे हैं बर्फी फिल्म का ये बेहद ही खूबसूरत गीत।

देखा जमाना सारा भरम है, इश्क इबादत इश्क करम है, मेरा ठिकाना तेरी ही दहलीज है। जी हाँ श्रोता मित्र, इस खूबसूरत गीत को आप सुन रहे थे अरिजीत सिंह और शिल्पा राव की आवाजों में। जी हाँ, लाल सिंह चड्ढा फिल्म से। एक बार फिर से आपको बता दें कि आप जुड़े हुए हैं अरुण एफ एम 103.1 मेगाहर्ट्ज पर और आप आनंद ले रहे हैं कार्यक्रम शाम की महफिल का। श्रोता मित्रों, चले कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और आपको सुनवाते हैं गदर 2 फिल्म का ये खूबसूरत गीत, चलते रहे इश्क में।

0: फिल्म खामोशी द म्यूजिकल अलका याग्निक और हरिहरन की आवाज में इस मधुर गीत के साथ ही कार्यक्रम शाम की महफिल। जी हां, शाम की महफिल एक खूबसूरत संगीत यात्रा कार्यक्रम यहीं पर संपन्न होता है। उम्मीद है कार्यक्रम में सुनवाए गए गीतों का आप सभी ने आनंद लिए होंगे। श्रोता मित्र, इसी के साथ ही शाम की महफिल कार्यक्रम यहीं पर संपन्न होता है।
1: दिल तक

0: गीत संगीत
1: ज्ञान और मनोरंजन के गुलदस्ते से
0: प्यार भरे अल्फाजों में
1: दिल से दिल की बात
0: बस आपके नाम
1: ये है आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 मेगाहर्ट्ज़।

श्रोता मित्र, इस वक्त हमारे स्टूडियो की घड़ी में शाम के ठीक 6 बज रहे हैं और इसी के साथ ही लीजिए प्रस्तुत है हमारा विशेष कार्यक्रम, जिसके तहत आज आप सुन पाएंगे अरुणाचल प्रदेश का लोक नृत्य गीत मिरीना गामे और उनके साथियों की आवाजों में।

Sí, ya.

Lagu ruga pada ne.

अभी आप सुन रहे थे विशेष कार्यक्रम जिसके तहत आपने सुना अरुणाचल प्रदेश का लोक नृत्य गीत। श्रोता मित्र, इसी के साथ ही आपको बताना चाहेंगे कि आगे कुछ ही क्षणों में आप सुन पाएंगे आदि श्रोताओं का समाचार। कृपया कुछ क्षण प्रतीक्षा करें।

अभी आप सुन रहे थे आदि श्रोताओं का समाचार। आपको बता दें कि आदि श्रोताओं के कार्यक्रम को आगे सुनने के लिए आप हमारे मीडियम वेब चैनल 444.4 मीटर यानी 675 किलो हर्ट्स तथा DRM 666 किलो हर्ट्स पर अभी जुड़ सकते हैं।

0: संगीत,
1: ज्ञान और मनोरंजन के गुलदस्ते से
0: प्यार भरे अल्फाजों में
1: दिल से दिल की बात,
0: बस आपके नाम।
1: ये है आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 मेगाहर्ट्ज़।

जी हाँ श्रोता मित्र, आप जुड़े हुए हैं अरुण FM 103.1 MHz पर, जहां होती है दिल से दिल की बात। और इस सफर में आपके साथ है आपके अपनी रेडियो साथी नीलम। आपको बता दें कि जी हाँ श्रोता मित्रों, इस वक्त हमारे स्टूडियो की घड़ी में शाम के 6:36 हो रहे हैं। और इसी के साथ ही लीजिए प्रस्तुत है हमारा अगला कार्यक्रम, आज के कलाकार। श्रोता मित्रों, भारत कलाकारों का देश माना जाता है। बांसुरी जो कि एक ऐसा लोक वाद्य है जिसकी धुन सभी का मन मोह लेती है, भारतीय संगीतकारों की श्रृंखला में एक नाम ऐसे बांसुरी वादक का आता है जिन्होंने विश्व मंच पर कई बार अपने मुरली की तान से भारतीय संगीत को गौरवान्वित किया है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं पद्मश्री रोनू मजुमदार की। श्रोता मित्रों, उनके बारे में आज हम करेंगे ढेर सारी बातें। इससे पहले आपको सुनवाने जा रहे हैं ये बेहद ही खूबसूरत गीत जमीन आसमान फिल्म से।

श्रोता मित्रों, लता मंगेशकर की आवाज में आप सुन रहे थे बेहद ही खूबसूरत गीत जमीन आसमान फिल्म से। आपको बताना चाहेंगे कि इस गीत की शुरुआत में रोनू मजुमदार ने ही बांसुरी की मधुर धुन बजाई थी। वैसे तो कई संगीतकारों ने भारतीय शास्त्रीय संगीत के नाम को रोशन करने में अपना सर्वश्रेष्ठ योगदान दिया है, लेकिन बांसुरी वादक रोनू मजुमदार ने हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के कैनवास पर अपनी बांसुरी की धुन से कुछ अलग ही रंग बिखेरे हैं। जी हां, रोनू मजुमदार ने पंडित रवि शंकर जैसे प्रसिद्ध संगीतकारों के साथ एल्बम में अपना सहयोग दिया और 30 से अधिक ऑडियो रिलीज के साथ उन्हें 1999 में संगीत और संस्कृति के प्रति अपनी प्रतिबद्धता के लिए आदित्य विक्रम बिरला पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इसी के साथ ही 2001 में सहारा इंडिया परिवार के द्वारा इन्हें आजीवन उपलब्धि पुरस्कार यानी कि लाइफ टाइम अचीवमेंट से भी सम्मानित किया गया। 2014 में इन्हें संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। और हाँ श्रोता मित्रों, 26 जनवरी 2025 को इन्हें भारत सरकार ने प्रतिष्ठित पद्मश्री से भी सम्मानित किया है। और इसके साथ ही श्रोता मित्रों, आपको ये भी बताना चाहेंगे कि उनका जन्म बनारस के सारनाथ में 22 जून 1963 को हुआ था। यहां इनका बचपन भी बीता। इनके पिता एक होम्योपैथी चिकित्सक और अपने समय के प्रसिद्ध ऑयल पेंटर आर्टिस्ट थे। इनके पिता को बांसुरी बजाने का शौक था। बांसुरी के साथ अपनी यात्रा को जी हां याद करते हुए उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा कि जब वे 6 साल के थे तब लड़कपन में आकर उन्होंने अपने पिता की बांसुरी खो दी। इसके दंड स्वरूप पिताजी ने उन्हें 6 घंटे तक बांसुरी बजाने का अभ्यास करने को कहा। बस यहीं से बांसुरी की धुन के साथ जी हां उनके तार जुड़ गए। यही वजह है कि रोनू मजुमदार आज भी अपने पिता को पहला गुरु मानते हैं। तो चलिए इसी के साथ ही आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम में अगला गीत।

इजाजत फिल्म का ये बेहद ही उम्दा गीत आशा भोसले की आवाज में। जी हाँ श्रोता मित्र, आप सुन रहे थे। और आपको ये भी बता दें कि इस गीत में भी पंडित रोनू मजुमदार ने बांसुरी की धुन बजाई है। और इसी के साथ ही ये भी बता दें कि इस गीत के लिए आशा भोसले को राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। जी हाँ श्रोता मित्र, आप बने हुए हैं अरुण एफ एम 103.1 मेगाहर्ट्ज पर और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आज के कलाकार। कार्यक्रम के तहत आज हम बात कर रहे हैं, जी हाँ, बांसुरी वादक पंडित रोनू मजुमदार की। श्रोता मित्र, आपको बता दें कि उनके शिक्षा के बारे में बात करें तो अपने पिता के बाद उन्होंने कई महान संगीतकारों से शिक्षा ली, जिसमें भारत रत्न पंडित रविशंकर, पंडित विजय राघव राव जैसे नाम शामिल हैं। स्वरों की शिक्षा उन्होंने पंडित लक्ष्मण प्रसाद जयपुर वाले से अर्जित की है। संगीत के इन महान धुरंधरों के साथ इन्होंने कई महफिलों में चार चांद लगाए और विश्व स्तर पर भारतीय संगीत का नाम रोशन किया। जी हाँ, बॉलीवुड में इनका सफर। अपनी युवा अवस्था में रोनू मजुमदार अपने पिता के साथ मुंबई आ गए थे। इन्होंने अपने करियर की शुरुआत रेडियो के साथ की, जहां आकाशवाणी पर ये नंबर वन आर्टिस्ट चुने गए। रोनू मजुमदार ने बताया कि रेडियो के माध्यम से ही इनको बॉलीवुड में एंट्री मिली और सबसे पहला मौका इनको आरडी बर्मन ने कुमार गौरव की पहले फिल्म लव स्टोरी में, तेरी याद आ रही है, गाने में दिया था। इसके बाद आरडी के साथ मिलकर इन्होंने 300 से अधिक गानों में अपनी बांसुरी की धुन दी है। इनका सबसे लोकप्रिय संगीत फिल्म 1942 ए लव स्टोरी के गीत कुछ ना कहो का है। तो चलिए इसी के साथ ही आपको सुनवा रहे हैं कुछ ना कहो गीत।

रोनू मजुमदार को भारत सरकार द्वारा 2014 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला। इनके नाम से एक ग्रैमी नॉमिनेशन भी है, जिसकी जूरी में महान संतूर वादक शिव कुमार शर्मा मौजूद थे। श्रोता मित्र, आपको बता दें कि युवाओं को संगीत और संस्कृति से जोड़ने के लिए टाइम्स म्यूजिक ने एक एल्बम निकाली थी, जिसका नाम डीजे नशा था। इसमें रोनू मजुमदार ने फ्लूट फैंटेसी नाम से एक सोलो एल्बम भी किया था, जो वेस्टर्न म्यूजिक पर आधारित था। इसके 50, जी हां, लाख से अधिक कैसेट 90 के दौर में बाजार में बिके थे, और आज भी इसकी धुनें सीधा दिल में उतर जाती हैं। युवाओं को संगीत और संस्कृति से, जी हाँ, जैसा कि आपको बताया गया है। और इसी के साथ ही श्रोता मित्रों, आपको ये भी बता दें कि युवाओं के लिए रोनू मजुमदार ने ये भी कहा है कि संगीत और इसके वाद्यों को बजाना एक साधना है। अपनी फ्लूट फाउंडेशन के बारे में उन्होंने बताया कि उनके पास बहुत से युवा आते हैं बांसुरी सीखने के लिए, लेकिन कुछ ही विद्यार्थियों के अंदर सीखने की प्रतिभा होती है। आर्टिस्ट को सफलता से नहीं, अपनी कला और उसके अभ्यास से प्यार करना चाहिए, और ये एक फाइन आर्ट है जिसके लिए समय और धैर्य लगता है। ये उनका कहना है हमारे युवाओं के लिए। तो चलिए, इसी के साथ ही कार्यक्रम में आगे हम आपको सुनवा रहे हैं ये अगला बेहद ही खूबसूरत गीत लव स्टोरी फिल्म से।

लव स्टोरी फिल्म का ये बेहद ही खूबसूरत गीत अमित कुमार की आवाज में और साथ ही पंडित रोनू मजुमदार की बांसुरी की मधुर धुन। श्रोत मित्रों, इसके साथ ही जी हाँ, बांसुरी वादक पंडित रोनू मजुमदार पर आधारित कार्यक्रम आज के कलाकार यहीं पर संपन्न होता है। आपको बता दें कि आगे कुछ ही पलों में आप सुन पाएंगे निशेष श्रोताओं का समाचार।

श्रोता मित्र, आप सुन रहे थे निशी श्रोताओं का समाचार। आपको बता दें कि निशी श्रोताओं के कार्यक्रम को आगे जारी रखने के लिए आप हमारे मीडियम वेब चैनल 444.4 मीटर यानी 675 किलोहर्ट्ज तथा DRM 666 किलोहर्ट्ज पर अभी जुड़ सकते हैं।

0: गीत संगीत
1: ज्ञान और मनोरंजन के गुलदस्ते से
0: प्यार भरे अल्फाजों में
1: दिल से दिल की बात
0: बस आपके नाम
1: ये है आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 मेगा

जी हाँ श्रोता मित्रों, ये आकाशवाणी ईटानगर का अरुण एफ एम 103.1 मेगाहर्ट्ज़ से, जहां होती है दिल से दिल की बात। और आपको बता दें कि इस वक्त शाम के 7:06 हो रहे हैं और हिंदी फिल्मी गीतों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। श्रोता मित्रों, आपको बता दें कि आगे आप सुन पाएंगे 1968 में रिलीज हुई फिल्म झुक गया आसमान के गाने। जी हाँ श्रोता मित्र, आपको बता दें कि इस फिल्म में संगीत दिया है इस फिल्म के संगीतकार हैं शंकर जयकिशन और गीत के बोल लिखे हैं हसरत जयपुरी ने। तो चलिए 60 के दशक के संगीत के सफर पर आगे बढ़ते हैं और आपको सुनवाते हैं झुक गया आसमां फिल्म के गाने।

0: गीत संगीत
1: ज्ञान और मनोरंजन के गुलदस्ते से
0: प्यार भरे अल्फाजों में
1: दिल से दिल की बात
0: बस आपके नाम
1: ये है आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 मेगाहर्ट्ज़।

जी हाँ श्रोता मित्र, आप जुड़े हुए हैं अरुण एफएम 103.1 MHz पर, और आप आनंद ले रहे हैं हिंदी फिल्मी गीतों पर आधारित कार्यक्रम का। आपको बता दें कि कार्यक्रम के तहत आप सुन रहे हैं झुक गया आसमां फिल्म के कुछ चुनिंदे गाने। लीजिए प्रस्तुत है इस फिल्म का अगला गीत।

झुक गया आसमान फिल्म के सदाबहार गीतों का आप आनंद ले रहे थे। इस आखिरी गीत को आप अपनी मधुर आवाज से सजाया है लता मंगेशकर ने। श्रोता मित्रों, आपको बता दें कि आप जी हाँ आनंद ले रहे थे फिल्म झुक गया आसमान फिल्म के चुनिंदे गीतों का। आपको बताना चाहेंगे कि हिंदी फिल्म में गीतों का सफर आगे भी जारी रहेगा। श्रोता मित्रों, आपको ये भी बताना चाहेंगे कि आगे आपको सुनवाएंगे इस साल रिलीज हुई फिल्मों के गाने। फिलहाल हम ले रहे हैं एक छोटा सा ब्रेक।

0: गीत संगीत
1: ज्ञान और मनोरंजन के गुलदस्ते से
0: प्यार भरे अल्फाजों में
1: दिल से दिल की बात
0: बस आपके नाम
1: ये है आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 मेगाहर्ट्ज़।

0: गीत संगीत
1: ज्ञान और मनोरंजन के गुलदस्ते से
0: प्यार भरे अल्फाजों में
1: दिल से दिल की बात
0: बस आपके नाम
1: ये है आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 मेगाहर्ट्ज़।

श्रोता मित्रों, आप सुन रहे थे चांद मेरा दिल फिल्म का ये टाइटल सॉन्ग, जिसे लिखा है अमिताभ भट्टाचार्य ने और संगीत से सजाया है सचिन जिगर ने और आवाज दी है फाहिम अब्दुल्ला ने। आपको बता दें कि जी हां, धर्मा प्रोडक्शन के तले बनी फिल्म चांद मेरा दिल, जिसे डायरेक्ट किया है विवेक सोनी ने और फिल्माया गया है आनन्या पांडे और लक्ष्य लाल वानी के ऊपर, और ये फिल्म रिलीज हुई थी इसी साल 22 मई को। तो चलिए श्रोता मित्रों, इसी के साथ ही आपको सुनवाना चाहेंगे चांद मेरा दिल फिल्म का एक और गीत।

श्रोता मित्रों, आप सुन रहे थे इम्तियाज अली की फिल्म मैं वापस आऊंगा का ये खूबसूरत गीत नीलांजना घोष और वेदांग रैना की आवाज में। आपको बता दें कि इस फिल्म का संगीत AR रहमान द्वारा तैयार किया गया है और इस फिल्म के मुख्य कलाकार हैं नसीरुद्दीन शाह, दलजीत दोसांझ, वेदांग रैना, शर्वरी। और आपको ये भी बता दें कि ये फिल्म जी हाँ पिछले हफ्ते 12 जून को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी। जी हाँ श्रोता मित्रों, आप जुड़े हुए हैं अरुण FM 103.1 MHz पर और आप सुन रहे हैं हिंदी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम। तो चलिए श्रोता मित्रों, फिलहाल हम कार्यक्रम में ले रहे हैं एक अंतराल।

श्रोता मित्रों, आप सुन रहे थे विशाल भारद्वाज की फिल्म और रोमियो फिल्म का ये गीत। जी हाँ, अरिजीत सिंह की आवाज में गुलजार के लिखे गीत और संगीत से सजाया है विशाल भारद्वाज ने ही। आपको बता दें कि ये फिल्म भी इसी साल फरवरी को रिलीज हुई थी और इस फिल्म के मुख्य कलाकार हैं शाहिद कपूर और तृप्ति डिमरी। तो चलिए श्रोता मित्रों, इसी के साथ ही आपको सुनवाना चाहेंगे इस फिल्म का एक और गीत और कार्यक्रम का आखिरी गीत।

श्रोता मित्रों, और रोमियो फिल्म के इस गीत के साथ ही हिंदी फिल्मी गीतों पर आधारित कार्यक्रम यहीं पर संपन्न होता है।

0: गीत संगीत
1: ज्ञान और मनोरंजन के गुलदस्ते से
0: प्यार भरे अल्फाजों में
1: दिल से दिल की बात
0: बस आपके नाम
1: ये है आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 मेगाहर्ट्ज़।

0: जी हाँ श्रोता मित्र, ये आकाशवाणी ईटानगर का रून एफ एम 103.1 मेगाहर्ट्ज़ है और इस वक्त रात के ठीक 8 बज रहे हैं और इसी के साथ ही लीजिए प्रस्तुत है अरुणाचल प्रदेश की विविधता को दर्शाता कार्यक्रम अपना गीत।
1: उम्मीद, नई आशा और अटूट विश्वास के साथ आप सभी श्रोताओं का स्वागत करती हूं। मैं आपके रेडियो साथी गैर अत आकाशवाणी ईटानगर के अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज पर। उम्मीद आप सभी की सलामती की, आशा कुछ और पल आपकी जिंदगी में खुशियां भरने की और विश्वास हर दम आपके साथ जुड़ने का। जी हाँ श्रोताओं, जब भी कार्यक्रम अपना गीत लेकर आती हूँ ये जरूर सोचती हूँ कि आप अपने ही प्रदेश के गीतों को सुनकर कुछ अपनी पुरानी यादें ताजा करते होंगे तो कुछ आज के संगीत पर धुन मिलाते होंगे। और इसी आशा के साथ लीजिए पेश है कार्यक्रम का पहला गीत, मेडिको मेंजो की आवाज में ईदू गीत।

सोकेप क्री द्वारा गाए गीत आप सुन रहे थे मिजू मिश्मी भाषा में। श्रोता सुन रहे हैं कार्यक्रम अपना गीत, जो आप तक पहुंच रहे हैं अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ज पर। और कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आइए सुनते हैं अगला गीत निशी भाषा में, और आवाजें हैं तोको तेनी और यामी लाजी की।

दोस्तों, हमारी सोच, हमारी चाहत और कल्पना की सीमा ही क्या होती है। सोचो, अगर हम एक तितली होती तो क्या करते? बेशक खिले हुए फूलों की क्यारियों में जाते, उनके रंगों के साथ खेलते, रस का आनंद लेते। और इनसे भी मजेदार बात यह है कि ये जो चाहत है ना, अक्सर कई लोगों की एक सी होती है। जी हाँ, चाहतों की पूरी लिस्ट के साथ पेश है अगला गीत, गालो भाषा में झुमकेन रालेन की आवाज में।

श्रोता कापांग सोसिया द्वारा गाए इसी नोक्ते गीत के साथ कार्यक्रम अपना गीत का आज का ये अंक यहीं पर समाप्त होता है। हमें आशा है कि हमारे श्रोता मित्रों को कार्यक्रम पसंद आए होंगे और इसी आशा के साथ आपकी सेवा में फिर हाजिर होंगे एक और नए अंक के साथ। तब तक के लिए अपने रेडियो साथी गैर को दीजिए इजाजत और सुनते रहिए आकाशवाणी ईटानगर के अरुण FM 103.1 MHz। नमस्कार।

श्रोता मित्रों, आप आनंद ले रहे थे अरुणाचल प्रदेश के संगीत पर आधारित कार्यक्रम अपना गीत का। जी हां, आप जुड़े हुए हैं अरुण FM 103.1 MHz पर, जहां होती है दिल से दिल की बात।

0: गीत संगीत
1: ज्ञान और मनोरंजन के गुलदस्ते से
0: प्यार भरे अल्फाजों में
1: दिल से दिल की बात
0: बस आपके नाम
1: ये है आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 मेगाहर्ट्ज़।

0: गीत संगीत
1: ज्ञान और मनोरंजन के गुलदस्ते से
0: प्यार भरे अल्फाजों में
1: दिल से दिल की बात
0: बस आपके नाम
1: ये है आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 मेगाहर्ट्ज़।

0: जी हाँ श्रोता मित्रों, इस वक्त हमारे स्टूडियो की घड़ी के अनुसार रात के 8:30 हो रहे हैं और इसी के साथ ही आगे आप सुन पाएंगे युवावाणी कार्यक्रम।
1: आकाशवाणी का ईटानगर केंद्र है और आप सुन रहे हैं युवाओं का प्रेरणादायक कार्यक्रम युवावाणी। मैं हूं आपके साथी फ्लोरेंस शर्मा और आप सभी युवा दोस्तों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, आज के कार्यक्रम का विषय है हाउ फिल्टर्स रुइन सेल्फ वर्थ। इस महत्वपूर्ण वार्ता को प्रस्तुत करेंगे दोर्जी ड्रेमा। आज का संदेश युवाओं को बताएगा कि सोशल मीडिया फिल्टर्स किस तरह हमारे असली रूप, आत्मविश्वास और स्वयं के मूल्य को प्रभावित कर रहे हैं। तो बिना किसी विलंब के आइए सुनते हैं दोर्जी ड्रेमा का संदेश। इन अ वर्ल्ड वेयर एवरीवन इज ट्राइंग टू लुक परफेक्ट, ऑथेंटिसिटी हैज बिकम द रेयरेस्ट फिल्टर ऑफ ऑल। हैव यू एवर कॉट योरसेल्फ टेकिंग 20 पिक्चर्स जस्ट टू पिक वन एंड देन स्टिल एडिंग फिल्टर्स बिफोर पोस्टिंग इट? यू आर नॉट अलोन। We live in a generation where filters have quietly become our mirrors, showing us not who we are, but who we think we should be. At first, filters

0: श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे कुछ हिंदी गाने। वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। मैं आपकी रेडियो साथी फ्लोरेंस शर्मा आपसे विदा लेती हूँ, यही वादे के साथ कि अगले हफ्ते बुधवार ठीक इसी समय फिर मुलाकात होगी आपसे। स्टे ट्यून्ड विद आकाशवाणी ईटानगर। थैंक यू।
1: श्रोता मित्रों, आप आनंद ले रहे थे कार्यक्रम युवा वाणी का। आपको बता दें कि इस वक्त रात के ठीक 9 बज रहे हैं। जी हां, आप जुड़े हुए हैं अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज पर। और इसी के साथ ही आप सभी का कार्यक्रम भूले बिसरे गीत में तह दिल से स्वागत है। जी हाँ श्रोता मित्रों, कार्यक्रम भूले बिसरे गीत उन बेहतरीन गीतों का खजाना है जो शायद हमारी यादों में धुंधला पड़ गया है। चलिए बीते दिनों के दौड़ के गीतों को एक बार फिर अपनी यादों में तरोताजा करते हैं। आइए आनंद लेते हैं उन भूले बिसरे गीतों का। दीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का पहला गीत खानदान फिल्म से आशा भोसले और मोहम्मद रफी की युगल आवाजों में।

तुमसे तुम्हारे कान में करे।

जी हाँ श्रोता मित्रों, आप आनंद ले रहे हैं भूले बिसरे गीतों का। और इस गीत को आप सुन रहे थे लव मैरिज फिल्म से गीता दत्त की आवाज में। तो चलिए श्रोता मित्रों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और आपको सुनवाते हैं एक और गीत।

वो जुदा क्या हुए, जिंदगी खो गई, शमा जलती रही, रोशनी खो गई, बहुत कोशिशें की मगर दिल ना बहला, कहीं साज छोड़े कहीं गीत गाए। जी हाँ श्रोता मित्र, आप सुन रहे थे लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाजों में पारस मणि। जी हाँ, पारस मणि फिल्म का ये उम्दा गीत। श्रोता मित्रों, चलिए आपको सुनवाते हैं इस फिल्म का, यानी कि पारस मणि फिल्म का अगला गीत, लता मंगेशकर और मुकेश की आवाजों में।

0: गीत संगीत
1: ज्ञान और मनोरंजन के गुलदस्ते से
0: प्यार भरे अल्फाजों में
1: दिल से दिल की बात
0: बस आपके नाम
1: ये है आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 मेगाहर्ट्ज़।

श्रोता मित्रों, आप सभी का ब्रेक के बाद कार्यक्रम भूले बिस्तरे गीत में पुनः स्वागत है। श्रोता मित्र, चले कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आपको सुनवाते हैं अमरदीप फिल्म का ये गीत मोहम्मद रफी और आशा भोसले की आवाजों में।

आप सुन रहे थे लीडर फिल्म का ये गीत मोहम्मद रफी की आवाज में। श्रोता मित्रों, इस गीत के साथ ही कार्यक्रम भूले बिसरे गीत के समापन पर अब हम आ पहुंचे हैं और आप सभी से अलविदा कहने का समय भी हो चला है। श्रोता मित्रों, इस तीसरे प्रसारण सभा के कार्यक्रमों को आप तक पहुंचाने में हमारे साथ बने हुए थे प्रसारण निष्पादिका गैर अत्ते तथा तकनीकी अभियंता ताना आतुम और साथ ही अन्य सहकर्मी। जाने से पहले ये भी बता दें कि आगे कुछ ही पलों में आप सुन पाएंगे दिल्ली केंद्र से एफएम गोल्ड के कार्यक्रमों को, तो आप जुड़े रहे अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज पर और आपसे होगी फिर मुलाकात कल प्रातः 5:48 पर हमारी पहली प्रसारण सभा के तहत। तब तक के लिए अपने रेडियो साथी नीलम को दीजिए अनुमति। आप रखें अपना और अपनों का ख्याल। नमस्कार, शुभरात्रि।

0: भारत की ऐतिहासिक उपलब्धि पर परिचर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं रक्षा विश्लेषक लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी और वरिष्ठ पत्रकार अजय बनर्जी। कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं आनंद श्रीवास्तव।
1: भारत की सुरक्षा केवल उसकी सीमाओं पर तैनात सैनिकों के साहस से ही सुनिश्चित नहीं होती, बल्कि उस शक्ति से भी होती है जो उन्हें आधुनिक हथियार, अत्याधुनिक तकनीक और मजबूत रक्षा उपकरण उपलब्ध कराती है। एक समय था जब भारत दुनिया के सबसे बड़े रक्षा आयातकों में गिना जाता था। लड़ाकू विमान हो, मिसाइलें हो, युद्धपोत हो या फिर आधुनिक हथियार प्रणालियां, हमारी निर्भरता विदेशी देशों पर काफी अधिक थी। लेकिन बीते कुछ वर्षों में तस्वीर तेजी से बदली है। अब भारत का वार्षिक रक्षा उत्पादन 1.78 लाख करोड़ रुपए के रिकॉर्ड स्तर तक पहुंच गया है। वर्ष 2020-21 की तुलना में इसमें 110% से अधिक की वृद्धि हुई है। रक्षा निर्यात भी बढ़कर 38,424 करोड़ रुपए के ऐतिहासिक स्तर तक पहुंच गया है। निजी क्षेत्र की बढ़ती भागीदारी, रक्षा गलियारों का विकास, मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत जैसी पहलें इस परिवर्तन की आधारशिला बनी है। भारत किस तरह रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बन रहा है, रक्षा उत्पादन में ये वृद्धि हमारी सामरिक शक्ति को किस तरह मजबूत कर रही है, वैश्विक रक्षा बाजार में भारत की क्या नई पहचान बनी है और आने वाले वर्षों में इस क्षेत्र की चुनौतियां और संभावनाएं क्या हैं, इन पर चर्चा के लिए आज हमारे साथ बेहद खास मेहमान उपस्थित हैं। हमारे साथ स्टूडियो में हैं वरिष्ठ पत्रकार अजय बनर्जी और हमारे साथ जुड़ रहे हैं लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड संजय कुलकर्णी और रक्षा विशेषज्ञ भी आप हैं। आप दोनों का कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है।
2: धन्यवाद।
3: धन्यवाद। जय हिंद।

0: जनरल आपसे शुरू करते हैं और आपसे ये समझने की कोशिश करते हैं कि वित्त वर्ष 2020-21 की तुलना में आज जो हमारा रक्षा उत्पादन है उसमें तकरीबन 110% की वृद्धि हुई है। एक सैन्य रणनीतिकार के नजरिए से हम बात करें तो इस भारी बढ़ोतरी ने भारतीय सशस्त्र बलों यानी आर्मी, नेवी और एयरफोर्स की ऑपरेशनल तैयारियों को किस तरह बूस्ट किया है और साथ ही साथ विदेशी कल पुर्जों पर हमारी निर्भरता को कितना कम किया है?
1: मैं कहूंगा कि इसमें कोई शक नहीं, शक्ति में शांति और उसी में मनोबल ऊंचा होता है आर्म फोर्सेस का। पहले जैसे आपने बिल्कुल ठीक कहा, तकरीबन 65% पूरा का पूरा हम लोग आयात करते थे और अब तकरीबन 65% हम भारत में खुद बनाते हैं। तो ये जो पहल है हमारी आत्मनिर्भरता की, मेक इन इंडिया की, इससे बहुत फर्क पड़ा है। जो डिफेंस कॉरिडोर का सेटअप होना, प्राइवेट पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स का एक साथ मिलजुल करके काम करना,

0: वे क्लिफ्टन को नुकसान पहुंचाया और यही कारण था कि अबाउट 88 आवर सिर्फ 100 घंटे से भी कम में पाकिस्तान ने घुटने टेके। ये क्या दर्शाता है कि पाकिस्तान को पूरा का पूरा चीन का पूरा रक्षक तुर्की है उसको मदद करा, पाकिस्तान अपना खुद करा और उसको पेनिट्रेट करना। ये तब हो सकता है जब आप आत्मनिर्भर हो, जब आप दूसरों के ऊपर निर्भर ना करें, मेक इन इंडिया हो। आपको मालूम है आपकी चीज क्या है, आपने अपने एरिया के मुताबिक स्पेसिफिक इससे बनाया है। तो ये जो एक है ये बहुत बड़ी उपलब्धि है कि अपना डोमेस्टिक प्रोडक्शन जो है, जैसे आपने बिल्कुल ठीक कहा, 1.78 लाख करोड़ ऑल टाइम हाई। और जैसे आप कह रहे हैं कि ऑफकोर्स 2000 मतलब पिछले साल से तो आपको 15.6%, वो उससे पहले अगर देखा जाए तो 110% से भी ज्यादा। और वापस अगर हम 2013-14 की ओर देखेंगे तो उस वक्त तो हार्डली डिफेंस प्रोडक्शन यूज टू बी समथिंग लाइक 43,000 करोड़, और अब इट इज प्राइवेट प्रोडक्शन हमारा तकरीबन 43,000 करोड़ है। प्राइवेट प्रोडक्शन यू कैन वेल इमेजिन 1,78,000 करोड़ में प्राइवेट का contribution है, that's almost about the same as what was the total defense production of 2014.
1: अजय जी, आपसे समझने की कोशिश करते हैं, आप लंबे समय से भारत के विदेश और रक्षा नीतियों को कवर करते रहे हैं। एक वो भी दौर था जब हम दुनिया के शीर्ष हथियार खरीदारों में से एक थे, और आज यानी 25-26 की हम बात करें तो हमने 38,424 करोड़ का रक्षा निर्यात किया है। आयातक से निर्यातक बनने के इस सफर में वैश्विक पटल और जियो पॉलिटिक्स के नजरिए से भारत का कद कितना बढ़ा हुआ आप देख रहे हैं?
2: देखिए, पहले मैं एक बिंदु बताऊंगा एक्सपोर्ट इंपोर्ट की, जो कुलकर्णी सर भी बात कर रहे थे। निजी सेक्टर ने तकरीबन 24% किया है इसे 1,78,000 करोड़ में से। निजी सेक्टर की ग्रोथ सबसे इम्पोर्टेंट है, जब तक वो ग्रो नहीं करेगा तब तक हम देश में एक्सपोर्ट या जिसे कहते हैं नहीं कर पाएंगे। जैसे आप बात कर रहे हैं कि वो एक्सपोर्ट का कैसे सफर आया है, वो सफर ग्रेजुअल होता है, हमेशा ग्रेजुअल होता है। पिछले 10-12 साल में स्पीड बहुत पकड़ी है, बहुत ज्यादा स्पीड पकड़ी है। हम कोई 400-500 करोड़ की एक्सपोर्ट करा करते थे 10-12 साल पहले, और अब कोई 38,000 करोड़ की, जैसे आपने नंबर दिया उतनी कर रहे हैं। अब ये एक्सपोर्ट जो है ये कई ऐसे मुल्कों को हो रही है जो तुर्की के आसपास है, पहले तो ग्रीस है, आर्मेनिया है, बिना का रॉकेट एक्सपोर्ट कर रहे हैं। कुछ और एक्सपोर्ट हो रहा है जो कि चीन के साथ, जिनकी तालमेल नहीं बैठ रही उन मुल्कों के साथ, जैसे वियतनाम को, इंडोनेशिया को, फिलीपींस को, ब्रह्मोस की हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं। बहुत सारी ऐसे मुल्क है जिनके लिए हम पार्ट्स बना के एक्सपोर्ट करते हैं, इंक्लूडिंग यूएस से, उनकी कंपनी को भी हम पार्ट सप्लाई करते हैं, हमारी कई निजी कंपनियां हैं यहाँ। आगे आने वाले दिनों में हमने अभी बहुत स्पीड पकड़नी है। आपने एक बात बोली कि हम सबसे बड़े इंपोर्टर हुआ करते थे, इंपोर्टर अभी हम रहेंगे 10-12-15 साल और रहेंगे, जब तक हमारे पास एयरक्राफ्ट का इंजन, युद्धपोत यानी वॉरशिप का इंजन और स्टेल्थ टेक्नोलॉजीज, और सबसे बड़ी बात जैसे S-400 मिसाइल मारक क्षमता, जैसे हमारा एक कुशा प्रोजेक्ट चल रहा है उसको कंप्लीट होने को 5-7 साल लगेंगे। जब तक वो ऐसे प्रोजेक्ट हमारे कंप्लीट नहीं हो जाएंगे हम इंपोर्टर रहेंगे। ये एक सच्चाई है, हमारे देश को मान के चलना चाहिए। हर देश सारा कुछ नहीं बनाता, हम एक बहुत बड़े इस टाइम एक्सपोर्टर की तरह उभर रहे हैं, पहली बात। दूसरी बात, हमारा प्रोडक्शन जो है वो बढ़ गया, मगर ये अभी 10-15 साल और लगेंगे हमको टोटली सेल्फ डिपेंडेंट होने के लिए, और अभी स्पीड पकड़ने की बहुत जरूरत है। ये मैं आपके श्रोताओं को एक ऑनेस्टली और बिल्कुल सच्ची बात बता दूं कि स्पीड पकड़ने की बहुत जरूरत है।
1: जी हाँ, कुलकर्णी सर, अगर इसी चर्चा को आगे बढ़ाएं, जैसा कि बैनर्जी जी कह रहे हैं कि निजी क्षेत्र की जो भागीदारी बढ़ी है उससे एक नई उम्मीद की किरण रक्षा क्षेत्र में जगी है, आपको क्या लगता है कि रक्षा उत्पादन में सरकारी और निजी क्षेत्र के बीच जो ये सिनर्जी है यानी जो तालमेल है, इसे आप कैसे देखते हैं, और क्या ये मॉडल आने वाले समय में हमें फाइटर जेट्स और सबमरीन जैसे बड़े प्लेटफॉर्म में पूरी तरह सेल्फ डिपेंडेंट बना सकता है?
0: देखिए, फाइटर एयरक्राफ्ट को देखते हुए अभी हम देखते हैं टाटा ने फर्स्ट एयरक्राफ्ट अपना फ्लाई करने की कोशिश की नागपुर से, और जैसे बैनर्जी साहब बोल रहे हैं बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बहुत वक्त लगता है, ये क्रिटिकल टेक्नोलॉजी है, इतनी आसान नहीं है और कोई दूसरा देश आपको देता भी नहीं है। लेकिन जिस प्रकार से पहल की है प्राइवेट इंडस्ट्रीज ने, कम से कम पब्लिक सेक्टर के साथ मिलकर के DRDO ने अपनी फैसिलिटीज उनको मुहैया कराई है, उसको देखते हुए जरूर मुझे लगता है बहुत जरूरी है। और खासकर डिफेंस के अंदर प्राइवेट सेक्टर को एक बात का आभास होना चाहिए, फौज है उनसे खरीदती रहेगी, क्योंकि अगर आप उनको बोलेगा 100 हवाई जहाज बना करके उसके बाद फैक्ट्री बंद हो जाए, वैसे नहीं हो सकता है। 100 के बाद वो प्रोडक्शन चल, उसके लिए एक्सपोर्ट बहुत जरूरी है। जब आप बनाते हैं जस्ट नॉट फॉर मेक इन इंडिया बट मेक फॉर द वर्ल्ड, मतलब फैक्ट्री चलती रहनी चाहिए। ये नहीं कि 40 पीस आर्टिलरी के दे दिए उसके बाद फैक्ट्री क्या करेगी, आपके लिए बनाए उसके बाद क्या होगा। तो ये जो सस्टेनेंस है ऑफ प्रोडक्शन, सस्टेनेंस ऑफ एंड मॉडिफिकेशन, उसके ऊपर इनोवेशन, तो ये जो प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज आई हैं, और खासकर मैं कहूंगा टाटा की हो, महिंद्रा हो, एलएन की हो, कल्याणी भारत फोर्ज हो, अशोक लेलैंड हो, अडानी अल्फा डिजाइन, ये जितने भी आ रहे हैं धीरे धीरे करके, मुझे लगता है बहुत जबरदस्त। और जैसे हम लोग डिस्कस कर रहे थे अभी भी 178,000 करोड़ का है, इसमें तकरीबन मैं कहूंगा ऑलमोस्ट 25% प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्री, विच इज ह्यूज कॉन्ट्रीब्यूशन, इसको बढ़ना है। और ये तभी हो सकता है जब सिनर्जी हो, जिसकी आप बात कर रहे हैं। सिनर्जी इज अ मस्ट, यानी कि जो बनाने वाला है मैन्युफैक्चरर, जो इस्तेमाल करने वाला है यूजर, ये दोनों का जो तालमेल है ये होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि यूजर भी कुछ ऐसी चीज मांगे जो बनने में तकलीफ हो और मैन्युफैक्चरर भी ऐसी चीज बनाए जो यूजर को ना पसंद हो। तो दोनों का तालमेल बहुत जरूरी, नंबर वन। नंबर टू, जब चीज हिंदुस्तान के अंदर बनती है तो उसके ऊपर जो मॉडिफिकेशन करते हैं वो उसको बहुत आसानी होती है। अभी आपने मार्क वन बनाया है, आपने हमने बनाया है हिंदुस्तान के अंदर, तो उसको मार्क टू बनाने में दिक्कत नहीं आती है, उसके मेंटेनेंस सप्लाईज पे उसको पाने में दिक्कत नहीं होती है। तो ये जो सिनर्जी है बहुत जरूरी है, जिसमें डीआरडीओ की भी काफी हद तक उसका सपोर्ट उनको मिलना चाहिए। हमारे पास बड़े बड़े जमीनें हैं, ग्राउंड्स हैं, जहाँ पे आप फायरिंग कर सकते हैं, यकीन कर सकते हैं आपका मटेरियल कैसे काम कर रहा है। तो ये जो सारा कुछ मिलकर के अकेडमियां है, आईआईटीज है, वहां के बच्चे बड़े होशियार है, वो आगे आते हैं, स्टार्टअप्स है वो आगे आते हैं। तो आई थिंक गवर्नमेंट का जो सपोर्ट है आत्मनिर्भर के लिए, मेक इन इंडिया के लिए, वो बहुत जरूरी है। और डिफेंस कॉरिडोर जिस तरीके से बने हैं, इससे आप देखते हैं कि इनोवेशन को एक स्फूर्ति मिलती है, और इस इनोवेशन के कारण आप देखते हैं कि एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है। आप भारत के अंदर ये अपने हम बिहार, जैसे आप कह रहे हैं, वन ऑफ द वर्ल्ड लार्जेस्ट इम्पोर्टर, और हो सकता है कई एक साल तक हमें ऐसे रहना पड़े, क्योंकि आफ्टर ऑल इट्स नॉट सो इजी। ये बहुत जो डिफेंस टेक्नोलॉजी होती है, इट इज वेरी वेरी नीच टेक्नोलॉजी, और उसको पाना आसान नहीं, चाहे वो सीकर्स हो या स्टेल्थ हो। और आप देख रहे हैं इस प्रकार से हमने अमेरिका से तेजस के लिए अपने इंजन मांगे, और कहा दो साल हो गए, दो इंजन नहीं आ पाए, दो साल हो गए। क्यों? उनके भरोसा, उन्होंने कहा नहीं, हमने तो फैक्ट्री में बंद कर दी है, हम आपके लिए अभी बनाना शुरू करेंगे। इसलिए अगर आत्मनिर्भर होंगे तो हमारा फिर एमसीए प्रोजेक्ट जो है वो कभी भी नहीं रुकेगा। तो बहुत जरूरी है ये डिफेंस में पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, प्राइवेट सेक्टर प्लस गवर्नमेंट, जो बीच बीच में रुकावटें आती है ब्यूरोक्रेटिक, वो नहीं, वो सरकार ने हटा दिए, तो इससे जो है बहुत फर्क पड़ा है।
1: बनर्जी साहब, अगर 2013-14 की बात करें तो हमारा स्वदेशी रक्षा उत्पादन 43,786 करोड़ रुपए का था, जो अब 4 गुना के करीब बढ़ गया है। बतौर पत्रकार, नीतिगत स्तर पर वो कौन कौन से डिसीजन आप मानते हैं जो गेम चेंजर साबित हुए हैं रक्षा क्षेत्र में उत्पादन के नजरिए से?
2: पहली बात तो ये कि भारत सरकार ने कोई 5-6 साल पहले एक लिस्ट निकाली रक्षा मंत्रालय के लिए कि ये आइटम जो है अब हम इम्पोर्ट नहीं करेंगे, आपने इंडिया में ही बनाने। वो एक लंबी चौड़ी लिस्ट है, वो लिस्ट अपडेट होती रहती है, उसको इंडिजिनाइजेशन लिस्ट बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल रबर की सील है, कोई हेलीकॉप्टर में लगती है, हर कुछ घंटे की फ्लाइट के बाद बदली जाती है, वो इंपोर्ट नहीं होगी। कुछ व्हीकल, आर्टिलरी गन इंपोर्ट नहीं होगी, अब हम खुद बनाते हैं आर्टिलरी गन, ठीक है। पनडुब्बी, एक हैरानी वाली बात यह है कि हमने एक सबसे बड़ा विमान वाहक युद्धपोत बनाया है INS विक्रांत, जो हमने खुद बनाया है। नेवी के साथ अब 95-98% जो शिप

0: इंडिया में बनते हैं। हमने एक परमाणु ऊर्जित पनडुब्बी यानी SSBN जिसे बोला जाता है नेवल पार्लेंस में, INS अरिहंत और उसके तीन आगे की श्रेणियां बना चुके हैं। ये सब हम कर चुके हैं। जो नीति चेंज हुई वो ये चेंज हुई, छोटी छोटी चीजें जो हम इम्पोर्ट कर रहे थे वो इम्पोर्ट नहीं होंगी। मेटलर्जिकल पार्ट्स, मूविंग पार्ट्स, हर हेलीकॉप्टर में, प्लेन में टैंक है उसमें या व्हीकल है उसमें मूविंग पार्ट होता है, वो इम्पोर्ट नहीं होगा। तो वो जो पॉलिसी आई वो फिर इंडियन इंडस्ट्री ने उसको टेक ओवर कर लिया। जैसे मिसाल के तौर पर आज सुखोई और MiG-29 लड़ाकू विमान है भारतीय वायुसेना के पास, तकरीबन सुखोई 270 और MiG-29 कोई 60 के आसपास है, और MiG-29 नेवी के पास भी है करीब 40-45, तो 100 वो है और 370 विमान है हमारे पास जो कि रूसी ओरिजिन के हैं। उनके स्पेयर पार्ट्स तो अब आ नहीं सकते रशिया से, वहां तो जंग छिड़ी हुई है। तो वो अब इंडियन एयरफोर्स यहां पर लोकल इंडस्ट्री के साथ बात करके उसको यहीं पर बनाने का प्रयास कर रही है। भाई डाईकास्ट तो है ही ना, पार्ट तो आपके पास है, उसको बनाइए स्पेयर पार्ट को। दूसरी चीज, ड्रोन यानी UAV बहुत एक महंगी टेक्नोलॉजी है, जटिल प्रणाली है, उसको आप इंपोर्ट करने की बजाय अब एयरफोर्स फिर से प्राइवेट सेक्टर के साथ हाथ मिला के कह रही है कि तुम बनाओ हमारे साथ मिलकर। एक और जटिल प्रणाली है जिसे बोलते हैं 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट, उसको हमने नाम दे रखा है एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट। अब रक्षा मंत्रालय ने पहली बार निजी क्षेत्र को वो विमान के एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के जो कि 5वीं श्रेणी का लड़ाकू विमान है उसको बनाने के लिए निजी क्षेत्र में तीन कंपनियों को, तीन कंसोर्टियम्स को इनवाइट करा है कि आप अपनी बिड दीजिए। ये पहली बार है कि निजी कंपनियों को बुलाया गया। अगेन निजी कंपनियों को फिर से एक बोला गया है सबमरीन्स में भी, जैसे मैंने आपको बताया कि परमाणु ऊर्जित पनडुब्बी हम बनाते हैं, मगर परंपरागत पनडुब्बी जिसे बोलते हैं हम डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन, वो पनडुब्बी अभी हम एक जर्मनी से बनने की तैयारी है, एक फ्रांस से पहले बन रही थी, अब उसको बनाने की भी तैयारी है इंडिया में। हेलीकॉप्टर अभी तक हम ALH बना रहे थे, एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर बना रहे थे, और अब हम अपने आप एक बड़ा हेलीकॉप्टर Mi-17 एक थोड़ा बड़ा हेलीकॉप्टर होता है वो हम रूस से इम्पोर्ट कर रहे थे, अब उसकी जगह एक नया हेलीकॉप्टर आ रहा है उसे बोलते हैं इंडियन मल्टी रोल हेलीकॉप्टर। उसके हेलीकॉप्टर की दो श्रेणियां होंगी, एक नेवी यूज करेगी और एयरफोर्स यूज करेगी। जैसे मैं आपको पहले भी बता रहा था 8-10 साल हमें पेस मेंटेन रखनी पड़ेगी तभी हम आत्मनिर्भर होंगे।
1: कुलकर्णी जी आपसे थोड़ा और समझना चाहेंगे, जैसा कि ड्रोन तकनीक का बैनर्जी साहब ने जिक्र किया, रक्षा मंत्री भी कहते हैं कि नीतिगत समर्थन और नई पहल बहुत जरूरी है, इनोवेशन, डिफेंस स्टार्टअप्स भी काफी अहम भूमिका निभा रहे हैं। जो भविष्य की क्रिटिकल टेक्नोलॉजी है जैसे AI और ड्रोन, उस क्षेत्र में हम दुनिया के तमाम देशों की अगर तुलना करें तो कहां खड़े हैं और उस दिशा में क्या प्रगति हो रही है?
2: देखिए ड्रोन वॉरफेयर अब समथिंग हम लोगों को यकीनन उसके साथ अडॉप्ट होना है। हम देख रहे हैं ड्रोन वॉरफेयर किस प्रकार से जबरदस्त इस्तेमाल किया गया यूक्रेन और रूस की लड़ाई में, किस प्रकार से इस्तेमाल हो रहा है ईरान के युद्ध में। तो ड्रोन वॉरफेयर तो बहुत ही जरूरी है, हमने खुद देखा ऑपरेशन सिंदूर में हमने किस प्रकार से एंटी ड्रोन पे पूरी कार्रवाई करके पाकिस्तान के जो ड्रोन है उनको गिराया, और वो भी ड्रोन जो पाकिस्तान को तुर्की ने दे वो गिराया, जो वो ड्रोन जो चीन ने पाकिस्तान को दिए वो गिराया। तो ये जो टेक्नोलॉजी है बहुत जरूरी है, हम धीरे धीरे करके, ये नहीं कहूंगा कि वी आर एट द बेस्ट, बट डेफिनेटली नाउ वी आर गेटिंग एट दैट लेवल, और इसको भारत के अंदर बनाना बहुत जरूरी है। अगर हम इम्पोर्ट ही करते रहेंगे तो बहुत महंगा होगा ये। तो इस दिन आज की तारीख में अगर हम देखें स्टार्टअप देखें, जरूर चाहे स्टार्टअप्स के पास आपके पास चाहे नेविगेशनल डिस्टिक हो या उसके सीकर्स हो या उसके पास फोटोग्राफिक डिस्टिक, बहुत कुछ साधन है जो स्टार्टअप्स के पास है वो इस्तेमाल करें। तो बहुत जरूरी है इनोवेशन, बहुत जरूरी है ये स्टार्टअप्स को एनकरेज करना, बहुत जरूरी है रोबस्ट R&D, बहुत जरूरी है प्राइवेट सेक्टर का पार्टिसिपेशन और यूजर का उसके साथ इंटरफेस। यूजर को भी बहुत जरूरी है कि अपने आप को दूर ना रखे कि जब मेरे को सामान ला करके दिखाओगे तब मैं देखूंगा तब बताऊंगा ना जी अब तो फेल हो गया ना। यूजर एंड मैन्युफैक्चरर का इंटरफेस चलता रहना चाहिए, क्योंकि आफ्टरऑल अगर हम ये हमारे लिए है, इस आत्मनिर्भरता पर भारत के लिए है, और जब बढ़िया बनेगा और सस्ता और अच्छा बनेगा तो ऑटोमेटिकली विश्व में उसकी मांग बढ़ेगी। कहा जाता है कि भारत के अंदर जब कोई भी सामान टेस्ट होता है तो हमारे जो टेस्टिंग फैसिलिटीज है और टेस्टिंग जो पैरामीटर्स है जिसको GSQR हम लोग सेट करते हैं बहुत ऊंचे है, और वो उस बात का जब एक दफा पास हो जाता है तो पूरा विश्व इंतजार कर रहा होता है, चाहे वो गाड़ी हो, चाहे वो स्मॉल आर्म्स हो, चाहे वो बुलेट प्रूफ जैकेट्स हो, चाहे वो एयरक्राफ्ट हो, उनको लगता है अगर भारत ने लिया है मतलब ये बहुत अच्छा है, क्योंकि भारत सच में उसको इस्तेमाल करता है और जब इंट्रोड्यूस करता है बहुत कुछ देखभाल करने के बात करता है, क्योंकि हमारे यहाँ पे -50 डिग्रीज भी है +50 डिग्रीज भी है, तो दोनों तरीके के है हमारे में, तरह तरह के टेरेन कंडीशंस है, तो ये सबको देखते हुए बहुत जरूरी है कि हम लोग जब भारत के अंदर करते हैं। इसलिए रक्षा मंत्री ने बिल्कुल ठीक कहा, इनोवेशन बहुत जरूरी है, अडेप्टेबिलिटी बहुत जरूरी है. जो चीज जरूरी नहीं कि जो चीज यूरोप में सक्सेस कर गई वो भारत में होगी. भारत का रिक्वायरमेंट अलग है, तो उसको मद्देनजर रखते हुए बहुत जरूरी है कि हम लोग ड्रोन को मद्देनजर रखते हुए, यूएवी को मद्देनजर रखते हुए, न्यू वॉरफेयर ऑब्जेक्ट, हर एक चीज के साथ मिलकर के अपना बनाना, अपने तरीके से उसको यकीन करना कि इसको कोई हैक ना कर सके, इसको कोई लड़ाई के मैदान में कोई भी हैकिंग नहीं होगी या जाम ना कर सके. तो ये सबको देखते हुए मुझे लगता है कि बहुत जरूरी है कि हम भारत के अंदर बनाए और इसको पिछली ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जो काफी थ्रस्ट दिया जा रहा है क्योंकि डिफेंस कॉरिडोर बने हैं, उसमें बहुत जरूरी है. या अगर ये हो जाता है तो कोई दिक्कत नहीं. अगर हम ग्लोबल साउथ का नेतृत्व कर रहे हैं, ग्लोबल साउथ ने हमारे को एक तरीके से रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है नेतृत्व रखी, तो बहुत जरूरी है कि डिफेंस सेक्टर में भी हम लोगों ने उसी आले दर्जे पे अपना प्रोडक्शन होना चाहिए, जिससे कि हमें गर्व होना चाहिए और हमको भी लगना चाहिए कि हमारे शक्ति से हमारा मनोबल ऊंचा हुआ.
1: बनर्जी साहब, जो आकाशवाणी के श्रोता दूर दराज के गांव से इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं, हमने बड़े बड़े आंकड़ों पर चर्चा की, वो ये जानना चाहते हैं जब भारत जैसे देश का रक्षा उत्पादन इस तरीके से बढ़ता है तो एक सामान्य नागरिक को और देश की अर्थव्यवस्था पर किस तरह का प्रभाव पड़ता है.
0: इसके कई सारे आंसर हैं. पहला आंसर ये है कि जब हम अपने आप ही बनाएंगे तो हमारे को सबसे पहली चीज फैक्ट्रियां खड़ी होंगी. फैक्ट्रियां खड़ी होंगी तो एक कारीगर चाहिए, और मैं लेबर की बात नहीं कर रहा हूँ, कारीगर की बात कर रहा हूँ. दूसरी चीज, जब वो फैक्ट्री खड़ी होगी वहां 100-500 आदमी काम करेंगे, उनके आसपास हाउसिंग की जरूरत पड़ेगी, रॉ मटेरियल आएगा, जॉब्स आएंगी. और सबसे बड़ी बात, अभी तो डीजी सेक्टर ने शुरू नहीं किया, जब शुरू करेंगे अच्छी तरीके से तो R&D यानी रिसर्च एंड डेवलपमेंट में पैसे लगाने पड़ेंगे. जब पैसे लगेंगे तो जो इंजीनियर हैं, R&D के इंजीनियर हैं, लड़के पढ़ लिख के आए हैं IIT से और इंजीनियरिंग कॉलेज से, उनको मौका मिलेगा. मेटलर्जिकल इंजीनियर, कंस्ट्रक्शन इंजीनियर, क्वालिटी इंजीनियर, इन सब की जरूरत पड़ेगी. जब आप ग्रो करेंगे तो, जब आपके एक्सपोर्ट का ऑर्डर आएगा तो इन सब की जरूरत पड़ेगी. निचले स्तर पर कारीगर, मैं लेबर नहीं कह रहा हूं बिकॉज ये एक बड़ा स्पेशलाइज टास्क है, दिस इज नॉट लेबर, वेरी स्पेशलाइज टास्क. तो आपको ट्रेंड मैन पावर चाहिए, और वो ट्रेंड मैन पावर हमारी स्किल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री या जो ITI है वो सिखाते हैं, वहां से लड़के लड़कियां चाहिए, ट्रेंड मैन पावर. एक जैसे छोटी सी आपको उदाहरण देता हूं, एक जहाज में अगर एक रिवेट भी लगाना होता है वो एक स्किल्ड जॉब है, हाईली स्किल्ड जॉब है. कई सालों के परीक्षण के बाद वो लगता है एक रिवेट भी. जब आप जहाज में जाते हैं, एक सिविल एयरक्राफ्ट में जाते हैं, आपको उसके विंग पर रिवेट लगे देखेंगे जो उसको होल्ड करते हैं, बड़ा हाईली स्किल्ड जॉब है. और सोच लीजिए मिलिट्री में कितना हाईली स्किल्ड जॉब होगा वो. जब लड़ाकू विमान की स्पीड ही 2000 किलोमीटर है तो उसको एक डिफरेंट किस्म की फ्रिक्शन चाहिए, डिफरेंट किस्म का मेंटेनेंस चाहिए, मेंटेनेंस इंजीनियर चाहिए आपको. MRO हब यानी मेंटेनेंस रिपेयर ओवरऑल हब बनेंगे. साफरान एक इंजन मेकर है फ्रांस का, उन्होंने यहां बनाया. साफरान के इंजन रफाल में यूज होते हैं, तो आपको इंजीनियर चाहिए उनके. तो ये जॉब मार्केट पे इंपैक्ट करता है सब कुछ, छोटे शहरों के लड़के लड़कियों को भी इंपैक्ट करता है जो कि पढ़ लिख के आगे जाएंगे.
1: जी हाँ कुलकर्णी जी, अगर इस चर्चा को थोड़ा आगे बढ़ाएं, हमने भारत की उपलब्धियों की चर्चा की, थोड़ी चर्चा चुनौतियों की भी कर लेते हैं कि रक्षा निर्माण के क्षेत्र में अभी किस तरह की चुनौतियां हैं भारत के सामने और उसको डील करने के लिए सरकार किस तरह का काम कर रही है.
2: अपने को मालूम है कि हमारे दुश्मन कौन है, इसमें तो ये सोचने की तो बात नहीं, और पैदा हो सकते हैं दुश्मन. कोई भी जो इस तरह के देश है वो भारत को उन्नति तरक्की करते हुए देखना पसंद नहीं करते. सबको लगता है कि भारत गरीब रहे, तो भारत अपने बलबूते पे एक लोकतंत्र होने के नाते जिस प्रकार से धीरे धीरे करके उस पायदान पे जा पहुंचा है, वहां पर अगर अपने को रहना है उससे और आगे बढ़ना है. अगर नंबर वन GDP वाला अगर $22 trillion का है, नंबर टू तकरीबन 17-18 trillion का है, तो नंबर तीन 4-5 पे नहीं रुक सकता है, उसको भी कम से कम 14-15 trillion की इकोनॉमी बननी पड़ेगी. तो अपने को बहुत आगे जाना है, उसमें बहुत जरूरी है कि हम सबने मिलकर के सोचते हैं ये हमारा देश है और उस देश को यकीनन जो भी है शक्ति में शांति है. हम जो इतना सब कुछ बनाते हैं लड़ने के लिए नहीं बनाते, यकीन करने के लिए. लड़ाई अगर होगी तो दूसरे जो भी लड़ेगा उसको मालूम है कि तो मधुमक्खी के चक्कर में उंगली मारी है और अब वो मधुमक्खियां जो है भिन्नभा गई, उनको नुकसान होगा. ये वो बात है और इसके लिए हम लोगों को सतर्कता और सतर्कता बरतनी बहुत जरूरी है हर एक फील्ड में. और ये कह रहे टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी पहले 10-15 साल में एक बार चेंज होती थी. अपने पास हथियार जो पुराने होते थे वो चलते, अब नहीं, टेक्नोलॉजी 3-5 साल में बदली हो जाती है. आज देखिएगा कौन सा है वो स्टेज वन स्टेज टू स्टेज थ्री फटाफट कौन सा जनरेशन है 1 2 3 4 5 अब हवाई जहाज देखिए आपने रफेल इम्पोर्ट किया 4.5 जनरेशन फिफ्थ सिक्स्थ जनरेशन स्टिल तो आप देखते हैं किस तरीके से लगातार जो टेक्नोलॉजी है वो एडवांस होती है जो जब आप भारत के अंदर हम

आते हैं, हम आत्मनिर्भर होते हैं तो हम उसको अपग्रेड करने की काबिलियत भी रखते हैं। हमें मालूम है हमने इसको किस तरीके से बनाया है, इसको किस पे, तो चाहे वो इंडियन ओशन में हमें शिप्स इस्तेमाल करनी है, सबमरीन इस्तेमाल करनी है, डिस्ट्रॉयर्स इस्तेमाल करने हैं, एयरक्राफ्ट कैरियर बनाने हैं, अंडमान निकोबार में आपने बहुत बड़ा सेटअप करना है, चाहे अपने एयरक्राफ्ट हैं, चाहे अपने यूएवी हैं, चाहे अपने ड्रोन वॉरफेयर हैं, चाहे अपने लाइट टैंक्स हैं, चाहे अपने आर्टिलरी पीसेस हैं, चाहे अपने स्मॉल आर्म्स हैं, या अपना बुलेट प्रूफ जैकेट्स हैं, हेलमेट्स हैं, जूते हैं, हाई ऑल्टीट्यूड का इक्विपमेंट है, हाई ऑल्टीट्यूड का क्लोथिंग है, सब कुछ भारत के अंदर बनना है। और ऐसा बनना है कि हर एक भारत के सिपाही को लगना चाहिए हाँ ये मेरे देश में बना है। और क्योंकि हम लोग एक्सरसाइजेस करते हैं विदेश में जाकर के,

0: इसके पास क्या हथियार है, वो किस तरीके से बातचीत करता है। जो मनोबल है वो आपका ऑटोमेटिकली ऊंचा होता है जब यू ट्रेन वेल, आपका इक्विपमेंट अच्छा है, आपका आपके इक्विपमेंट के ऊपर पूरा विश्वास है, तो आपको मालूम है कि जीत मेरी होगी, इसमें कोई शक नहीं है कि जीत मेरी होगी, मैंने मेहनत करनी है, मैंने कोशिश करनी है, सरकार ने अपनी पूरी कोशिश की, अब जिम्मेवारी मेरी है। जब ये माहौल एक पैदा हो जाता है देश के अंदर, तो आप समझ सकते हैं कि देश तरक्की के रास्ते पे है और देश जिस मुकाम पर जाना चाहिए भारत को वो मुकाम जाएगा।
1: बैनर्जी साहब, कार्यक्रम में समय कम है, आखिर में आपसे ये भी समझने की कोशिश करेंगे, थोड़ा इस पर भी प्रकाश डालिए कि जब रक्षा उत्पादन भारत का बढ़ रहा है तो इसे भारत
2: में जो विवाद है उसका पार्ट है वो उनमें से दो एटलीस्ट फिलीपींस और वियतनाम, और तीसरा इंडोनेशिया जिसको हमने बेची है, ये ब्रह्मोस, ब्रह्मोस बड़ी स्पेसिफिक ब्रह्मोस उनको बेची है कि लैंड से चलेगी टुवर्ड्स पे फर्क पड़ता है। हमारी कूटनीति पे जैसे तुर्की ने कुछ दिन पहले बोला कि भारत हमको इनसर्कल कर रहा है, आर्मीनिया को आर्म कर रहा है, साइप्रस को, ग्रीस को, जिस जिस से तुर्की की नहीं बनती उसको हम वेपन हथियार सप्लाई कर रहे हैं। अब कूटनीति में एक और बात आती है, जैसे अब आप फ्रांस के साथ आपका बहुत अच्छा टाई अप है, यूएसएसआर यानी अब सोवियत रशिया के साथ, और रशिया के साथ मॉस्को मान लीजिए बहुत अच्छा टाई अप है, विमान बनाने के लिए, इंजन बनाने के लिए, को प्रोडक्शन के लिए, टैंक्स को प्रोडक्शन के लिए, इंजन के, हमारे जो हेलीकॉप्टर उड़ते हैं उसमें साफ्रा नामक एक कंपनी है फ्रांस की, उसके इंजन लगे हुए 20 साल से, इंजन यही इंडिया में बनते हैं, रॉ मटेरियल भी यहीं से आता है, यही के लड़के लड़के उन फैक्ट्रीज में काम करते हैं। दूसरी बात, एयरबस का C295 विमान वडोदरा में फाइनल असेंबली लाइन लगी हुई, उसकी कुछ इंपोर्ट होता है, कुछ यहाँ बनता है, कुछ तो बना रहे। मेरा मानना यह है एक टारगेट हमको रख के चलना चाहिए, हमने बहुत अच्छा काम किया, 178,000 करोड़ पे आ गए, मगर एक कहावत है ना कि अभी रास्ता बहुत लंबा है, और वो रास्ता वाकई में बहुत लंबा है, और इसमें एक तो हमारे मुल्क में एक बड़ी रियलिटी आनी चाहिए कि हम हर चीज को क्रिटिसाइज करने चाहिए। 30 साल लग गए जी, 30 साल लगते हैं जहाज बनाने को, बिकॉज आपके को हाथ पकड़ के सिखाता नहीं है, कोई टीचर नहीं है वहां कि आपने ये बनाना है, देयर इज नो टीचर, आपने खुद ही गलती करनी है, गिर के फिर सीखना है, और कोई बताएगा नहीं आपको कि इंजन कैसे बनेगा, कोई नहीं बताएगा, कोई नहीं बताएगा विमान का डिजाइन कैसे और उड़ता क्यों है, कितना थ्रस्ट चाहिए इंजन को, इसमें वेपन कैसे लगेंगे, वेपन फायर कैसे होंगे, रडार ने वो वेपन कैसे उठाने हैं, जमीन से आपने जब मिसाइल चलानी है तो रडार की क्या फ्रीक्वेंसी है, रडार उसको पकड़ के मिसाइल को बताएगा ऑटोमेटिकली कि फायर कर दो, ये कुछ सिखाएगा नहीं, कोई, देयर इज नो टीचर, आप खुद ही टीचर हो, तो लेट अस नॉट क्रिटिसाइज कि 30 साल लगे, 20 साल लगे, लगते हैं इतने जी, बिल्कुल लगते हैं, तेजस को 33 साल लगे जी, बिल्कुल लगते हैं, परमाणु ऊर्जित पनडुब्बी को 30 साल लगे जी, बिल्कुल लगते हैं इतने, हम जर्मनी से या फ्रांस से या अमेरिका से कंपेयर नहीं कर सकते हैं, वो एक बहुत विकसित मुल्क है, हम अभी एक डेवलपिंग कंट्री है, तो एक तो नो क्रिटिसिज्म, दूसरा R&D, वेरी स्ट्रांग R&D, अनुसंधान जिसे बोलते हैं हिंदी में, बहुत स्ट्रांग चाहिए हमें इस टाइम, नो शॉर्टकट्स, जहां शॉर्टकट लगा वहां खेल खत्म है, नो शॉर्टकट्स, बेंचमार्क शुड बी वेरी हाई, रक्षा मंत्रालय ने बेंचमार्क बहुत हाई रखे हैं, अभी बेंचमार्क हाई रखना पड़ेगा, नो शॉर्टकट्स, R&D बहुत स्ट्रांग, ये वे फॉरवर्ड है।
1: कुलकर्णी जी, कार्यक्रम का आखिरी सवाल आपसे है, जैसा कि बैनर्जी साहब कह रहे हैं कि राह पनघट की आसान नहीं होती है लेकिन कदम तो बढ़ाने ही होते हैं, तो अगले 5 वर्षों में भारत के रक्षा उत्पादन के नजरिए से आप कहां देखते हैं?
0: मेरे को लगता है धीरे धीरे करके कम से कम अगर हम अपना इम्पोर्ट जो है 21% तक रखें और 80% हम अपना खुद बनाने की कोशिश करें, और जब हम खुद बना रहे वो बिल्कुल इंटरनेशनल स्टैंडर्ड, इसमें कोई ये नहीं कट कॉर्नर्स करो ना, ये मानना करना पड़ेगा ये हमारा है और हमने इसको आगे दर्जे का बनाना है। अगर हमने ग्लोबल साउथ का नेतृत्व करना है तो सबको लगना चाहिए, और ये तभी होगा जब हम एक बात माने कि ये हमारे लिए बनाया है, हमने इसको इस्तेमाल करना है। मुझे लगता है वी हैव अ ब्राइट फ्यूचर, अगले पास

0: समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है airnsdtalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044।
1: चर्चा का विषय है

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रशांत कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि हॉर्मुज जलडमरू मध्य को खुला रखना वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। एविया में G7 शिखर सम्मेलन से अलग अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ द्विपक्षीय बैठक में श्री मोदी ने नौवहन की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने पर बल दिया।
1: एक्सेलेंसी, हम जानते हैं कि मैरीटाइम ट्रेड की दुनिया में भारत के लाखों सीफेरर आज दुनिया के अलग अलग समुद्र में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, विश्व की प्रगति में बहुत बड़ा योगदान दे रहे हैं और मैं समझता हूं कि उनकी सुरक्षा भी उतना ही महत्वपूर्ण है। मुझे पूरा विश्वास है कि समझौते में सीफेरर की सुरक्षा भी सुनिश्चित होगी और उसको प्राथमिकता मिलेगी। एक्सेलेंसी, मैं फिर एक बार पश्चिम एशिया में शांति बहाल कराने के आपके भरसक प्रयासों का मैं बुरी बुरी प्रशंसा करता हूं।
0: श्री मोदी ने भारत और अमेरिका के बीच व्यापार वार्ता के सुचारू रूप से आगे बढ़ने पर प्रसन्नता व्यक्त की। इससे पहले प्रधानमंत्री ने जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज, यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा और यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लेन के साथ भी द्विपक्षीय बैठकें की। श्री मोदी ने जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज के साथ बैठक में पश्चिम एशिया की स्थिति और रूस यूक्रेन संघर्ष सहित क्षेत्रीय और वैश्विक घटनाक्रमों के बारे में चर्चा की। श्री मोदी ने यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लेन तथा यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा के साथ बैठक में आपसी हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर विचार विमर्श किया। पेरिस में विवाटेक 2026 में भारत मंडप का आज उद्घाटन हुआ। इस अवसर पर भारत और फ्रांस ने नवाचार, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और प्रौद्योगिकी में सहयोग करने को लेकर प्रतिबद्धता की पुष्टि की। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल तथा फ्रांस की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मंत्री एनेली हेनान्फ ने दोनों देशों के बीच बढ़ती रणनीतिक भागीदारी के बारे में जानकारी दी। प्रधानमंत्री मोदी कल सम्मेलन में शामिल होंगे। रेलवे ने कनेक्टिविटी और सुरक्षा में सुधार के लिए 1,200 करोड़ रुपए से अधिक की कई परियोजनाओं को मंजूरी दी है। रेलवे ने पूर्वी रेलवे पर सिग्नलिंग प्रणाली के आधुनिकीकरण के लिए 405 करोड़ रुपए की परियोजना को स्वीकृति दी। इसके अंतर्गत 32 स्टेशनों पर रिले आधारित इंटरलॉकिंग सिस्टम को इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग में बदला जाएगा। रेलवे ने गुजरात में 49 किलोमीटर लंबे आदिपुर भुज खंड के दोहरीकरण योजना को भी मंजूरी दी। इस पर 493 करोड़ रुपए की लागत आएगी। रेलवे ने महाराष्ट्र में 172 करोड़ रुपए की लागत से सोम ताने चिखली कॉर्ड लाइन परियोजना को स्वीकृति दे दी है। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि भारत एक प्रमुख इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण केंद्र के रूप में उभरा है। अब भारत दुनिया का छठा सबसे बड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यातक देश है। पुणे में एक अमेरिकी कंपनी की विनिर्माण इकाई के उद्घाटन समारोह में श्री वैष्णव ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत एक वैश्विक इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण केंद्र के रूप में विकसित हुआ है।
2: दो प्लांट का प्रोडक्शन स्टार्ट हो चुका है और दे हैव स्टार्टेड इन गुड फुल स्विंग। थर्ड प्लांट का इनॉग्रेशन जुलाई में होगा एंड बाय दिसंबर फोर्थ प्लांट ऑफ सेमीकंडक्टर्स विल बी फुल्ली फंक्शनल कॉमर्शियल मैन्युफैक्चरिंग इन आर कंट्री।
0: इस बीच श्री वैष्णव ने लगभग 600 करोड़ रुपए के निवेश के साथ पुणे रेलवे स्टेशन के विस्तार की घोषणा की है। सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के दूसरे चरण के अंतर्गत पात्र शहरी गरीब परिवारों के लिए 2,13,000

0: नमस्कार, आकाशवाणी से विश्व दर्पण के साथ मैं अरुण कुमार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रांस के एविया में G7 शिखर सम्मेलन से अलग अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात की। नाविकों की सुरक्षा और हॉर्मुज जल डमरू मध्य खोलने के मुद्दे पर प्रमुखता से हुई चर्चा। प्रधानमंत्री ने जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज, यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्ता और यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लेन के साथ द्विपक्षीय बैठकें की। पेरिस में विवाटेक 2026 में भारत मंडप के उद्घाटन के अवसर पर भारत और फ्रांस ने नवाचार, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और प्रौद्योगिकी सहयोग पर प्रतिबद्धता दोहराई। और अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू और कश्मीर में शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों पर हुई हिंसक कार्रवाई की निंदा की। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि होर्मुज जल डमरू मध्य को खुला रखना वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। एमईओ में G7 शिखर सम्मेलन से अलग अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ द्विपक्षीय बैठक में श्री मोदी ने नौवहन की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने पर बल दिया।
1: एक्सेलेंसी, हम जानते हैं कि मैरीटाइम ट्रेड की दुनिया में भारत के लाखों सीफेरर आज दुनिया के अलग अलग समुद्र में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, विश्व की प्रगति में बहुत बड़ा योगदान दे रहे हैं और मैं समझता हूं कि उनकी सुरक्षा भी उतना ही महत्वपूर्ण है। मुझे पूरा विश्वास है कि समझौते में सीफेरर की सुरक्षा भी सुनिश्चित होगी और उसको प्राथमिकता मिलेगी। एक्सेलेंसी, मैं फिर एक बार पश्चिम एशिया में शांति बहाल कराने के आपके भरसक प्रयासों का मैं पूरी पूरी प्रशंसा करता हूं।
0: श्री मोदी ने भारत और अमेरिका के बीच व्यापार वार्ता के सुचारू रूप से आगे बढ़ने पर प्रसन्नता व्यक्त की। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने G7 शिखर सम्मेलन के दौरान यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लायन तथा यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्ता के साथ द्विपक्षीय बैठक भी की है।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फ्रांस की एवियो शहर की दो दिन की यात्रा काफी
0: प्रधानमंत्री मोदी ने G7 शिखर सम्मेलन के एक महत्वपूर्ण कार्य सत्र में कहा कि अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं को ऐसे तंत्र विकसित करने चाहिए जो विकासशील देशों को आर्थिक मजबूती प्रदान करें। फ्रांस के एविया में आयोजित G7 शिखर सम्मेलन में नेताओं ने तीन महत्वपूर्ण घोषणा पत्र अपनाए हैं। इनमें संतुलित आर्थिक विकास, बच्चों के लिए सुरक्षित डिजिटल वातावरण और महत्वपूर्ण खनिजों की आपूर्ति सुनिश्चित करने पर बल दिया गया है। भारत ने बच्चों के लिए सुरक्षित डिजिटल माहौल संबंधी घोषणा का समर्थन किया। G7 देशों ने लिथियम, निकल और दुर्लभ खनिजों की आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत बनाने के लिए एक नए G7 संगठन की गठबंधन की स्थापना की भी घोषणा की। पेरिस में वीवाटेक 2026 में भारत मंडप का आज उद्घाटन हुआ। इस अवसर पर भारत और फ्रांस ने नवाचार, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और प्रौद्योगिकी में सहयोग करने को लेकर प्रतिबद्धता की पुष्टि की। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल तथा फ्रांस की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मंत्री एने ली हेनाम्ट ने दोनों देशों के बीच बढ़ती रणनीतिक भागीदारी के बारे में जानकारी दी। प्रधानमंत्री मोदी कल सम्मेलन में शामिल होंगे। विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। विश्व दर्पण में आपका फिर स्वागत है। भारत और नीदरलैंड्स के बीच चौथी साइबर वार्ता आज नई दिल्ली में आयोजित की गई, जिसमें दोनों पक्षों ने साइबर खतरों के बदलते परिदृश्य, राष्ट्रीय रणनीतियों और नीतियों, डेटा संरक्षण, अंतर्राष्ट्रीय साइबर अपराध और कानून प्रवर्तन पर विचार विमर्श किया। कल शुरू हुई इस वार्ता की सह अध्यक्षता विदेश मंत्रालय में साइबर कूटनीति के संयुक्त सचिव अमित ए शुक्ला और नीदरलैंड के विदेश मंत्रालय में साइबर मामलों के राजदूत अंसर्ट नूरमैन ने की। बैठक के दौरान उन्होंने संयुक्त राष्ट्र में इन मुद्दों पर हुए नवीनतम घटनाक्रमों, जिनमें साइबर अपराध के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन और AI गवर्नेंस शामिल है, के सहित बहुपक्षीय मंचों पर सहयोग पर चर्चा की। बैठक में साइबर मामलों में द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करने और संयुक्त क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण पहलों पर निरंतर सहयोग पर भी ध्यान केंद्रित किया गया। भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता CETA 15 जुलाई से लागू होगा। इसके साथ ही सामाजिक सुरक्षा से जुड़ा डबल कंट्रीब्यूशन कन्वेंशन भी प्रभावी हो जाएगा। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि इस समझौते से भारतीय निर्यात को बड़ा लाभ मिलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता CETA लागू होने के बाद दोनों देशों के बीच व्यापार और निवेश को नई गति मिलेगी। एक प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्था ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों पर पाकिस्तानी प्रशासकों की हिंसक कार्रवाई की निंदा की है। खबरों के अनुसार इस महीने की 8 से 16 तारीख के बीच हुई इस कार्रवाई में 32 से अधिक नागरिक मारे गए। एक रिपोर्ट।
3: मानवाधिकार संस्था ने कहा कि इस कार्रवाई के बाद पूरे क्षेत्र में इंटरनेट और मोबाइल नेटवर्क पूरी तरह से बंद कर दिए गए। इसके अतिरिक्त संघीय अर्धसैनिक बलों को तैनात किया गया और 100 से अधिक कार्यकर्ताओं और नेताओं को गिरफ्तार किया गया। मानवाधिकार संस्था ने पाकिस्तान की इस कार्रवाई को कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में मानवाधिकारों का उल्लंघन बताया है। साथ ही पाकिस्तानी प्रशासकों से इस हिंसक कार्रवाई को तुरंत रोकने का आह्वान किया है। घटना के स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच करने को भी कहा गया है। विश्व दर्पण के लिए समाचार कक्ष से प्रशांत कुमार।
0: ओमान में भारतीय दूतावास ने एमटी सेटेबेलो हमले में मारे गए दो भारतीय आदित्य शर्मा और शिवानंद चौरसिया के पार्थिव शरीर की स्वदेश वापसी की पुष्टि की है। हाल ही में एमटी सेटेबेलो जहाज में हुए हमले में 3 भारतीय नाविकों की मौत हो गई थी। अमेरिका और ईरान के बीच हुए शांति समझौते के बाद होर्मुज जल डमरू मध्य इस सप्ताह के अंत तक खुल जाएगा। इससे ब्रेंट क्रूड की कीमत 5.4% गिरकर $78.66 हो गई है। 28 फरवरी को ईरान पर अमेरिका और इजराइल की सैन्य कार्रवाई के बाद दुनिया भर में कच्चे तेल की कीमतों में भारी उछाल आया था और कच्चे तेल की कीमतें बढ़कर लगभग $120 प्रति बैरल तक पहुंच गई थी। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इसराइल के हिजबुल्ला पर सैन्य कार्रवाई की निंदा की है। फ्रांस में चल रहे G7 शिखर सम्मेलन के दौरान ट्रंप ने कहा कि यह संघर्ष बहुत लंबे समय से जारी है और इसमें कई लोगों की जान गई है। उन्होंने इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से सैन्य कार्रवाई में जिम्मेदारी बरतने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि ईरान के साथ शांति समझौते का प्रारूप जल्द ही जारी किया जाएगा। अमेरिका के टेक्सास के लॉरेडो में कल हुई एक विमान दुर्घटना में एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई। विमान पर 6 लोग सवार थे। आज विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस है। यह दिवस मरुस्थलीकरण और सूखे के प्रभावों से निपटने के लिए जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से मनाया जाता है। इस वर्ष का विषय है चारागाह, पहचान, सम्मान और पुनर्स्थापना। ये विषय चारागाहों के आर्थिक, पारिस्थितिकीय और सांस्कृतिक महत्व को अधिक मान्यता देने, संरक्षकों के प्रति सम्मान दिखाने और खराब हो चुके चारागाहों को पुनर्स्थापित करने के लिए अधिक निवेश की जरूरत की ओर संकेत करता है। लीड्स में महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में भारत ने नीदरलैंड्स को 210 रन का लक्ष्य दिया है। ताजा समाचार मिलने तक नीदरलैंड्स ने 17 ओवर में 8 विकेट के नुकसान पर 114 रन बना लिए हैं। स्मृति मंधाना ने 74 और शैफाली वर्मा ने 55 रन की पारी खेली। भारत ने विश्व कप के अपने पहले मुकाबले में पाकिस्तान को 64 रन से हराया था। लखनऊ में दूसरे एक दिवसीय क्रिकेट मैच में भारत ने अफगानिस्तान को 170 रन से हरा दिया है। इसके साथ ही भारत ने 3 मैचों की श्रृंखला में 2-0 की अजेय बढ़त बना ली है। भारत ने अफगानिस्तान को 403 रन का लक्ष्य दिया था। जवाब में पाकिस्तान की टीम 45वें ओवर में 232 रन पर सिमट गई। कप्तान शुभमन गिल को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। फीफा फुटबॉल विश्व कप के ग्रुप ए के मुकाबले में आज पुर्तगाल का सामना DR कांगो से होगा। ये मैच भारतीय समय अनुसार रात 10:30 से खेला जाएगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रांस के एवियो में G7 शिखर सम्मेलन से अलग अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात की। नाविकों की सुरक्षा और होर्मुज जल डमरू मध्य खोलने के मुद्दे पर प्रमुखता से हुई चर्चा। प्रधानमंत्री ने जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज, यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्ता और यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लेन के साथ द्विपक्षीय बैठकें की। पेरिस में विवाटेक 2026 में भारत मंडप के उद्घाटन के अवसर पर भारत और फ्रांस ने नवाचार, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और प्रौद्योगिकी सहयोग पर प्रतिबद्धता दोहराई और अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू और कश्मीर में शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों पर हुई हिंसक कार्रवाई की निंदा की। इसके साथ ही समाचार विश्व दर्पण का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
4: Good evening. This is Akashvani. I am Kiran Jha with the World News. The headlines. Prime Minister Narendra Modi meets US President Donald Trump on sidelines of G7 summit in Evian. Issues of seafarers' safety and opening of Strait of Hormuz figure prominently. Prime Minister also holds bilateral meetings with German Chancellor Friedrich Merz, European Council President Antonio Costa, and European Commission President Ursula von der Leyen. India and France reaffirm commitment to innovation, artificial intelligence and technology cooperation at inauguration of India Pavilion at VivaTech 2026 in Paris. And international human rights organizations strongly condemns violent crackdown on peaceful protesters in Pakistan-occupied Jammu and Kashmir. A crucial bilateral meeting was held between Prime Minister Narendra Modi and US President Donald Trump in Evian, France, on sidelines of G7 summit this evening. During the talks, issues of seafarers' safety and opening of Strait of Hormuz figured prominently. Prime Minister Modi condemned President Trump for the progress in peace efforts in West Asia. The Prime Minister said that India has consistently emphasized the importance of the freedom of navigation and all should work together to place a particular emphasis on it. Mr. Modi added that lakhs of Indian seafarers in maritime trade are on duty in different oceans of the world and their safety is of utmost importance to India.
1: Excellency, hum jante hain ki maritime trade ki duniya mein Bharat ke lakhon seafarers aaj duniya ke alag alag samundar mein apni sevaen de rahe hain, vishv ki pragati mein bahut bada yogdan de rahe hain aur main samajhta hu ki unki suraksha bhi utna hi mahatvapurna hai. Mujhe pura vishwas hai ki samjhote mein seafarer ki suraksha bhi sunishchit hogi aur usko prathamikta milegi. To main phir ek baar पश्चिम एशिया में शांति बहाल कराने के आपके भरसक प्रयासों का मैं पूरी पूरी प्रशंसा करता हूँ.
4: Earlier, Prime Minister Modi addressed a working session themed Promoting Balanced, Inclusive and Sustainable Economic Growth for the Benefit of All at the ongoing G7 summit. In his address, the Prime Minister underscored the need for international financial institutions to develop mechanisms that impart economic resilience to developing countries. Mr. Modi also participated in a working lunch focused on ensuring the safe, rapid and effective deployment of artificial intelligence. The meeting brought together G7 member countries, partner nations and the CEOs of leading AI companies to discuss the future of digital innovation. On the margins of the G7 summit in Evian, Prime Minister Modi and German Chancellor Friedrich Merz today exchanged views on regional and global developments, including the situation in West Asia and the Russian-Ukraine conflict. The two leaders also reviewed the progress in bilateral engagements and expressed satisfaction at the renewed momentum in the India-Germany strategic partnership with the successful visit of Mr. Merz to India and the conclusion of the India-EU FTA negotiations earlier this year. Mr. Merz invited the Prime Minister for the 8th India-Germany intergovernmental consultations scheduled to be held later this year in Germany. Prime Minister Modi also held a meeting with President of the European Commission, Ursula von der Leyen, and President of the European Council, Antonio Costa, on the sidelines of the summit. A correspondent covering the Prime Minister's visit has filed this report.
2: The two-day visit of Prime Minister Narendra Modi to the beautiful French city of Evian has been highly significant. During the visit, the Prime Minister participated in various G7 outreach sessions where India was invited as a partner country. This marked Prime Minister's 7th consecutive participation in the G7 summit. India's regular presence clearly demonstrates that the nation has emerged as a major global power, with the international community increasingly looking towards New Delhi for solutions to complex global challenges. During the outreach sessions, Mr. Modi strongly presented the voice of the Global South before the crucial forum. Europe. In today's session, the Prime Minister underlined the critical need for international financial institutions to develop mechanisms that impart economic resilience to developed countries. Mr. Modi also emphasized that tangible growth leads to the true inclusion and well-being of people, showcasing India's own growth story underpinned by the guiding principle of Sabka Saath, Sabka Vikas, Sabka Biswas and Sabka Prayas. Ankit Kumar, Akashwadi News, AVO France.
4: India and France have reaffirmed their commitment to innovation, artificial intelligence and technology cooperation at the inauguration of the India Pavilion at Viva Tech 2026 in Paris. Speaking at the event, Union Commerce and Industry Minister Piyush Goyal and French President for Artificial Intelligence and Digital Affairs Enle Henanoff highlighted the growing strategic partnership between the two countries. More from our correspondent.
5: Addressing innovators and startups, Piyush Goyal said the India-France partnership has been strengthened further through the India-France Year of Innovation 2026 announced by Prime Minister Narendra Modi and French President Emmanuel Macron. He said India offers key advantages for the AI era, including a young population, a large pool of STEM graduates, strong digital infrastructure and democratic governance. The minister underlined India's vision of human-centric artificial intelligence through the concept of Manav, emphasizing ethical, accountable, inclusive and trustworthy AI. He said India is prepared to become a global hub for AI talent, data centers, and advanced technology. French Minister Anne-Lou Henoff described India as a global innovation powerhouse and welcomed its role as the AI country partner at Viva Tech 2026. This is Mahesh Sopade, Akashwani News, Paris, France.
4: India and the United Kingdom today announced that the Comprehensive Economic and Trade Agreement, CETA, will enter into force on 15th of July this year. Ministry of Commerce and Industries informed that the Agreement on Social Security, also referred to as the Double Contribution Convention, DCCC, will come into effect on the same day. This is Akashwani. You are listening to World News. We bring you the top international news and updates from around the globe. The G7 leaders adopted the three key declarations amid at promoting balanced, durable and resilient growth, security, critical minerals supply chains and creating a safer digital space for miners with several partner countries extending support to the initiatives. During the G7 summit in Evian, France, the leaders issued a statement on balanced and resilient growth, stressing the need for stable energy markets, secure supply chains and reforms in global economic institutions. They emphasized the importance of restoring safe navigation through the Strait of Hormuz. French President Emmanuel Macron has described the G7 summit as a success, saying it demonstrated unity among major economies. Speaking at the conclusion of the summit, Macron said the meeting took place against an extremely difficult backdrop of a fragmented world marked by geopolitical tensions and economic challenges. A leading international human rights organization strongly condemned the violent crackdown on peace protesters in Pakistan-occupied Jammu and Kashmir by Pakistani authorities, which reportedly killed over 32 civilians between 8th to 16th of this month. The International Human Rights Foundation said that the crackdown was followed by the complete suspension of internet and mobile networks across the region. It also said that federal paramilitary troops were deployed and over 100 activists and the leaders were arbitrarily arrested. The rights body also cited travel restrictions barring outsiders from entering the region. The IHRF also called the Pakistani authorities to immediately halt the use of deadly force against peaceful protesters. It also urged an independent and impartial investigation into all civilian deaths with full access for international observers and accountability for those responsible for the unlawful use of the force. In the FIFA World Cup, Portugal will take on DR Congo in Group K, clash as Houston in United States.